मन रे संसार अंध गहेरा, चहो दिस पसरो है जम जेवरा रहाओ। कपत पड़े पड़ कपता मुवे, कपड़ के दार जाई। जटा तार तार जोगी मुवे, तेरी गत इन्हें ना पाई। दर्ब संच संच राजे मुवे, गडले कंचन पारी। बेद पड़े पड़ पंडित मुवे, रूप देख देख नारी। राम नाम बिन सबै बिगूते, देखो निरख शरीरा। हर के नाम बिन किन गत पाई, कहे उपदेश कबीरा। जब जरिए तब होए पसम तानो, रह किरम दल खाई। काची गागर नीर परत है, या तन की एह बड़ाई। काहे पहिया फिरतो फूलिया फूलिया, जब दस मास उर्ध मुख रहता। सोदन कैसे भूलिया रहाओ, ज्यो मधमाखी त्यों सठोर रस। जोर जोर तन किया, मरती बार लेहो लेहो करिए। पूत रहन क्यों दिया, देहुरी लो बरी नार संग पई। आगे सजन सोहेला, मरकट लाओ सब लोग कुटुंब पयो। आगे हंस अकेला, कहत कबीर सुन।

वेद पुराण सब है मत सुन के करी कर्म की आशा, काल ग्रस्त सब लोग सियाने उठ पंडित पै चले निराशा, मन रे सरयो ना एक काजा भजियो नारग पत राजा रहाओ, बन खंड जाए जोग तपकीनो कंद मूल चुन खाया, नादी बेदी सबदी मोनी जम के पटाए लिखाया, भगत नार दी हृदय न आई काश पूछ तन दीना, राग राग नी डिंब होए बैठा उन हर पै क्या लीना, परे ओ काल सबै जग उपर माहे लिखे परम ज्ञानी, कहो कबीर जन पहे खालसे प्रेम भगत जय जानी, कर दूजा

बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमाशे आई, बाजीगर स्वांग सकेला अपने रंग रवै अकेला। कथनी कह परम ना जाई सब कथ कथ रही लुकाई, जा कहो गुरमुख आ बुझाई ता कह हृदय रहा समाई। गुर किंचित कृपा कीनी सब तन मन दे हर लीनी, कह कबीर रंग राता मिलियो जग जीवन दाता। जाके निगम दूध के ठाटा समुंद बिलोवन कौ माटा, ताकि हो बिलोवन हारी क्यों मेटै गोशास तुहारी। चेरी तू राम ना करस पतारा, जग जीवन प्राण आधारा रहाओ। तेरे गलह तौक पग बेरी तू घर घर रमैया फेरी, तू अजो ना चेतस चेरी। तू जम बपरी है हेरी प्रभ करन कराम नहारी, क्या चेरी हाथ बिचारी सोई सोई जागी जितलाई ततलागी। चेरी तै सुमत कहां ते पाई, जाते भ्रम की लीक मिटाई। सो रस कबीर जानिया मेरो गुर प्रसाद मन मानिया, जह बाज ना जिया जाई जो मिले ता कालिया गाई। सद जीवन भलो कहां ही मुए बिन जीवन नाही। अब क्या कथिया ज्ञान बिचारा, निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ। कस कुंकुम चंदन गारिया बिन नैनो जगत निहारिया, पूत पिता एक जाया बिन ठाहर नगर बसाया। जाचक जन दाता पाया सो दिया न जाई खाया, छोड़िया जाए न मुका और न पहचाना।

सो पंच सैल सुख माने कबीर है सो तन पाया हर पेट ते आप मिटाया। क्या पढ़िया क्या गुनिया क्या वेद पुराना सुनिया पढ़े सुने क्या होई जो सह जन्म लियो सोई। हर का नाम ना जप सगवारा क्या सोचा बारंबारा रहाओ। अंधेरे दीपक चाहिए एक बस्ता गोचर लहिए बस्ता गोचर पाई कट दीप करे आसमाई कह कभी।

हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलोव सपानी, काया मांजस कौन गुना, जौ कट पीतर है मलना रहाओ, लौकी अड़सर तीर्थ नाई, कौरा पंतउ ना जाई, कह कबीर बिचारी, पवसा गिरतार मुरारी सोरठ। एको ओंकार सतगुर प्रसाद, बहु परपंच कर पर धन लियावै, सुधारा बयान लुटावै, मन मेरे पूले कपट ना कीजै, अंत नबेरा तेरे जी पहली जय रहाओ, छिन छिन तन छीजै, जरा जनावै, तब तेरी ओक कोई पानी ना पावै, कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय राम की ना जपै सवेरा, संत हो मन पवने सुख बनया, कि जोग प्राप्त गनया रहाओ, गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंद लिए दरवाजे, बाजी आले अनहद बाजे, कुंभ कमल जल भरिया, जल मेटिया उबा करिया, कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया, राग सोरठ भूखे भगत ना कीजै, यह माला अपनी लीजै, हाँ मांगो संतन रेना, मैं नाही किसी का देना, माधो कैसी बने तुम संगे, आप ना देहो ता ले वो मंगे रहाओ, दोए शेर मांगो चूना, पाओ की ओ संग लूना, अध शेर मांगो दाले, मोको दोनों वक्त जिवाले, खाट मांगो चौपाई, सरहाना अवर तुलाई, ऊपर कौ मांगो खींदा, तेरी भगत करे जन थींदा, मैं नाही कीता लबो, एक नाव तेरा मैं फबो, कह कबीर मन मानिया, मन मानिया तो हर जानिया, राग सोरठ बाणी, भगत नाम दे जी की, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जब देखा तब गावा, तौ जन तीरज पावा, नाद समाए लोरे सतगुर पेटले देवा रहाओ, जह चिल मिलकार दिसंता, तै अनहद शब्द बजंता, ज्योति ज्योत समानी, मैं गुर प्रसादी जानी, रतन कमल कोठरी, चमकार बिजल तही, नेरे नाही दूर, निजात मैं रया भरपूर, जय अनहत सूर उजियारा, तह दीपक जलै शंशारा, गुर प्रसादी जानिया, जन नामा सहे समानिया, कर चौथा सोरठ, पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा, का पहचान शिवाई हो, तो पै दुगनी मजूरी देहो, मोको बेडी देहो बताई हो, रिबाई बेडी देन न जाई, देख बेडी रे उसमाई, हमारे बेडी प्राण आधारा रहाओ, बेडी प्रीत मंजूरी मांगे, जौ को शान शिवावे हो, लोग को टंब सबोते तोरे, तो अपन बेडी आवे हो, ऐसो बेडी बर्न ना सको, सब यंत्र सब ठाई हो, गुंगे महा अमृत रस चाखिया, पूछे कह न जाई हो, बेडी के गुण सुन री बाई, जल्द बांतु था प्यो हो, नामे के स्वामी सी बहोरी, लंकप भीखण आप्यो हो, सोरठ करती जा, अड़मड़िया मंदल बाजै, बिन सावन कन हर गाजै।

तुम शरणागत राजा रामचंद, कह रविदास चुमारा चमरटा गांठ ना जनई, लोग गठा वै पन ही रहाओ। आर नहीं जे तो पो, नहीं रामबी ठाओ रो पो, लो गंठ गंठ खरा बिगूचा, हम बिन गंठे जाए पहुचा। रविदास जपै राम नामा, मोहे जमस्यो नाही कामा। राग सोरठ बाणी भगत पीखन की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नैन

वैद बनवारी अपने संतै लिहो बारी रहाओ। माथे पीर शरीर जलन है करक करे जे माही ऐसी बेदन उपज खरी पई वाका औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल एहो औखद जग सारा गुर प्रसाद कह जन पीखन पाव मुख द्वारा। ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुन पदार्थ पाया अनक जतन कर हृदय राखिया रतन ना छपै छपाया। हर गुण कहते कहन ना जाई जैसे गूंगे की मिठाई रहाओ। रसना रमत सुनत सुख श्रवना चित चेते सुख होई कहो पीखन दोए नैन संतोखे जैंदे खाते सोई। तनासरी महला पहला कर पहला चौपदे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद। जियो डरत है अपना कैसे करी पुकार दुख विसारन सेविया सदा सदा दातार। साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार रहाओ। अंदन साहेब सेवी है अंत छिडाए सोए सुन सुन मेरी कामनी पार उतारा होए। दयाल तेरा नाम तरा सदकुरबान जाओ रहाओ। सरबंग साचा एक है दूजा नाही कोए ताकी सेवा सो करे जा को नदर करे तुदवाज प्यारे केव रहा। सा वड्याई दे जित नाम तेरे लाग रहा दूजा नाही कोए जिसे आगे प्यारे जाए कहां रहाओ। सेवी साहेब अपना अवर न जाचों कोए नानक तांका दास है बिंद बिंद चुख चुख होए। साहेब तेरे ना विटाओ बिंद बिंद चुख चुख होए रहाओ। तनासरी महला पहला हम आदमी हां एक दमी मोहलत मोत ना जाना नानक बिन मैं तसरे वो जाके जी पराना। अंधे जीवना विचार देख के ते के दिना रहाओ। सास मां सब जियो तुम्हारा तू मैं खरा प्यारा नानक सायर एव कहत है सच्चे परवदगारा। जे तू किसे ना देही मेरे साहेबा क्या को कड्डे गहना नानक बिन मैं सो किश पाई है पुरब लिखे का लहना। नाम खसम का चेतना किया कपटी कपट कमाना जम द्वार जा पकड़ चलाया ता चलदा पछताना। जब लग दुनिया रही है नानक के सुनिया किश कही है भाल रहे हम रहन ना पाया जीवत अमर रही है। तनासरी महला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए। तपह आओ जियड़ा बिललाए सिरज सवारे साचा सोए तिस विसरिया चंगा क्यों होए। हिकमत हुक्म ना पाया जाए क्यों कर साच मिलो मेरी माए रहाओ। वक्र नाम देखन कोई जाए ना को चाखे ना को खाए लोक पतिने ना पत होए ता पत रहे राखे जां सोए। जै देखा तै रया समाए तुद बिन दूजी नाही जाए। जे को करे

काल जैसी नजर करे तैसा होए, विण नदरी नानक नहीं कोए। तनासरी महला पहला। नदर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवै रह लिवलाए। आत्मा प्रात्मा एको करै, अंतर की दुबदा अंतर मरै। गुरप्रसादी पाया जाए, हर सो चित लागै फिर काल ना खाए रहाओ। सच सिमरिया होवै प्रगास, ताते बिख्या मैं रह उदास। सतगुर की ऐसी वड्याई, पुत्र कलत्र विच गत पाई। ऐसी सेवक सेवा करै, जिसका जियो तिस आगै तरै। साहिब पावै सो प्रवान, सो सेवक दरगै पावै मान। सतगुर की मूर्त हृदय वसाए, जो इच्छा सोई फल पाए। साचा साहेब कृपा करै, सो सेवक जमते कैसा डरै। भणत नानक करे विचार, साची बाणी स्यों तरे प्यार। ता को पावै मुख द्वार, जप तप सब एहो शब्द है सार। तनासरी महला पहला, जियो तपत है बारो बार। तप तप खपै बहुत बेकार।

हर हर अगमय अगाद बोध अपरंपर पुरख अपारी जन को कृपा करो जग जीवन जन नानक पै सवारी। तनासरी महला चौथा हर के संत जना हर जपयो तिनका दुख भरम पौ भागी। अपनी सेवा आप कराई गुरमति अंतर जागी। हर कह नाम रता बैरागी हर हर कथा सुनी मन पाई गुरमत हर लिव लागी रहाओ। संत जना की जात हर स्वामी तुम ठाकर हम सांगी। जैसी मत देवो हर स्वामी हम तैसे बुलक बुलागी। क्या हम किरम नान निक कीरे तुम वड पुरख वडागी। तुमरी गत मित कह ना सके प्रभ हम क्यों कर मिलया पागी। हर प्रभ स्वामी कृपा तारो हम हर हर सेवा लागी। नानक दासन दास करो प्रभ हम हर कथा कथागी। तनासरी महला चौथा हर का संत सतगुर सतपुरखा जो बोले हर हर बानी। जो जो कह सुने सो मुक्ता हम तिस कह सतगुर बानी। हर के संत सुनो जस कानी हर हर कथा सुनो एक निमुख पाल। सब किलविख पाप लह जानी रहाओ। ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरख वडानी। तिनकी तूर मंगै प्रभ स्वामी हम हर लोच लुचानी। हर हर सफलियो बिरख प्रभ स्वामी जिन जपियो से तृप्तानी। हर हर अमृत पी तृप्ता से सब लाथी पूख पुखानी। जिनके वडे भाग वड उच्चे तिन हर जपियो जपानी। तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दा दसानी। तनासरी महला चौथा हम अंधले अंध बिखे बिखराते क्यों चाल है गुर चाली। सतगुर दया करे सुखदाता हम लावे आपन पाली। गुर सखमी चलो गुर चाली जो गुर कह सोई पल मानो। हर हर कथा निराली रहाओ। हर के संत सुनो जन पाई गुर सेवो बेग बेगाली। सतगुर सेव खर्च हर बांधाओ मत जानो वाज के काली। हर के संत जपो हर जपना हर संत चले हर नाली। जिन हर जपया से हर होए हर मिलिया केल के लाली। हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली। जन नानक संगत साध हर मेलो हम साज जना पगराली। तनासरी महला चौथा हर हर बूंद पय हर स्वामी हम चात्रक बिलल बिललाती। हर हर कृपा करो प्रभ अपनी मुख देवो हर निमखाती। हर बिनो रह न सको एक राती जो बिन अमल अमली मर जाई है। त्यों हर बिनो हम मर जाती रहाओ। तुम हर सर्वर अत अगाह हम लह न सके अंत माती। तू पर अपरंपर स्वामी मित जानो अपन गाती। हर के संत जना हर जपयो गुर रंग चलू लै राती। हर हर भगत बनियत सोभा हर जपयो उतम पाती। आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे पाती। नानक जन तुमरी शरण आई हर राखो लाज पगाती। तनासरी महला चौथा कलयुग का धर्म कहो तुम भाई किव छूटे हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुल्हा हर जपयो तरह तरा की। हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगते का की रहाओ। हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपयो हर बचना की। लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जमकी बाकी। हर के संत जपयो मन हर हर
लग संगत साध जना की, दिन यर सूर तृष्णा अग्न बुझानी, शिव चर्यो चंद चंदा की। तुम वड पुरख वड अगम्या गोचर, तुम आपे आप आपा की। जन नानक कहो प्रभ कृपा की, जय कर दस दास दसा की। तनासरी महला चौथा, कर पंजवा दोपद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। उर तार विचार मोरार रमो रम, मन मोहन नाम जपीने। अदृष्ट गोचर परंपर स्वामी, गुरपुरे प्रगट कर दीने। राम पारस चंदन हम काष्ट लोष्ट, हर संग हरी सतसंग पे। हर कंचन चंदन कीने रहाओ, नाम शे खट बोले मुख आगर, मेरा हर प्रभ इवना पतीने। जन नानक हरे हृदय सत्याव, इं हर प्रभ मेरा पीने। तनासरी महला चौथा, गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर, एव हर हर नाम ते आई। हर दरगह पावै फिर जन्म ना आवै, हर हर हर ज्योत समाई। जप मन नाम हरी होहे सर्व सुखी, हर जस ऊच सबना ते ऊपर। हर हर हर सेव छडाई रहाओ, हर कृपा निध कीनी, गुर भगत हर दीनी। तब हर स्यो प्रीत बने आई, बहु चिंत विसारी, हर नाम ओर तारी। नानक हर पय है सखाई, तनासरी महला चौथा। हर पढ़ हर लेख हर जप हर गाओ, हर भोजन पार उतारी। मन बचन हृदय ते आए, हर होए संतुष्ट। एव पण हर नाम मोरारी, मन जपिए हर जगदीश। मिल संगत साधु मीत, सदा आनंद।

हर हर नाम जपियो गत ही पई हमारी, जन नान की पत राख मेरे स्वामी, हर आए परयो है शरण तुम्हारी। तनाश्री महला चौथा, चौरासी सिद्ध बोत, तीस कोट मुन जानो, सब चाहे हर जियो तेरो नाओ। गुर प्रसाद को विरला पावै, जिन कौल लाट लिखिया तुर पाओ। जप मन रामै नाम, हर जसियु तुम काम, जो गावै सुने तेरा जस स्वामी, हम तिनकै सद बलिहारै जाओ रहाओ। शरणागत प्रतपालक हर स्वामी, जो तुम देहो सोई हों पाओ। दीन दयाल कृपा कर दीजै, नानक हर सिमरन का है चाओ। तनाश्री महला चौथा, सेवक सिख पूजन सब आवै, सब गावै हर हरि उत्तम बानी, गाव्या सुनिया तिनका हर थाएं पावै। जिन सतगुर की आग्या सत सत कर मानी, बोलो पाई हर कीर्त हर पवजल तीर्थ, हर दर तिन की उत्तम बात है संतो, हर कथा जिन जनो जानी रहाओ। आपे गुर चेला है आपे, आपे हर प्रभु चोज विडानी, जन नानक आप मिलाए सोई हर मिलसी, अवर सब त्याग ओहा हर पानी। तनाश्री महला चौथा, इच्छा पूरक सर्व सुखदाता हर, जां कै वस है काम तेना, सो ऐसा हर त्याई है मेरे जी अड़े, ता सर्व सुख पाव है मेरे मना। जप मानो सतनाम सदा सतनाम, हालत पलत मुखी उज्जल होई है, नित त्याई है हर पुरख निरंजना रहाओ। जय हर सिमरन पया तहे उपाद गत कीनी, वडपागी हर जपना, जन नानक को गुर एह मत दीनी, जप हर पवजल तरना। तनाश्री महला चौथा।

सहा। सब तुझी महेश माहे, सबना की तू आस है मेरे प्यारे। सब तुझे ते आवे मेरे सहा, ज्यों पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे। सच नानक के पातशाह, तनासरी महला पंजवा। कर पहला चौपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद। पव खंडन दुख पंजन स्वामी, भगत वच्छल निरंकारे। कोट प्राद मिटे खिन पीतर जा।

तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सोहै दरबारे सर्व जिया के दाते स्वामी कर कृपा लिहो उबारे। तेरा वर्ण ना जापै रूप ना लखिया तेरी कुदरत कौन बिचारे जल थल महियल रव्या सर्ब ठाई अगम रूप गिरधारे। कीर्त करै सगल जन तेरी तू अवनासी पुरख मुरारे जो पावै त्यो राखो स्वामी जन नानक सरण दुआरे। तनासरी महला पंजवा बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल सो हेत बड़ायो कमल हेत बिन सो है पवरा उन मार्ग निकस ना पायो। अब मन एक स्यो मोह कीना मरे न जावे सदही संगे सतगुर सबदी चीना रहाओ। काम हेत कुंचर लै फांक्यो ओ परवस भयो बिचारा नाद हेत सिर डार्यो कुरंका उसी हेत बेदारा। देख कुटांब लोभ मोहयो प्राणी माया को लपटाना अत रचियो कर लीनो अपना उड़ छोड़ सरा पर जाना। बिन गोबिंदो अवर संग नेहा ओ जानो सदा दुहेला कहो नानक गुर एह बजायो प्रीत प्रभु सदकेला। तनासरी महला पंजवां कर कृपा दियो मोहे नामा बंधन ते छुटकाए मन ते बिसरियो सगलो तंदा।

हमें रोग मिटे कृपा ते जमते पे विवका। गुर की टहल गुरु की सेवा गुर की आज्ञा पानी। कहो नानक जिन जमते काढे तिस गुर कै कुर्बानी। तनाश्री महला पंजवा जिसका तन मन धन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी। तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा तौ विद नेकी खटानी। जी की एक ही पहमानी अवर जतन कर रहे बहु तेरे तिन तल नहीं कीमत जानी। रहाओ अमृत नाम निर्मोलक हीरा गुरदीनो मनतानी। डिगे न डोले दृढ़ कर रहे हो पूर्ण होए त्रिपतानी। ओए जो बीच हम तुम कश होते तिनकी बात बिलानी। अलंकार मिल थैली होई है ताते कनक वखानी। प्रगट्यो जो तो सहज सुख सोबा बाजे अनहत बानी। कहो नानक निचल कर बांधियो गुर की ओ बंधानी। तनाश्री महला पंजवा वडे वडे राजन यार पूमन ताकी त्रिशन ना बूझी। लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सूजी। बिखिया मह किन्ही तृप्त ना पाई ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रपै बिनहर कहां अगाई। रहा हो दिन दिन कर

कामवंत कामी बहुनारी परग्रे जोहन चुके दिन प्रत करे करे पछतापे सोग लो मैं सूके हर हर नाम अपारिया मोला अमृत एक निधाना सुख सहज आनंद संतन कै नानक गुर ते जाना तनासरी महला पंजवा लवे न लागन कहो है कछु है जाको फिर एहो तावै जाको गुर दीनो एहो अमृत तिस ही को बन आवै जाको आयो एक रसा खान पान आन नहीं खुदया ता कै चेतना बसा रहाओ मौल्यो मंतन होयो हरिया एक बूंद जिन पाई बरन न साको उस ता की कीमत कहन न जाई काल ना मिलियो सेव ना मिलियो मिलियो आए चिंता जाको दया करी मेरे ठाकर तिन गुरै कमानो मंता दीन दयाल सदा कृपाला सर्ब जिया प्रतपाला ओत पोत नानक संग रव्या जो माता बाल गोपाला तनासरी महला पंजवा बार जाओ गुरे अपने ऊपर जिन हर हर नाम दृढ़ाया महा उद्यान अंधकार में जिन सीधा मार्ग

जाकै सिमरन सर्ब निदाना, मान महत पत पूरी नाम लैत कोट अगनासे, भगत बांचै सब धूरी सर्व मनोरथ जे को चाहै सेवा एक निदाना, पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी सिमरत पार पराना, शीतल सात मां सुख पाया संत संग रहयो ओला, हर तन संचन हर नाम भोजन एहो नानक कीनो चोला, तनासरी महला।

दुआ किस ही वाद घाट किस ही पै सगले लर लर मुआ। हम बलिहारी सतगुरे अपने जिन्हें हो चलत दिखाया गुजी पहे जले संसारा भगत ना व्यापै माया। संत प्रसाद मां सुख पाया सगले बंधन काटे हर हर नाम नानक तन पाया। अपने घर ले आया खाटे तनासरी महला पंजवा। तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतपालो हम बारक तुमरे तारे। जिहवा एक अमन गुण कहिया बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्ही लहिया रहाओ। कोट प्राध हमारे खंडो अनक विधि समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम्हें अपन बिरद रखावो। तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले। तनासरी महल

पर तन पर की निंदा इन स्यों प्रीत न लागे, संतै संग संत संपाखन हर कीर्तन मन जागे। गुण निदान दयाल पुरख प्रभु सर्व सुख दयाला, मांगे दान नाम तेरो नानक ज्यों माता बाल गोपाला। तनाश्री महा

सो कहियत है सूरा आत्म जिणै सगल वस ता कै जा का सतगुर पूरा। ठाकुर गाइया आत्म रंग सरणी पावन नाम त्यावन सहस मावन संग रहाओ जन के चरण वसै मेरे ही अरे संग पुनीता देही जन की तूर दे हो कृपा निध नानक कै सुख एही। तनाश्री महला पंजवा जतन करे मान खुड है कावे ओह अंतर जामी जाने पाप करे कर मुकर पावे पेख करे निर्बन जानत दूर तुम्हें प्रभ नेर उत ताकै उत ते उत पेख आवै लोभी फेर रहाओ। जब लग टुटै नाही मन परमा तब लग मुक्त ना कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। तनाश्री महला पंजवा नाम गुर दी होए अपने जाके मस्त करमा नाम दृढ़ावे नाम जपावे ताका जुग में तरमा। जन कौ नाम वडाई सोभ नामो गत नामो पत जन की माने जो जो हो ग्रहाओ। नाम तानो जिस जन के पाले से ही पूरा सहा नाम व्यवहारा नानक आधारा नाम प्राप्त लाहा। तनाश्री महला पंजवा नेत्र पुनीत पय दर्स पेखे माथे परोर वाल रस रस गुण गावो ठाकुर के मोरे हृदय बसो गोपाल। तुम तो रखन हार दयाल सुंदर सुगण बेअंत पिता प्रभ हो प्रभु कृपाल रहाओ। महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचनन ऊपर साल हृदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांध्यो पाल। तनाश्री महला पंजवा अपनी उकत खिलावै भोजन अपनी उकत खिलावै सर्व सुख भोग रस देवै मन ही नाल समावै। हमरे पिता गोपाल दयाल जो राखै महतारी बारक कहो तैसे ही प्रपाल रहाओ। मीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिलै नानक संत सेवा। तनाश्री महला।

मंत्र राम नाम हितकारे सुख सहजानंद मंगल सहित पवनित पार उतारे रहाओ। तन सो थान तन ओए पवना जा मैं संत बसारे जन नानकी सरदा पूरो ठाकर भगत तेरे नमस्कारे। तनासरी महला पंजवां छडाए लियो महाबली ते अपने चरण परात। एक नाम दियो मन मंता बिनसना कतहूं जात सतगुर पूरे कीनी दात। हर हर नाम दियो कीर्तन कहो पई हमारी गात। रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी पात। नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात। तनासरी महला पंजवां पर हरना लोभ झूठ निंद इव ही करत गुदारी। मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी ए टेक मन सादारी। सागत किया वरदा जाय बिरथारी जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत। काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी। बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त साजना संगारी। तनासरी महला पंजवां सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती। रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म रह जाती। रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कै चरण कमल निध थाती। रहाओ

नानक दास मुख ते जो बोलै इहां उहां सच होवै। तनासरी महला पंजवां औखी कड़ी न देखण देई अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रतपाले। प्रभ स्यो लाग रहे हो मेरा चीत आद्यंत प्रभ सदा सहाई तन हमारा मीत रहाओ। मन बिलास पए साहेब के अचरज देख बडाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूर्ण पैज रखाई। तनासरी महला पंजवा जिसको बिसरै प्राण पत दाता सोई गनो अभागा चरण कमल जाका मन रंगयो। अमै सरोवर पागा तेरा जन राम नाम रंग जागा आलस शीज गया सब तंते प्रीतम स्यो मन लागा रहाओ। जय जय पेखो तै नारायण सगल कटा मैं तागा नाम उदक पीवत जन नानक त्यागे सब अनदागा। तनासरी महला पंजवां जन के पूर्ण होए काम कली काल महा बिख्या मह लज्जा राखी राम रहाओ। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट ना आवै जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का धाम चरण कमल हर जन की थाती कोट सुख विश्राम। गोबिंद मोदर सिमरौ दिन रैन नानक सत कुरबान।

स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मद अंत प्रभ जापण नानक रंग लगा परमेसर बाहुड़ जन्म ना छापण तनासरी महला पंजवा मांगो राम ते सब थोक मानख कहो जाचत शरम पाई है प्रभ कै सिमरन मोख रहाओ कोखे मुन जन सिमरत पुराना वेद पुकारै कोख कृपा सिंध सेव सच पाई है दोवै सो हिले लोक आन आचार व्यवहार है जेते बिन हर सिमरन फोक नानक जन्म मरण पह काटे मिल साधु बिन से सोक तनासरी महला पंजवा तृष्णा बुझे

नाम गोबिंद का सदा लीजै, मिटै कमाणे पाप चराणे, साध संगत मिल मुआ जीजै रहाओ। राजोबन बिसरंत हर माया, महा दुख एहो महांत कह, आस प्यास रमण हर कीर्तन, एहो पदार्थ भागवंत लहै। सरण समराथो अकाथ्या गोचरा, पत ते उदारण नाम तेरा, अंतर जामी नानक के स्वामी, सरबत पूर्ण ठाकुर मेरा। तनासरी।

जत सत संजम हृदय समाए चौथे पद कहो जे मनपति आए साचे निर्मल मैल न लागै गुर कै शब्द भरम पौ भागै सूरत मूर्त आद्या रूप नानक जाचै साच स्वरूप तनासरी महला पहला सहज मिले मिलिया प्रवाण नात स्मरण न आवन जान ठाकुर मैं दा दास मैं सोए जै देखा तै अवर न कोए गुरमुख भगत सहज कर पाई बिन गुर भेटे मरिया जाइए रहाओ सो गुर करो जे साज दृढ़ावै अकथ कथावै शब्द मिलावै हर के लोग अवर नहीं कारा साचो ठाकर साच प्यारा तन मैं मनुआ मन मैं साचा सो साचा मैं साचे राचा सेवक प्रभ कै लागै पाए सतगुर पूरा मिले मिलाए आप दिखावै आपे देखै हठ ना पतीजै ना बहु पेखै घड़ पांडे जन अमृत पाया प्रेम भगत ब्रह्मन पति आया पड़ पड़ भूलै चोटा खाहे बहुत सियाण पे आवै जाहे नाम जपै पौ भोजन खाए गुरमुख सेवक रहे समाए पूज सिला तीर्थ बनवासा परमत डोलत पय उदासा मन मिलै सूचा क्यों होए साच मिलै पावै पत सोए आचारा विचार शरीर आजुगा सहज मन तीर पल पंकज मैं कोटो धारे कर कृपा गुरमेल प्यारे किस आगै प्रभ तुद सा लाही तुद बिन दूजा मैं को नाही जो तुद पावै त्यो राखर जाए नानक सहज पाए गुण गाए तनासरी महला पंजवा घर छेवा अष्टपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो जो जूनी आयो तेह तेह उर जायो मानस जन्म संजोग पाया ता की है उठ साध राखो दे कर हाथ कर कृपा।

आव कटै तन छीजै, काल अहेरी फिरै बदक ज्यों, कहो कवन बिद कीजै। सो दिन आवन लागा, मात पिता पाई सुत बनता, कहो को है काका रहाओ। जब लग जोत काया में बरतै, आपा पशु ना बूझै, लालच करै जीवन पद कारण, लोचन कछु ना सूझै। कहत कबीर सुनो रे प्राणी, छोड़ो मन के परमा, केवल नाम जपो रे प्राणी, परो एक की सरना। जो जन पाओ भगत कछ जानै, ता को अचरज काहो, ज्यों जल जल में पैस ना निकसै, त्यों टुर मिल्यो जुलाहो। हर के लोगा मैं तो मत का पूरा, जाओ तन काशी तजै कबीरा, रमैया कहा निहोरा रहाओ। कहत कबीर सुनो रे लोई, परम ना भूलो कोई, क्या काशी क्या उखर मग मगहर, राम हृदय जो होई। इंद्र लोक शिव लोकै जैबो, ओछे तप कर बाहुर ऐबो। क्या मांगो किछ थिर नाही, राम नाम रख मन माही रहाओ। सोबा राज

हमरे मन तनु राम को नामा। राम सिमरो राम सिमरो राम सिमर पाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधकाई रहाओ। बनता सुत देहे ग्रहे संपत सुखदाई, इनमें कछ नाहे तेरो काले अवधियाई। अजा मालो गज गन का पतत कर्म कीने, तेऊ उत्तर पार परे राम नाम लीने। सूकर कूकर जोन प्रमे तऊ लाज ना आई, राम नाम छाड़ अमृत काहे बिख खाई। तज परम कर्म बेदन खेद राम नाम लेही, गुरप्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही। तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद गहरी करके नीम खुदाई। ऊपर मंड पछाए मारकंडे ते को अधकाई, जिन तरन तर मुंड बलाए।

दुर्योधन से पाई, बारह जो जन शत्र चल था, देही गिरज न खाई, सर्व सो इनकी लंका होती, रावण से अदकाई, कहां पयो दर बांधे हाथी, खिन में पई पराई, दुर्वासा सो करत ठगौरी, जादवे फल पाए, कृपा करी जने अपने ऊपर, नाम देव हर गुण गाए, दस बैर अग्न मोहे बस कीनी, पंचों का मिट नावो, सत्तर दोए भरे अमृतसर, बेको मार कढ़ावो, पाछे बहुर ना आमन पावो, अमृत बाणी करते उचराओ, आत्म को समझावो रहाओ, बजर कुठार मोहे है शीना, कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक, भगतन ते डर पावो, यह संसार ते तभी छूटो, जो माया ने लिपटावो, माया नाम गर्भ जोन का, तेहता दर्शन पावो, इत कर भगत करे जो जानो, तिन पौ सगल चुकाई है, कहत नाम देओ बाहर क्या भरमो, ए संजम हर पाई है, मारवाड़ जैसे नीर बालहा, बेल बालहा करहला, ज्यो कुरंक निसनाद बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, तेरा नाम रूडो रूप रूडो, आतरंग रूडो मेरो रामैया रहाओ, ज्यो तरणी को इंद्र बालहा, कुसुम बास जैसे पावरला, ज्यो कोकल को अंब बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, चकवी कौ जैसे सूर बालहा, मान सरोवर हंसला, ज्यों तरणी कौ कंत बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, बारक कौ जैसे खीर बालहा, चात्रक मुख जैसे जल तरा, मछली कौ जैसे नीर बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, साधक सिद्ध सगल मुन चाहे, बिरले काहू डिठला, सगल पवन तेरो नाम बालहा, त्यों नामे मन बीठला, पहल पुरिये पुंडरक वना, ताचे हंसा सगले जना, कृष्णा ते जानाऊ हर हर नाचंती नाचना, पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसा दमरा, असगा अस उसगा हर का बागरा, नाचे पिंदी मैं सागरा रहा।

पिंदी उबकले संसारा भ्रम भ्रम आए तुम चे द्वारा तू कुन रे मैं जी नामा हो जी आला ते निवारणा जमकारणा पतत पावन माधो बिरद तेरा तन ते वह मुन जनो जिन त्यायो हर प्रभ मेरा।

नाम तेरो तागा नाम फूल माला, पार अठारह सगल जूठारे, तेरो किया तुझे क्या यार पाओ, नाम तेरा तुही चवर टोलारे। दस अठा अठ सठे चारे खानी, यह वर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर पोग तुहारे तो।

गरड ताचे बादवा कर्म कर अरण पिंगलारी अनक पातक हरता त्रिपवन नाथरी तीर्थ तीर्थ प्रमता लह ना पारदी कर्म कर कपाल मफीट सरी अमृत ससी तेन लक्ष्मी कल्प तारो शिखर सुनागर नदी चे नाथं कर्म कर खार मफीट सरी दादी ले लंका गाड़ ओ पाड़ी ले रावण बाण सल बिसल आण तोखी ले हरी कर्म कर कशौटी मफीट सरी पूर्व लो कृत कर्म न मिटैरी कर गेहन ताचे मोहे जापी आले राम चे राम बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन धूप दीप कृत साज आरती वारने जाओ कमलापति मंगला।

जो ब्रह्मंडे सोई पिंड जो खोजै सो पावे पीपा प्रणवै परम तत् है सतगुरु होए लिखावै तन्ना गोपाल तेरा यारता जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता रहाओ दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो परियां शादन निकाया नाज मंगो सत सीका गौ पैस मंगो लावेरी एक ताजन तुरी चंगेरी कर की गीहन चंगी जन तन्ना लेवे मंगी। जय श्री महला चौथा कर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे ही अरे रतन नाम हर बसिया गुरहा तरियो मेरे माथा जन्म जन्म के किल बिख दुखी उतरे गुर नाम दियो रिन लाथा मेरे मन पज राम नाम सब अर्था गुरपुर हर नाम दृढ़ाया बिना मैं जीवन बिरथा रहाओ बिन गुरमूड पए है मन मुख ते मोह माया नित फाथा तिन साधु चरण ना सेवे कबहू तिन सब जन्म अकाथा जिन साधु चरण साध पग सेवे तिन सफल्यो जन्म सनाथा मोको कीजै दास दास दासन को हर दया तार जगन्नाथा हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चले मार्ग पंथा हम अंधले को गुरे अंचल दीजै जन नानक चले मिलन था। जय श्री महला चौथा हीरा लाला मोल कह पारी बिन गाहक मीका काखा रतन गाहक

बेसुमार बेअंत बढ़ दाता मने गही रहो पेख प्रभु को जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरो जब प्रभु को गुर प्रसाद नानक मन वसिया दुख न कभू चूरो बुझ प्रभु को जैत सरी महला पंजवा लोड़ींदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके कट कट तिसै बसेरा रहाओ सुख अराधन दुख अराधन बिसरै ना काहू बेरा नाम जपत कोट सूर्य उजारा बिनसै परम अंधेरा थान थनंतर सबनी जाई जो दिसै सो तेरा संत संग पावै जो नानक तिस बहुर ना हुई है फेरा जैत सरी महला पंजवा कर चौथा दो पदे एक ओवंकार सतगुर प्रसाद अब मैं सुख पायो गुर आग तजी सियानप चिंत विसारी अहंग छोड़ियो है त्याग रहाओ जो देखो तो सगल मोहे मोहियो तो सरन परयो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तौ जम छोड़ी मोरी लाग तरयो सागर पावक को जो संत पेटे वड भाग जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरणी चित लाग जैत सरी महला पंजवा मन मैं सतगुर ध्यान तरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाओ काल जाल।

नाव रूप पयो साध संग पवनित पार परा अप्यो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा जैसरी महला पंजवा जा कहो पए गोविंद सहाई सुख सहज आनंद सकल स्यों वा कहो ब्याद ना काई रहाओ दिसे सब संग रह अलेपा नह व्यापै उन्माई एक रंग तत के बेते सदगुर ते बुद्ध पाई दया माया कृपा ठाकर की सही संत सुभाई तिन कै संग नानक निस्तरी है जिन रस रस हर गुण गाई जैत सरी महला पंजवा गोविंद जीवन प्राण तन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे मैं दीप रहाओ सफल दर्शन तुमरा प्रभु प्रीतम चरण कमलिया नूप अनक बार करो तह बंधन मने चिरावो धूप हार परयो तुमरे प्रभु द्वारे दृढ़ कर गही तुम्हारी लूक काढ़ लिहो नानके अपने को संसार पाव के कूप जैत सरी महला पंजवा कोई जन हर स्यों देवे जोर चरण गहों बकों शुभ रसना दीजे प्राणिया कोर रहाओ मन तन निर्मल करत क्यारो हर सिंचे सुधा संजोर या रस में मगन होत कृपा ते महा बिख्या ते तोर आयो शरण दीन दुख पंजन चितवो तुमरी ओर अपै पद दान सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंधन शोर जय श्री महला पंजवा चात्रक चितवत बरसत में है कृपा सिंध करना प्रभ तारो हर प्रेम भगत को नेह रहाओ अनक सुख चकवी नहीं चाहत अनद पूर्ण पेख दे है आन्यो पावना जीवत मीना बिन जल मरनाते हैं हाम्या नाथ नाथ हर सरणी अपनी कृपा करे हैं चरण कमल नानक आराध तिस बिन आन ना के हैं जय श्री महला पंजवा मन तन बस रहे मेरे प्राण कर कृपा साधु संग पेटे पूर्ण पुरख सुजान रहाओ प्रेमठ गौरी जिन कौ पाई तिन रस पियो पारी ताकी कीमत कहन ना जाई कुदरत कमन हमारी लाए लाए लड़ दास जन अपने उधरे उधर नहारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे जय श्री महला पंजवा आए अनक जन्म परम सरणी उधर देह अंध कूपते लावो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना ना हिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लावो बिखम नदी जाए तरनी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन में तरनी हर दर्शन तृप्त नानक दास पावत हर नाम रंग या परनी जय श्री महला पंजवा हर जन सिमरो हृदय राम हर जन को अपदा निकट ना आवे पूर्ण दास के काम रहाओ कोट बिघन बिनसे हर सेवा निचल गोविंद ताम भगवंत भगत को पौ किश नाही आदर देवत जाम तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय गहो नानक सुख समूह विश्राम जैत सरी महला नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पूलेओ मन माया उर जायो जो जो कर्म कियो लालच लागो तेह तेह आप बंधायो रहाओ समझ ना परी बिखै रस रचियो जस हर को बिसरायो संग स्वामी सो जान्यो नाहन बन खोजन कौतायो
रतन राम कढ़ी के पीतर ताको ज्ञान ना पायो, जन नानक भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गवायो। जय श्री महला नावा, हर जू राख लिहो पत मेरी, जम को त्रास पयो उर अंतर, शरण गही कृपा निर्देरी रहाओ। महापतत मुग्ध लोभी फोनो, करत पाप अबहारा, पह मरबे को बिसरत नाहनो, तह चिंता तन जारा। किए उपाव मुक्त के कारणो, दे दिसको उठताया, कट ही पीतर बसै निरंजन, ताको मर्म ना पाया। नाहन गुण नाहन कछ जप तप, कौन कर्म अब कीजै, नानक हार पर्यो शरणागत, अपह दान प्रभ दीजै। जय श्री महला नावा, मन रे साचा गहो बिचारा, राम नाम बिन मिथ्या मानो, सगर होयो संसारा रहाओ। जाको जोगी खोज तहारे, पायो नाहे तह पारा, सो स्वामी तुम निकट पछानो, रूप रेखते न्यारा। पावन नाम जगत में हर को, कबू नाहे संभारा, नानक शरण पर्यो जग बंदन, राखो बिरद तुहारा। जय श्री महला पंजवा, शंत कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। दर्शन प्यासी दिन सरात, चितवों अंधन नीत, खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत। शंत सुन यार हमारे सज्जन, एक करो बेनंतिया, तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरो को जंतिया। तिस दस प्यारे सिर तरी उतारे, एक पूरी दर्शन दीजै, नैन हमारे प्रे रंग रंगारे, एक तिलपी नाती रीजै। प्रभ स्यो मन लीना, ज्यो जल मीना, चात्रक जवैत संतिया, जन नानक गुर पूरा पाया, सगली तिखा बुजंतिया। यार वे प्रे हब्बे सखिया, मुंह कही ना जेहिया, यार वे हिक डू हिक चाड़ै, हौ किस चितेहिया। हिक दू हिक चाड़े अनक प्यारे, नित कर दे भोग बिलासा, तना देख मन चाओ उठंदा, हौ कद पाई गुणतासा। जिनी मैंडा लाल रिजाया, हौ तिस आग्या मन डेहिया। नानक कह सुन बिनो सुहागण, मुंह दस डिखा पिर केहिया। यार वे प्रे अपन पाणा, किस नी सी छंदा, यार वे तै रव्या लालन, मुंह दस दसंदा। लालन तै पाया आप गवाया, जै तन भाग मथाने, बहा पकड़ ठाकर हों किदी, गुण अवगुण ना पिछाने। गुणहार तै पाया रंग लाल बनाया, तिस हब्बो किछ सुहंदा। जन नानक तन सुहागण साई, जे संग पतार वसंदा। यार वे नित सुख सुखेंदी, सा मैं पाई, वर लोड़ींदा आया वजी वादाई। महामंगल रहस्थिया, पिर दयाल सद नवरंगिया, वड भाग पाया गुर मिलाया, साध कै सतसंगिया। आसा मनसा सगल पूरी, प्रे अंक अंक मिलाई, बिनवंत नानक सुख सुखेंदी, सा मैं गुर मिल पाई। जय श्री महला पंजवा, कर दूजा शंत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। ऊंचा अगमा पार प्रभ, कहन न जाया कथ, नानक प्रभ शरणागति, राखन को समरथ। शंत ज्यो जानो त्यो राख, हर प्रभ तेरिया, केते गणो असंख अवगण मेरिया। असंख अवगण खते फेरे, नित प्रत सद भूली है, मोह मगन बिकराल माया, तौ प्रसादी कूली है। लूक करत बेकार बिखड़े, प्रभ नेर हूं ते नेरिया, बिनवंत नानक दया तारो, काट पव जल फेरिया। सलोक निरत ना पवे असंख गुण, ऊंचा प्रभ का नाओ, नानक की बेनंतिया, मिलैन थावे थाओ। शंत दूसर नाही ठाओ, कां पह जाइए, आठ पैर कर जोड़, सो प्रभ त्याई। त्याए सो प्रभ सदा अपना, मनह चिंदिया पाई है, तजमान मोह विकार दूजा, एक स्यों लिवलाई है।
ਅਰਪ ਮੰਤਨ ਪ੍ਰਭੂ ਆਗੈ ਆਪ ਸਗਲ ਮਿਟਾਈ ਐ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਾਚ ਨਾਮ ਸਮਾਈ ਐ ਸਲੋਕ ਅਰੇ ਮਨ ਤਾਂ ਕੋ ਧਿਆਈਐ ਸਭ ਜਾ ਕੈ ਹਾਥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸੰਚੀਐ ਨਾਨਕ ਨਿਭੈ ਸਾਥ ਸ਼ੰਤ ਸਾਥੀ ਅੜਾ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਦੂਸਰ ਨਾਹੇ ਕੋਏ ਥਾਂਥਨ ਅੰਤਰ ਆਪ ਜਲ ਥਲ ਪੂਰ ਸੋਏ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਸਰਬਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਧਨੀ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਤ ਨਾਹੀ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤਾਂ ਕੇ ਕਿਆ ਗਨੀ ਪਜ ਸਰਨ ਸੁਵਾਮੀ ਸੁਖੈ ਗਾਮੀ ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਅਨ ਨਾਹੇ ਕੋਏ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰੋ ਤਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਮ ਹੋਏ ਸਲੋਕ ਚਿਤ ਜੇ ਚਿਤਵਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਸੁਖ ਸਵਾਇਆ ਸ਼ੰਤ ਅਬ ਮਨ ਛੂਟ ਗਇਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਲਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਮਿਟੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਬੁੱਝੀ ਤਪਤਿਆ ਗਾਨਿਆ ਗੈ ਪੁਜਾਲੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਾਨਿਆ ਲੈ ਅੰਕ ਲਾਏ ਹਰ ਮਿਲਾਏ ਜਨਮ ਮਰਨਾ ਦੁਖ ਜਲੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਮੇਲ ਲੀਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇ ਜੈਤ ਸਰੀ ਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਧਾਣੂ ਸੰਸਾਰ ਗਰਬ ਅਟਿਆ ਕਰਤੇ ਪਾਪ ਅਨੇਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਟਿਆ ਲੋਭ ਮੋਹੇ ਅਭਿਮਾਨ ਬੂਡੇ ਮਰਨ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਵਿਵਹਾਰ ਬੰਤਾ ਇਹ ਕਰਤ ਵਿਹਾਵੇ ਪੁਜ ਦਿਵਸ ਆਏ ਲਿਖੇ ਮਾਏ ਦੁਖ ਧਰਮ ਤੂਤੈ ਡਿਠਿਆ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਨਾ ਮਿਟੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ ਧਨ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ ਉਦਮ ਕਰੈ ਅਨੇਕ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਗਾਵਹੀ ਭਰਮੈ ਜੋਨਿਆ ਸੰਖ ਮਰ ਜਨਮੈ ਆਵਹੀ ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਸੈਲ ਤਰਵਰ ਗਣਤ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੇ ਬੀਜ ਬੋਵਸ ਭੋਗ ਭੋਗੈ ਕੀਆ ਆਪਣਾ ਪਾਵੇ ਰਤਨ ਜਨਮ ਹਰ ਅੰਤ ਜੂਵੈ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਪਾਵਹੀ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਭਰਮੈ ਭਰਮਾਏ ਖਿਨ ਏਕ ਟਿਕਣ ਨਾ ਪਾਵਹੀ ਜੋਬਨ ਗਿਆ ਬਤੀ।

श्री राम रंगिया पार पूर्णो नै निमख मन मैं वूठिया। बिनवंत नानक कोट कागर बिन सबार ना झूठिया। चरण कमल सरण आए नानक आया। दुत्तर पै संसार प्रभ आप तराया। मिल साध संगे भजे श्री तार कर अंग प्रभ जी तारिया। हर मान लिए नाम दिए अवर कश ना बिचारिया। गुण निधान अपार ठाकर मन लोड़ींदा पाया। बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया। जैत श्री महला पंजवा वार श्लोका नाल एको अंकार सतगुर प्रसाद। सलोक आदि पूर्ण मध पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर। सिमरंत संत सर्वत्र रमण नानक अग्नासन जगदीश्वर। पेखन सुनन सुनावन मन में दृढ़िय साच। पूर रहो सर्वत्र मैं नानक हर रंगराज। पौड़ी हर एक निरंजन गाई है सब अंतर सोई। करण कारण समर्थ प्रभ जो करे सो होई। खिन मैं थाप्यो थापदा तिस बिन नहीं कोई। खंड ब्रह्मंड पाताल दीप रविया सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। सलोक और चंत जी रचना मात गर्भ अस्थापन सा सा सिमरंत नानक महायग्न ना बिनासन। मुख तले पैर उपरे वसंदो कहुथड़े थाए। नानक सो तनी क्यों विसारियो उदरै जिस दै नाए। पौड़ी रगत बिंद करने मिया अग्न उदर मजहार। उर्द मुख कुचीर बिकल नरक घोर गुबार। हर सिमरत तू ना जलै मन तन उर तार। बिखम थानो जिन रखिया तिस तिल ना विसार। प्रभ बिसरत सुख कदे नाहे जासै जन्म हार। सलोक मन इच्छा दान करण सर्वत्र आसा पूर्ण। खंडन काल कलेश प्रभ सिमर नानक ने दूरन। हब रंग माने जिस संग तै स्यों लाइय ने हो। सो सहो बिंदन विसरो नानक जिन सुंदर रचिया दे हो। पौड़ी जियो प्राण तन तन दिया दीने रस भोग। गृह मंदिर रथ अस दिए रचपले संजोग। सुत बनता साजन सेवक दिए प्रभ देवन जोग। हर सिमरतो तन मन हरिया लै जाए वियोग। साध संग हर गुण रमो बिनसे सब रोग। सलोक कुटम्ब जतन करण माया अनेक युद्ध में। हर भगत पावहीण नानक प्रभ बिसरत ते प्रेत तै। टुटड़िया सा प्रीत जो लाई बेअन स्यो नानक सच्ची रीत। साई से तीरत आ पौड़ी जिस बिसरत तन पसम होए। कहते सब प्रेत खिनग्रे मैं बिसना देवही जिन स्यो सोई हेत। कर अनर्थ दर्ब संचया सो कार्य केत। जैसा बीजै सो लुणै कर में हो खेत। अकृत कणा हर विसरिया जोनी परमेत। सलोक कोड़दान इस नानंग अनक सोधन पवित्र तै। उचरंत नानक हर हर रसना सर्वपाप विमुचते। ईंदन की तो मुकणा पोरी दित्ती मुपाहे। मन वसंदड़ो सच सहो नानक हबो डुखड़े उलाहे। पौड़ी कोट अगा सब नास होहे। सिमरत हर नाओ मन चिंदे फल पाई है हर के गुण गाओ।
जन मरण पै कटिया निचल सच थाओ, पूर्व होवै लिखिया हर चरण समाओ। कर कृपा प्रभ राख ले हो नानक बल जाओ। सलोक गृह रचना या पारंग मन बिलास स्वादंग रसै, एकदा चनै सिमरंत नानक तेजंत बिष्टा कृमै। मुच अडंबर हब के हो मंज मोहब्बत नेह, सो साई जय विसरै। नानक सो तन खेह पौड़ी सुंदर से जा नेक, सुख रस भोगन पूरे गृह सोयन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे। मन इच्छे सुख मानदा किश नाहे विसूरे, सो प्रभ चेतना आवई विष्टा के कीरे। बिन हर नाम ना सांत होए कित बिद मन तीरे। सलोक चरण कमल बिरहं खोजंत बैरागी दैद सै, त्यागंत कपट रूप माया नानका नंद रूप साध संग मैं। मन साई मुख उचरा वत्ता हबे लो, नानक हबा डंबर कूड़िया सुन जीवा सची सोए पौड़ी। बस्ता टूटी चुंपड़ी चीर सब छिन्ना, जात ना पत ना आदरो उद्यान परमिन्ना। मित्र नाठ धन रूप हीन के साग ना सिन्ना, राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन पिन्ना। तिसकी धूड़ मन उदरै प्रभ होए सो प्रसन्ना। सलोक अनक लीला राज रस रूपं, छत्र चमर तख्त आसन। अरे चंत मूड अज्ञान अंधै, नानक सुपन मनोरथ माया। सुपने हबरंग माणिया मिठा लगड़ा मोहो, नानक नावे हूणिया सुंदर माया त्रोहो। पौड़ी सुपने सेती चेत मूर्ख लाया, बिसरे राज रस भोग जागत पखलाया। यार जा गई विहाए तंदे ताया, पूर्ण पय नाकाम मोहया माया। क्या विचारा जंत जाया पुलाया, सलोक बसंत स्वर्ग लोकै जिनते पृथ्वी नव खंडणै। बिसरंत हर गोपाल नानक ते प्राणी उद्यान भरमणै, कौत कोट तमासया चेतना आवसनाओ। नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई थाओ पौड़ी। महाभयान उद्यान नगर कर मानिया, चूड़ समगरी पेख सच कर जानिया। काम क्रोध अहंकार फिर देवानिया, सिर लगा जमडंड ता पछतानिया। बिन पूरे गुरदेव फिर सैतानिया। सलोक राज कपटंग रूप कपटंग, तन कपटंग कुल गर्भतै संचंत बिखिया शलंग छिद्रंग। नानक बिन हर संग न चलते पेखंदड़ो की पुल, तुम्मा जिसम सोहना आडना लहंदड़ो मुल। नानक साथ ना जुलई माया पौड़ी, चल दया नाल ना चलै सो क्यों संजीऐ। तिसका कहो क्या जतन जिस ते वंजीऐ, हर बिसरिया क्यों त्रबतावै ना मन रंजीऐ। प्रभु छोड़ अन लागै नरक समंजीऐ। हो कृपाल दयाल नानक पौ भंजीऐ। सलोक नच राज सुख मिष्टंग, नच भोग रस मिष्टंग, नच मिष्टंग सुख माया। मिष्टंग साध संग हर नानक दास मिष्टंग, प्रभ दर्शनंग लगड़ा सोने हो मन मजाहू रतिया। विदड़ो सच थोक नानक मिठड़ा सोतनी पौड़ी, हर बिन कछु ना लाग गई भगतन कौ मीठा। यान स्वास सौ फीकिया कर निर्णव डीठा, अज्ञान परम दुखटिया गुर भय बसीठा। चरण कमल मन बेदया जो रंग मजीठा, जियो प्राण तन मन प्रभु बिन से सब झूठा। सलोक त्यागत जलंग ने जीव मीनंग, ने त्याग चात्रक मेघ मंडल है। बाण बिदंच कुरंक नादंग अलबंधन कुसुम बसन, चरण कमलर चंत संत नानक आना रुचते। मुख डे गाऊ पलक छड़ियाना डे उचित, जीवन संगम तिस्तनी हर नानक संता मित। पौड़ी ज्यो मछली बिन

है। नाद कुरंकै बेदया सनमुख उठतावै, पवर लोभी कुसुम बासका मिलिया बंधावै, त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगावै। सलोक चितवंत चरण कमलं साह सास आराधन नै बिसरंत नाम यचत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है। शीतला मन मजाहे पलक ना थी वै बाहरा, नानक आसड़ी निबाहे सदा पेखंदो सच तनी पौड़ी। आसावंती आस गोसाई पूरी है, मिल गोपाल गोबिंद न कबहू चूरी है, देहो दर्श मन चाओ ले जाए विसूरी है। होए पवित्र शरीर चरना तूरी है, पार ब्रह्म गुरुदेव सदा हजूरी है। सलोक रसना उचरंत नामं श्रवणं सुनंत शब्द अमृत है, नानक तन सद बलिहारं जिन्ना ध्यान पार ब्रह्मण है। हब कूड़ावे काम एक सुसाई बाहरे, नानक से ही तन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यों पौड़ी। सद बलिहारी तिन्ना जे सुनते हर कथा, पूरे ते प्रधान निवावै प्रभ मथा। हर जस लिखै बेअंत सोहै से हथा, चरण पुनीत पवित्र चालै प्रपथा। संता संग उदार सगला दुख लथा, सलोक भावी उदूत करण हर रमण संयोग पूर्ण। गोपाल दर्श भेटं सफल नानक सो मुहूर्त, कीम ना सका पाए सुख मिती हूं बाहरे, नानक सा वेलड़ी परवान जित मिलंदड़ो मां पिरी पौड़ी। सा वेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई, सो मूर्त भला संयोग है जित मिलै गुसाई। आठ पैर हर त्याय कै मन इच्छ पुजाई, वड्डै भाग सतसंग होए निम लागा पाई। मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई। सलोक पतत पुनीत गोबिंद सर्व दुख निवारण, शरण सूर भगवान जपंत नानक हर हर हरे। छड्यो हब आप लगड़ो चरना पास, नठड़ो दुख ताप नानक प्रापे खंदया पौड़ी। मेल लहो दयाल टह पै द्वारे, रख ले वो दीन दयाल परमत बवहारिया। भगत वछल तेरा बिरद हर पत ते उधारिया, तुझ बिन नाही कोए बिना मोए सारिया। कर गै लेहो दयाल सागर संसारिया। सलोक संत उदरण दयालं आसरंग गोपाल कीर्तन, निर्मलंग संत संगेन ओट नानक परमेश्वर है। चंदन चंदना सरद रुत मूल न मिटई काम, शीतल थी वै नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी। चरण कमल की ओट उदरे सगल जन, सुन प्रताप गोविंद निरपो पय मन। तोट न आवै मूल संचया नाम तन, संत जना स्यो संग पाइय वड्डै पुन। आठ पहर हर त्याए हर जस नित सुन। सलोक दया करणं दुख हरणं उचरणं नाम कीर्तन, दयाल पुरख भगवान नानक लिप्त नाम आया। पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप, जिन उपाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी। जा प्रभ पय दयाल ना व्यापै माया, कोट अगा गए ना।

काल जाल जम जोहे ना साकै सच का पंथा थाट्यो खात खर्चत किश निखुटत नाही राम रतन तन खाट्यो पसमा पूत हुआ खिन पीतर अपना किया पाया आगम निगम कह जन नानक सब देखे लोक सुबाया टोडी महला पंजवा किरपन तन मन किलविख भरे साध संग भजन कर स्वामी ठाकन कौ एक हरे रहाओ अनक छिद्र बोहित के छुटकत थाम ना जाही करे जिसका बोहितो तिस आराधे खोटे संग खरे गली सैल उठावत चाहै ओए ऊहा ही है तरे जोर सकत नानक किश नाही प्रभ राखो शरण परे टोडी महला पंजवा हर के चरण कमल मन त्याओ काढ़ कुठार पित बात हंता औखद हर को नाम रहाओ तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताको बिगड़ को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास संत प्रसाद वैद नारायण करण कारण प्रभ एक बाल बुद्ध पूर्ण सुखदाता नानक हर हर टेक टोडी महला पंजवा हर हर नाम सदा सद जाप तार अनुग्रह पार ब्रह्म स्वामी वसदी की नी आप रहाओ जिसके से फिर तिन ही समाले बिन से शोक संताप हाथ दे राखे जने अपने हर होए माई बाप जी जंत होए मेहरवाना दया तारी हरनाथ नानक सरण परे दुख पंजन जाका बड़ प्रताप टोडी महला पंजवा स्वामी सरण परे दरबारे कोट पराध खंडन के दाते तुझबन कौन उधारे रहाओ खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्व अर्थ बिचारे साध संग परम गत पाई है माया रच बंद हारे चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे नानक आनंद करे हर जप जप सगले रोग निवारे। टोडी महला पंजवा कर तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद हां हां लपट्यो रे मूड़े कछु ना थोरी तेरो नहीं सोजानी मोरी रहाओ आपन राम ना चीनो खिनुआ जो पराई सो अपनी मनुआ नाम संगी सो मन ना बसायो छोड़ जाए वाहू चित लायो सो संचयो जित भूख तसायो अमृत नाम तोसा नहीं पायो काम क्रोध

कह हरी हरी आन अवर सियाण न करी रहाओ। वड़े भाग गुर अपना पायो गुरमुखो हर नाम दृढ़ायो। हर हर जाप ताप व्रत नेमा हर हर त्याय कुशल सब खेमा। आचार व्यवहार जात हर गुनिया महा आनंद कीर्तन हर सुनिया। कहो नानक जिन ठाकर पाया सब किश तिसके गृह मैं आया। टोडी महला पंजवा कर चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रूड़ो मन हर रंगो लोड़ै गाली हर नी हो ना होए रहाओ। हाँ टूडेंदी दर्शन कारण बीथी बीथी पेखा गुरमिल परम गवाया है। एह बुद्ध पाई मैं साधु कन्ना लेख लिखियो तुर माथ एह बिद नानक हर नैन अलोए। टोडी महला पंजवा गर्भ गहलड़ो मूड़ो हियो रे हियो महराज री मायो। डीहर न्याई मोयफा क्यों रे रहाओ। कणो कणो कणो सद लोड़ै

पंच दुख अर अहंग रोग एह तंते सगल दूर कीन रहाओ। बंधन तोर शोर बिख्या ते गुर को शब्द मेरा हीरा दीन। रूप अनुरूप मेरो कश ना बिचार्यो प्रेम गयो मोय हर रंग पीन। पेख्यो लालन पाठ बीच खोए आनंद चिता हर खे पतीन। तिस ही को गृह सोई प्रभ नानक सो ठाकुर तिस ही को तीन। टोडी महला पंजवा माई मेरे मन की प्रीत। एही कर्म धर्म जप एही राम नाम निर्मल है रीत रहाओ। प्राण आधार जीवन तन मोर देखन कौ दर्शन प्रवनीत। बाट घाट तोसा संग मोर मन अपने कौ मैं हर सखा कीत। संत प्रसाद भय मन निर्मलो कर कृपा अपने कर लीत। सिमर सिमर नानक सुख पाया आद जुगाद भगतन के मीत। टोडी महला पंजवा प्रभ जी मिल मेरे प्राण। बिसर नहीं निमख ही अरे ते अपने भगत कौ पूर्ण दान रहाओ। खोव परम राख मेरे प्रीतम अंतर जामी सूढ़ सुजान। कोट राज नाम तन मेरा अमृत दृष्ट धारो प्रमान। आठ पहर रसना गुण गावे जस पूरा गावे समर्थ कान। तेरी शरण जियन के दाते सदा सदा नानक कुर्बान। टोडी महला पंजवा प्रभ तेरे पग की तूर। दीन दयाल प्रीतम मन मोहन कर कृपा मेरी लोचा पूर रहाओ। दै जसरव रहया जस तुमरा अंतर जामी सदा हजूर। जो तुमरा जस गावे करते सेजन कबो न मरते चूर। तंद बंद बिनसे माया के साधु संगत मिटे बिसूर। सुख संपत भोग इस जी के बिन हर नानक जाने कूर। टोडी महला पंजवा माई मेरे मन की प्यास। एक खिन रह ना सको बिन प्रीतम दर्शन देखन कौ धारी मन आस। रहाओ सिमरो नाम निरंजन करते मन तनते सब किल विखनास। पूर्ण पार ब्रह्म सुखदाते अविनाशी बिमल जा को जास। संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा भेटे गुणतास। सांत सहज सूख मन उपजियो कोट सूर नानक प्रगास। टोडी महला पंजवा हर हर पद पावन। जी प्राण मान सुखदाता अंतर जामी मन को पावन रहाओ। सुंदर सुगड़ चतर सभ्यता रिद दास निवास। भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी। करम भूम बीजन सो खावन बिस्मन बिस्म पय बिस्मादा यान बियो दूसर लावन। रसना सिमर सिमर जस जीवा नानक दास सदा बल जावन। टोडी महला पंजवा माई माया शाल। त्रिन की अगन में की छाया गोविंद भजन बिन हड़का जाल रहाओ। छोड़ सियान बहु चितराई दोए कर जोड़ साध मग चल। सिमर स्वामी अंतर जामी मानुख देह का एहो उत्तम फल। बेद बखयान करत साधु जान पागहीन समझत नहीं खल। प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन पय माल। टोडी महला पंजवा माई चरण गुर मीठे वड़े भाग देवे परमेसर। कोट फला दर्शन गुर डीठे रहाओ। गुण गावत्या चुत अविनाशी काम क्रोध बिरसे मद टीठे। अस्त्र पय साच रंग राते जन्म मरण बाहुर नहीं पीठे। बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब झूठे। नाम रतन पायो जन नानक ना बेहून चले सब मूठे।

कायें रे बक बाद लायो, जिन हर पायो तने छपायो रहाओ। पंडित होए कै बेद बखाना, मूर्ख नाम देवरा मैं जाना। कौन को कलंक रहयो, राम नाम लेत ही पथ पवित पय राम कहत ही रहाओ। राम संग नाम देव जन कौ परत गया आई, एकादशी वर्त रह काहे कौ तीर्थ जाई। पंडित नाम देव सुकृत सुमत पय गुरमत राम कह, को ना बैकुंठ गए। तीन छंदे खेल अच्छ रहाओ, कुंभार के कर हांडी अच्छ, राजा के कर सांडी गो, बामन के कर रांडी अच्छ, रांडी सांडी हांडी गो, बाणिए के

साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान, जी सगल कौ दे दान रहाओ। तू काहे डोले प्राणिया, तुद राखेगा सिरजनहार, जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार। जिन उपाई मेदनी सोई करदा सार, कट कट मालक दिलां का सच्चा परवदगार। कुदरत कीम ना जानी है वड्डा वे परवाहो, कर बंदे तू बंदगी जिचर कट मैं साहो। तू समराथया काथया गोचर, जियो पिंड तेरी रास, रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास। तिलंग महला पंजवां कर तीजा, करते कुदरती मुस्ताक, दीन दुनिया एक तू ही सब खलक ही ते पाक रहाओ। खिन माहे था प्यो थापदा आचर्ज तेरे रूप, कौन जाने चलत तेरे अंधियारे मैं दीप। खुद खसम खलक जहान अल्लै, मेहरवान खुद आए, दिन सरैन जे तो दियारा दे सो क्यों दोजक जाए। अजराइल यार बंदे जिस तेरा आधार, गुने उसके सगले आफू तेरे जन देखे दीदार। दुनिया चीज फिलहाल सगले सच सुख तेरा नाओ, गुरमिल नानक बूझिया सदा एक सोगा।

दरियाओ तू देहांत तू बिसियार तू धनी देह लेह एक तू दिगर को नहीं तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी नामे चे स्वामी बखसंद तू हरी हल्ले यारा खुश खबरी बल बल जाओ हाँ बल बल जाओ नेकी तेरी बिगारी आले तेरा नाओ रहाओ कुजा आमद कुजा रफती कुजा मेरवई द्वारका नगरी रास बगोई खूब तेरी पगरी मीठे तेरे बोल द्वारका नगरी काहे के मगोल चंदी हजार आलम एक लखाना हम चिनी पातशाह सामले बरना आस पात गज पात नरे नरेंद नामे के स्वामी मीर मुकंद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद राग सुही महला पहला चौप दे कर पहला पांडा तोए बैस धूप देवो तौ दूधे कौ जावो दूध करम फुन सुरत समायण होए निराश जमावो जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा रहाओ एहो मनी टी हाथ करो फोन नेत्रो नींद ना आवे रसना नाम जपो तब मथिया इन बदे अमृत पावो मन संपट जित सत सरनावन पावन पाती तृप्त करे पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहेब रवत रहै कहिंदे कहै कहे कह जावै तुम सर अवर ना कोई भगतहीन नानक जन जंपै हाँ।

अंतर वसै ना बाहर जाए, अमृत छोट काहे बिख खाए। ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, होवो चक्र साचे केरे रहाओ। ज्ञान ध्यान सब कोई रवै, बंधन बंधया सब जग पवै। सेवा करे सो चाकर होए, जल थल महियल रव रहया सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सोए। सुही महला पहला, कर सेवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद उज्जल कहा चिलकना। कोटम कर लड़ी मस, तोतिया झूठ ना उतरै जे सो तोवा तिस। सज्जन सेई नाल मैं, चल दिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दिसन रहाओ। कोठे मंडप माड़िया पासो चितवियां हां, टठिया कम ना आवनी विचों सखणिया हां। बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंज वसन, कुटकुट जिया खावने बग्गे ना कई अन्न। सिमर रुख शरीर मैं जन देख पुलान, से फल कम ना आवनी ते गुण मैं तन हन। अंदले पार उठाया डूगर वाट बहुत, अखी लोड़ी ना लहा हौ चढ़ लंगा कित। चाकरियां चंगे आईयां अवर सियाण पकित, नानक नाम संभाल तू बद्दा छुट्टै जित। सुही महला पहला, जप तप का बंद बेड़ला, जित लंघै वहेला ना सरवर ना उछलै ऐसा पंथ सुहेला। तेरा एको नाम जीठड़ा, रत्ता मेरा चोला साध रंग ढोला रहाओ। साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई, जे गुण हो वै गंठड़ी है मेलेगा सोई। मिलिया होए ना विछड़ै जे मिलिया होई, आवा गौण निवारिया है साचा सोई। हम मैं मार निवारिया सीता है चोला, गुरबचनी फल पाया सह के अमृत बोला। नानक कह सहेलियो सौ खरा प्यारा, हम सह केरिया दासियां साचा खसम हमारा। सुही महला पहला, जिन कौ पांडे पाओ तिना सवार सी, सुखी करै पसाओ दुख विसार सी। सहसा मूले नाहे सर पर तार सी, इतना मिलिया गुर आए जिन कौ लिखिया। अमृत हर का नाव देवै दिखिया, चल ऐ सतगुर पाए पवै ना पिखिया। जा को महला हजूर दूजे नवै किस, दर दर वाणी नाहे मूले पुछ तिस। छुट्टै ता कै बोल साहिब नदर जिस, कल्ले आने आप जिस नाही दूजा मतै कोए। टाहे उसारे साज जाने सब सोए, नाओ नानक बख्शीस नदरी कर्म होए। सूही महला पहला, पांडा हच्छा सोए ज्योत स्पाव सी। पांडा आत्मलीन तोता हच्छा ना होए सी, गुरु द्वारे होए सोजी पाए सी। ये द्वारे तोए हच्छा होए सी, मैले हच्छे का विचार आप वरताए सी। मत को जाने जाए अगै पाए सी, जेहे कर्म कमाए तेहा होए सी। अमृत हर का नाम आप वरताए सी, चलिया पथ सिओ जन्म सवार। वाजा वाए सी मानस क्या विचारा, त्यो लोक सुनाए सी। नानक आप निहाल सब कुलतार सी।

तेरा सदड़ा सुनी जय भाई जे को बह अलाए रहाओ। जैसा बीजे सो लुणे जो खट्टे सो खाए अगे पुछ न होवई जे सणनी सण जाए। तैसो जैसा कांडी है जैसी कार कमाए जो दम चेतना आवई सो दम बिरथा जाए। एहो तन वेची बै करी जे को ले विकाए नानक कम ना आवई जतन नाही सच्चा नाओ। सूही महला पहला कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जोग ना खिंथा जोग ना डंडा जोग ना पसम चढ़ाई है जोग ना मुंदी मूंड मुंडाया जोग ना सिंगी वाई है। अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है गल्ली जोग ना होई एक दृष्ट कर संसर जाने जोगी कहिए सोई रहाओ। जोग ना बाहर मड़ी मसाणी जोग ना ताड़ी लाई है जोग ना दे संतर पवे जोग ना तीर्थ नाई है। अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है सतगुर भेटै ता सहसा टूटै तावत वर्ज रहाई है। निजर चरै सहे तुन लागै कर ही परचा पाई है। अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है नानक जीवत्या मर रही है ऐसा जो कमाई है। वाजे बाजो सिंगी वाजै तौ निरपौ पद पाई है। अंजन माहे निरंजन रही है जो जुग तौ पाई है।

प्रवलोचपूर जन तुम गा। तुम समरथ पुरख वड्डे प्रभ स्वामी, मोको कीजै दान हर निमगा। जन नानक नाम मिलै सुख पावै, हम नाम मिटौं सद घुमगा।

बहुत चितराई मनवा दे दस्तावे हम मैं ब्यापया शब्द ना चीने फिर जूनी आवे नानक नजर करे सो बूझे।

प्रसाद गुरमत नगरी खोज खोज आई, हर हर नाम पदार्थ पाई, मेरा मन हर हर सांत वसाई। तिसना अग्न बुझी खने अंतर, गुर मिलिया सब भुख गवाई रहाओ। हर गुण गावा जीवा मेरी माई, सतगुर दयाल गुण नाम दृढ़ाई। हों हर पर प्यारा टूंड टूंडाई, सत्संगत मिल हर रस पाई। तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक तुठा मेला हर पाई। सुही महला चौथा, हर कृपा करे मन हर रंग लाए। गुरमुख हर हर नाम समाए, हर रंग राता मन रंग माने। सदा आनंद रह दिन राती, पूरे गुर कै शब्द समाने रहाओ। हर रंग को लोचे सब कोई, गुरमुख रंग चलूला होई। मन मुख मुग्ध नर कोरा होए, जे सौ लोचे रंग ना हो वै कोय। नदर करे ता सतगुर पावे, नानक हर रस हर रंग समावे। सुही महला चौथा, जे वाह रस रही अगाए। गुरमुख पीवे सही समाए, हर रस जन चाखो जे पाई। तौकत अनंत साध लो भाई रहाओ। गुरमत रस राखो उरतार, हर रस राते रंग मुरार। मन मुख हर रस चाखिया ना जाए, हों मैं करे बहुती मिलै सजाए। नदर करे ता हर रस पावे, नानक हर रस हर गुण गावे। सूही महला चौथा, कर सेवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद नीच जात हर जपत्या, उत्तम पदवी पाए। पूछो बिदर दासी सुतै, किसन उतरिया कर जिस जाए। हर किया कथ कथा सुनो जन पाई, जित सहसा दुख भूख सब लह जाए रहाओ। रविदास चमार उस्तत करे, हर कीर्त निमख एक गाए। पतत जात उत्तम पया, चार वर्ण पय पगयाए। नाम दे प्रीत लगी हर सेती, लोक शिपा कह बुलाए। खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोड़े, हर नाम दे लिया मुख लाए। जितने भगत हर सेवका, मुख 68 तीर्थ तिन तिलक कढ़ाए। जन नानक तिन को वंदन परसे, जे कृपा करे हर राए। सूही महला चौथा, तिन्नी अंतर हर आराध्या। जिनको तुर लिखिया लिखत ललारा, तिन की बखीली कोई क्या करे। जिनका अंग करे मेरा हर करतारा, हर हर त्याए मन मेरे मन त्याए हर। जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा रहाओ। तुर भगत जना को बख्सिया, हर अमृत भगत भंडारा। मूर्ख होवे सो उनकी रीस करे, तिस हलत पलत मोहकारा। से भगत से सेवका, जिन्ना हर नाम प्यारा। तिनकी सेवा ते हर पाई है, सिर निंदक कै पवे इशारा। जिस घर विरती सोई जाने, जगत गुर नानक पूछ करो बिचारा। चहो पीड़ी आद जुगाद, बखीली किने ना पायो। हर सेवक पाए निस्तारा, सुही महला चौथा। जिथे हर आराधिया, तिथे हर मित सहाई। गुर कृपा ते हर मन वसै, होरत बिद लया ना जाई। हर तन संचिया पाई, जे हलत पलत हर होए सखाई रहाओ। सत संगति संग हर तन खटी है, होरत है होरत उपाए। हर तन कितै ना पाई, हर रतने का वापारिया। हर तन तन विहाजे, कच्चे के वापारिये। वाके हर तन लया ना जाई, हर तन रतन जिवे हर माणक। हर तन नाल अमृत वे लैवत, हर भक्ति हर लिवलाई। हर तन अमृत वे लैवत का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निखुट नाही। हालत पालत हर तने की, भगता को मिली वड्याई। हर तन निरपौ सदा सदा अस्त्र है साचा। एहो हर तन अग्नि तस्करे, पानी है जमदूते। किसे का गवाया न जाई, हर तन का ओ चक्का नेड़ न आवई।
जम जा गाती डंड ना लगाई, सागती पाप करके बिखिया तन संचया, तिन्ना एक विख नाल ना जाई, हलते विच सागत दुहेले पए हथों छुड़क गया, अगे पलत सागत हर दरगे ढोई ना पाई, इस हर तन का साहो हर आप है संतो, जिसनों दे सो हर तन लद चलाई, इस हर तन का तोटा कदे ना आवई, जन नानक कौ गुरसो जी पाई, सुही महला चौथा, जिसनो हर सो प्रसन्न होए, सो हर गुणा रवै, सो भगत सो परवान, तिसकी महिमा क्या वर्णी है, जिसके हृदय वसिया हर पुरख भगवान, गोविंद गुण गाइए जियो, लाए सतगुरु नाल ध्यान रहाओ, सो सतगुरु सा सेवा सतगुर की सफल है, जिसते पाइए परम निदान, जो दूजे पाए सागत कामना अर्थ दुर्गंध सिरे वंदे, सो निफल सब अगे

उनका उत्तर जाएगा झूठ को मान, जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान, दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी वखियान, सुही महला चौथा कर सतवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहेब गुणी निदाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साकौ, तू ठाकर ऊच भगवाना, मैं हर हर नाम तर सोई, ज्यो भावै त्यो राख मेरे साहेब, मैं तुझ बिन अवर ना कोई रहाओ, मैं तान दी बाण तू है मेरे स्वामी, मैं तुझ आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही जिस पै करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास, विचे धरती विचे पानी, विच काष्ट अगंत रीजै, बकरी सिंह एक तै थाए राखे, मन हर जा भ्रम पौ दूर की जय, हर की वड़ियाई देखो संतो, हर निमाणिया मान देवाए, ज्यो धरती चरण तले ते उपर आवै, त्यों नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाए, सूही महला चौथा तू करता सब किछ आपे जाने, क्या तुद पै आग सुनाई है, बुरा भला तू सबके सूझै, जिहा को करे तिहा को पाई है, मेरे साहेब तू अंतर की बिद जाने, बुरा भला तू सबके सूझै, तुद भावै तवै बुलावै रहाओ, सब मोह माया शरीर हर किया, विच देही मानुख भगत कराई, एक ना सतगुर मेल सुख देवै, एक मन मुख तंद पिटाई, सब को तेरा तू सबना का मेरे करते, तुद सबना सिर लिखिया लेख, जेही तू नदर करै तेहा को होवै, बिन नदरी नाही को पेख, तेरी वड़ियाई तू है जाने, सब तुदनो नित ते आए, जिसनो तुद पावै तिसनो तू मिलै, जन नानक सो थाए पाए, सुही महला चौथा जिनके अंतर वसिया मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाए, ते मुक्त पए जिन हर नाम ते आया, तिन पवित्र परम पद पाए,

ब्रह्मा बिसर महादेव त्रै गुण रोगी विचहो मैं कार कमाई जिन किए तिसै न चेतै बपड़े हर गुरमुख सो जी पाई हौ मैं रोग सब जगत व्यापिया तिन कहो जन मरण दुख भारी गुर प्रसादी को विरला छूटै तिस जन कहो हौ बलिहारी जिन सिष्ट साजी सोई हर जाणै ताका रूपया पारो नानक आपे वेख हर बिकसै गुरमुख ब्रह्म बिचारो सुही महला चौथा कीता करना सरबर जाई किश कीचै जे कर सकी अपना कीता किशु ना होवै ज्यों हर भावै त्यों रखी मेरे हर जियो सब को तेरै वस असा जोर नाही जे किश कर हम साकै ज्यों भावै तिवें बख्स रहाओ सब जियो पिंड दिया तुदे आपे कर लाया जेहा तू हुक्म करै तेहे को कर्म कमावै जेहा तू तुर लिख पाया पंच तत् कर तुद सिरिट सब साजी कोई सेवा करियो जे किश कीता होवै एक ना सतगुर मेल तू बुझावै एक मन मुख करै से रोवै हर की वडियाई हौ आख ना साका हौ मूर्ख मुग्ध नी जान जन नानक कहो हर बख्श लै मेरे स्वामी शरणागत पया अजान राग सूही महला पंजवा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद बाजी गर जैसे बाजी पाई नाना रूप भेख दिखलाई सांग उतार थम्यो पासारा तब एको एक ओंकारा कवन रूप दृष्टियो बिनसायो कतै गयो ओ काते आयो रहाओ जल ते उठे अनक तरंगा कनक भूखन कीने बहुरंगा बीज बीज देखियो बहु प्रकारा फल पाके ते कंकारा सहस घटा मैं एक आकाश घट फूटे ते ओही प्रगास भरम लोभ मोह माया विकार भ्रम छूटे ते एकंकार ओह अबनासी बिन सत नाही ना को आवै ना को जाही गुरपूरै हौ मैं मल धोई कहो नानक मेरी परम गत होई सुही महला पंजवा कीता लोड़ै सो प्रभ होए तुद बिन दूजा नाही कोए जो जन सेवे तिस पूर्ण काज दास अपने की रख लाज तेरी शरण पूर्ण दयाला तुझ बिन कमन करे प्रतपाला रहाओ जल थल महियल रहया परपूर निकट वसै नाही प्रभ दूर लोक पति आरै कछु ना पाईऐ साच लगै ताह मैं जाइऐ जिसनो लाए लय सो लागै ज्ञान रतन अंतर तिस जागै दुरमत जाए।

फिर पछतावै जब रहन विहावै कर्महीन मनमुख दुख पावै बिनो करीजे जाना दूर प्रभव नासी रहा भरपूर जन नानक गावै देखा दूर सूही महला पंजवा गृह वस गुर की ना हो कर की नार दस दासी कर दीनी पतार सगल समग्री मैं कर की जोड़ी आस प्यासी पिर को लोड़ी कवन कहा गुण कंत प्यारे सुगुण स्वरूप दयाल मुरारे रहाओ सत सिंगार पौ अंजन पाया अमृत नाम तंबोल मुख खाया कंगन बस्तर गहने बने सुहावे तन सब सुख पावे जा पिर कर आवे गुण कामण कर कं

प्रगटया सूर ज्योत उजियारा सेज विशाई सरदया पारा नव रंग लाल सेज राम ने आया जन नानक पिर तन मिल सुख पाया सूही महला पंजवा उम क्यो हियो मिलन प्रभताई खोजित चरियो देखो प्रे जाई सुनत संदे सरो प्रे ग्रह सेज विशाई भ्रम भ्रम आयो तौ नजर ना पाई किन बिद हियरो धीरे निमानो मिल साजन हो तुझ कुर्बानो रहाओ एका सेज विशी तन कंता तन सूती पिर सदजा गंता पियो मदरो तन मतवंता तन जागे जे पिर बोलंता पही निरासी बहुत दिन लागे देह दिसंतर मैं सगले जागे खिन रहन ना पावाओ बिन पग पागे होए कृपाल प्रभ मिलै सुभागे भयो कृपाल सतसंग मिलाया बूझी तप्त करै पिर पाया सगल सिंगार हुण मुझै सुहाया कहो नानक गुर परम चुकाया जै देखा तै पिर है भाई खोलियो कपाट ता मन ठहराई रहाओ दूजा सूही महला पंजवा क्या गुण तेरे।

लाल रंगीले प्रीतम मनमोहनो तेरे दर्शन को हम बारे रहाओ। प्रभ दाता मोहि दीन पेखारी तुम सदा सदा उपकारे सो किश नाही जे मैं ते होवै मेरे ठाकुर अगमे अपारे क्या सेवक मावो क्या कहरी जावो बिदगित पावो दरसारे मित नहीं पाई है अंत न लही है मंत्र सह चरनारे पावो दान ढीठ होए मांगो मुख लागे संतरे नारे जन नानक कहो गुर कृपा तारी प्रभ हाथ दे निस्तारे सुही महला पंजवा कर तीजा एको अंकार सतगुर प्रसाद सेवा थोरी मंगन बहुता महल ना पावे कह तो पहुता जो प्रेमाने तिनकी रीसा कूड़े मूर्ख की हाठी सा रहाओ पेख दिखावे सच ना कमावे कह तो महली निकट ना आवे अतीत सदाए माया का माता मने प्रीत कह मुखराता कहो नानक प्रभ बिनो सुनी जय कुचल कठोर कामी मुक्त की जय दर्शन देखे की वडियाई तुम सुखदाते पुरख सुभाई रहाओ दूजा सूही महला पंजवा बुरे काम को ऊठ खलोया नाम की बेला पै पै सोया अवसर अपना बुझे ना याना माया मोह रंग लपटाना रहाओ लोभ लहर कौ बिकस फूल बैठा सात जना का दर्शन दीठा कबहू ना समझे अज्ञान गवारा बहुर बहुर लपट्यो जंजारा रहाओ बिखे नाद करन सुन पीना हर जा सुनते आलस मन कीना दृष्ट नाही रे पेखते अंदे छोड़ जाहे झूठे सब तंदे रहाओ कहो नानक प्रभ बख्श करी जय कर कृपा मोहे साध संग दीजै तौ किश पाईऐ जौ

साच नाम की अमृत वर्खा गोहज कथा ए गुरते जानी नानक बोले हर हर बाणी सूही महला पंजवा जा कै दर्स पाप कोट उतारे भेटत संग एहो पव जल तारे ओए साजन ओए मीत प्यारे जो हमको हर नाम चितारे रहाओ जा का शब्द सुनत सुख सारे जा की टहल जम दूत बिदारे जा की पीरक इस मने सुधारे जा कै सिमरन मुख उजलारे प्रभ के सेवक प्रभ आप सवारे शरण नानक तिन सद बलिहारे सूही।

सच्चा धर्म पुन भला कराए, दीन कह तो सह दुनी ना जाए, सर्व निरंतर एको जागे, जित जित लाया तित तित को लागे। अगम्या गोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले बोलाया तेरा। सुही महला पंजवा, प्रातः काल हर नाम उचारी, ईत ऊत की ओट सवारी। सदा सदा जपिए हर नाम, पूर्ण होवे मन के काम। रहाओ प्रभ अविनाशी रहन दिन गाओ, जीवत मरत निहचर पावे थाओ। सो साहो सेव जे टोट ना आवे, खात खर्चत सुख अंध विहावे। जग जीवन पुरख साध संग पाया, गुर प्रसाद नानक नाम ते आया। सुही महला पंजवा, गुर पूरे जपहे दयाल, दुख बिन से पूर्ण पई काल। पेख पेख जीवा दर्स तुम्हारा, चरण कमल जाई बलिहारा। तुझ बिन ठाकुर कवन हमारा, रहाओ। साध संगत स्यों प्रीत बन आई, पूर्व कर्म लिखत तुर पाई। जप हर हर नाम अचरज प्रताप, जाल न सके तीने ताप। निमख न बिसरे हर चरण तुम्हारे, नानक मांगे दान प्यारे। सुही महला पंजवा, से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे।

जिस कृपा करे बसे तिस नेरा, जन की भूख तेरा नाम आहार, तू दाता प्रभ देवनहार। राम रमत संतन सुख माना, नानक देवनहार सो जाना। सुही महला पंजवा, बहती जात कदे दृष्णा तारत, मिथ्या मोह बंधे नित पारच। माधवे पज दिन नित रैणी, जन पदार्थ जीत हर सरणी रहाओ। करत बेकार दो कर चारत, राम रतन रेतल नहीं तारत। परन पोखन संग औद बिहानी, जय जगदीश की गत नहीं जानी। सरण समरथ अगोचर स्वामी, उदर नानक प्रभ अंतर जामी। सूही महला पंजवा, साध संग तरै पै सागर। हर हर नाम सिमर रतनागर, सिमर सिमर जीवा नारायण। दुख रोग सोग सब से गुर पूरे, मिल पाप तजायण रहाओ। जीवन पदवी हर का नाओ, मन तन निर्मल साच सुवाओ। आठ पहर पार ब्रह्म ते आई है, पूर्व लिखत होए ता पाई है। शरण पए जब दीन दयाला, नानक जाचै संतर वाला। सुही महला पंजवा, कर का काज ना जानी रूड़ा, झूठे तंदे रचियो मूड़ा।

दर्शन कौ लोचै सब कोई, पूरे भाग प्राप्त होई रहाओ। श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई, महामोहनी दूता लाई। प्रेम विशोहा करत गसाई, निर्दय जंत तिस दया ना पाई। अनक जन्म बीतियन परमाई, करवास ना देवै दुत्तर माई। दिन रैन अपना किया पाई, किस दोष ना दीजै किरत पवाई। सुन साजन संत जन पाई, चरण सरन नानक गत पाई। राग सुही महला पंजवां, घर चौथा एको ओंकार। सतगुर प्रसाद भली सुहावी छापरी, जा मैं गुण गाए। कित ही कामना तौल हर, जित हर बिसराए रहाओ। अनद गरीबी साध संग, जित प्रभ चित आए। जल जाओ एह बड़पना, माया लपटाए। पीसन पीस ओड कामरी, सुख मन संतोख आए। ऐसो राजना कितै काज, जितने त्रिपताए। नगन फिरत रंग एक कै, ओहो सोभा पाए। पाठ पटंबर बिरथिया, जेहरा चलो बाए। सब किश तुमरै हाथ प्रभ, आप करे कराए। सास सास सिमरत रहा, नानक दान पाए। सूही महला पंजवां, हर का संत प्राण धन।

तू दयाल कृपाल कृपा निध मनसा पूर्ण हारा भगत तेरे सब प्राण पद प्रीतम तू भगतन का प्यारा तू अथाह अपार अति ऊचा कोई अवर ना तेरी पत ए अरदास हमारी स्वामी विसर नाही सुखदाते दिन रहन सास सास गुण गावा जे स्वामी तुद पावा नाम तेरा सुख नानक मांगै साहिब तुठै पावा सूही महला पंजवा विसरै नाही जे तू कबहू सो थान तेरा केहा आठ पहर जे तुद ते आई निर्मल होवै देहा मेरे राम हौ सो थान पालन आया खोजत खोजत पया साध संग तिन सरनाई पाया रहाओ वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे हारे एक तिल नहीं कीमत पाई साधक सिद्ध फिरै बिललाते ते पी मोहे माई दस अवतार राजे होए वरते महादेव अवधूता तिन पी अंत न पायो तेरा लाए थके बिपूता सहज सुख आनंद नाम रस हर संति मंगल गाया सफल दर्शन भेट्यो गुरु नानक ता मन तन हर हर त्याया सुही महला पंजवा कर्म धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जागाती लूटै निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमख सिमरत जित छूटै संतहो सागर पार उतरिय जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिय रहाओ कोट तीर्थ मजन इस नाना इस कल में मैल भरी जै साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर ली जै वेद कतेब सिमरत सब शास्त्र इन पढ़िया मुक्त ना होई एक अखर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोई खत्री ब्राह्मण सूद बैस उपदेश चौं वर्ण को सांझा गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल मैं कड़कट नानक माजा सूही महला पंजवा जो किश करै सोई प्रमानै ओए राम नाम रंग राते तिनकी शोभा सबनी थाई जिन प्रभ के चरण पराते मेरे राम हर संता जीवड़ ना कोई भगता बने आई प्रभ अपने स्यों जल थल मैयल सोई रहाओ कोट अपराधी संत संग उदरे जमता कै निर्णय आवै जन्म जन्म का विछड़िया होवै तन हर स्यों आन मिलावै

जन की महिमा केतक वर्णो जो प्रभु अपने पहाणे कहो नानक जिन सतगुर भेटिया से सब ते पए निकाणे।

प्यास चुकाई मेरे राम राए तुद चित आया उबरे तेरी टेक प्रभासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उधरे रहाओ अंध कूप ते काल लिए तुम आप है कृपाला सार समाल सर्व सुख दिए आप करे प्रतपाला अपनी नदर करे परमेश्वर बंधन काट छड़ाए अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए परम गया पै मोह बिनासे मिटिया सगल विसूरा नानक दया करी सुखदाता पेटिया सतगुर पूरा सूही महला पंजवा जब कछ ना सी ओ तब क्या करता कवन कर्म कर आया अपना खेल आप कर देख ठाकर रचन रचाया मेरे राम राय मुझते कछु न होई आपे करता आप कराए सर्व निरंतर सोई रहाओ गणती गणी न छूटे कतहू काची दे आनी कृपा करो प्रभ करण हारे तेरी बख्श निराली जी जंत सब तेरे कीते घट घट तू ही ते आई है तेरी गत मित तू है जाने कुदरत कीम ना पाई है निर्गुण मुग्द अजान अज्ञानी कर्म धर्म नहीं जाना दया करो नानक गुण गावे मिठा लगे तेरा पाना सूही महला पंजवा पाग ठड़े हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नामा प्रवान गणी से ही एह आए सफल तिन्ना के कामा मेरे राम हर जन कह

ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। सूही महला पंजवां सगल त्याग।

आठ पहर प्रभ अपना त्याई है, गुर प्रसाद पौतरी है, आप त्याग होई है सब रेणा, जीवत्या इं मरी है, सफल जन्म तिसका जग पीतर, साध संग नाव जापे।

कर कृपा अपना नाम दीजै नानक सादर वाला। राग सूही अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सब अवगुण में गुण नहीं कोई क्यों कर कंत मिलावा होई। ना मैं रूप ना बंके नैना ना कुल ढंग ना मीठे बैना रहाओ। सहज सिंगार कामन कर आवै ता सुहागण जा कंत पावै। ना तिस रूप ना रेख्या काई अंत ना साहेब सिमरिया जाई। सुरत मत नाही चतराई कर कृपा प्रभ लावो पाई। खरी सयाणी कंत ना पाणी माया लागी परम पुलाणी। हौ मैं जाई ता कंत समाई तौ कामण प्यारे नवनिध पाई। अनक जन्म बिछरत दुख पाया कर गै ले हो प्रीतम प्रबराया। पंडित नानक सौ है पी होसी जय पावै प्यारा तैं रावेसी। सूही महला पहला कर नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कच्चा रंग कसुंब का थोड़िया दिन चार जियो। विणना मैं परम पुलिया ठग मुठी कूड़ियार जियो। सच्चे सेती रत्या जन्म ना दूजी वार जियो। रंगे का क्या रंगी है जो रत्ते रंग लाए जियो। रंगण वाला सेवी है सच्चे सोच तलाए जियो। रहाओ चारे कुंडा जे पवै बिन भागा।

तिन मुख नाम न उपजै दूजै व्यापे चोर जियो मूल न बुझै अपना से पशुआ से ढोर जियो नित नित खुशियां मन करे नित नित मंगै सुख जियो करता चेतना आवई फिर लगै दुख जियो सुख दुख दाता मन वसै ते तन कैसी भुख जियो बाकी वाला तलबिया सिर मारे जंदार जियो लेखा मंगै देवना पुछे कर बिचार जियो सच्चे की लिव उबरै बख्शे बख्शनहार जियो अन को की जय मित्रा खाक रलै मर जाए जियो बहु रंग देख पुलाया पुल पुल आवै जाए जियो नजर प्रभु ते छुट्टी है नजरी मेल मिलाए जियो गाफल ज्ञान में होनिया गुरबिन ज्ञान न पाल जियो खिंचो तान में गुची है बुरा भला दोए नाल जियो बिन शब्द पैर ते आ सब जो ही जमकाल जियो जिन कर कारण तारे आ सब सहदे आधार जियो सो क्यों मनो विसारी है सदा सदा दातार जियो नानक नाम ना विसरै निदारा आधार जियो सुही महला पहला काफी कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया मन तन होए चुलंब जे सतगुर पाया चलै जन्म सवार वखर सच लै पथ पाए दरबार सतगुर शब्द पै रहाओ मन तन सच सलाहे साचे मन पाया लाल रत्ता मन मानिया गुरपूरा पाया हौं जीवा गुण सार अंतर तू वसै मन माए सहजे रस रसै मूर्ख मन समझाए आखो के तड़ा गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा नित नित हृदय संभाल प्रीतम अपना जे चलै गुण नाल नाही दुख संतापना मन मुख परम पुलाना ना तिस रंग है मरसी होए विडाणा मन तन भंग है गुर की कार कमाए लाहा कर आणिया गुरबाणी निर्बाण शब्द पछाणिया एक नानक की अरदास जे तुद पावसी मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी सुही महला पहला ज्यों आरन लोहा पाए पन कढ़ाइयै त्यों साक्त जोनी पाए पवै पवाइयै बिन बूझे सब दुख दुख कमावना हों मैं आवै जाए परम पुलावना रहाओ तू गुरमुख रखनहार हर नाम ते आई है मिले तुझै रजाए शब्द कमाई है तू कर कर वेखै आप देह सो पाई है तू देखै थापो थाप दर भी नाई है

जे पास बहाल है ता तुझे अराधी, जे मार कड़े पी त्याई। जे लोग सलाहे ता तेरी उपमा, जे निंदे ता छोड़ ना जाई। जे तुद वल रह ता कोई, किहो आखो तुद विसरिया मर जाई। वार वार जाई गुरी उपर, पै पैरी संत मनाई। नानक विचारा पया दीवाना, हर तौ दर्शन कह ताई। चखड़ चांगी मीहो वरसै, पी गुर देखण जाई। समुंद सागर होवै बौखारा, गुर सिख लंघ गुर पह जाई। ज्यों प्राणी जल बिन है मरता, त्यों सिख गुर बिन मर जाई। ज्यों धरती सोभ करे जल बरसै, त्यों सिख गुर मिल बिगसाई। सेवका होए सेवक वरता, कर कर बिन बुलाई। नानक की बेनंती हर पै, गुर मिल गुर सुख पाई। तू आपे गुर चेला है आपे, गुर विच दे तुझे ते आई। जे तुद सेवै जो तुद सेवै, सो तू है होवै। तुद सेवक पैज रखाई। भंडार भरे भगती हर तेरे, जिस पावै तिस देवाई। जिस तू देहे सोई जन पाए, होर ने फल सब चतराई। सिमर सिमर सिमर गुर अपना, सोया मन जागाई। एक दान मंगे नानक बेचारा, हर दासन दास कराई। जे गुर चिड़के ता मीठा लागै, जे बक्से ता गुर वडियाई। गुरमुख बोलै सो थाए पाए, मन मुख किछ थाए ना पाई। पाला ककर वर्फ वरसै, गुर सिख गुर देखण जाई। सब दिन सरैन देखो गुर अपना, विच अखी गुर पैर तराई। अनेक उपाव करी गुर कारण, गुर भावै सो थाए पाई। रैन दिनस गुर चरण आराधी, दया करो मेरे साई। नानक का जियो पिंड गुरु है, गुर मिल तृप्त अगाई। नानक का प्रभ पूर रहो है, जत कत तत गोसाई। राग सुही महला चौथा, अष्टपदियां कर दसवां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम अपने। मन मन होए निहाल, जगत देखा सामने। मैं हर हर नाम विसाहो, गुर पूरे ते पाया। अमृत अगम अथा हो रहा हो, हाँ सतगुर वेख विकसिया। हर नाम में लगा प्यार, कृपा करके मेलिया न पाया मोख द्वार। सतगुर बिरही नाम का, जे मिलै ता तन मन दे। जे पूर्व होवै लिखिया, ता अमृत सहज पिए। सुतिया गुर साला ही है, उठदिया पी गुर आलाओ। कोई ऐसा गुरमुख जे मिलै, हाँ ता के तोवा पाओ। कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो, जो प्रीतम दे मिलाए। सतगुर मिलिया हर पाया, मिलिया सह सुभाए। सतगुर सागर गुण नाम का, तिस देखण का चाओ। हाँ तिस जीव बिन देखे मर जाओ। ज्यो मछली बिन पानी है, रहे न कितै पाए। त्यों हर बिन संत न जीवई, बिन हर नामै मर जाए। मैं सतगुर सेती पर हड़ी, क्यों

ना आवै ना जाए, ओह अबनासी पुरख है समय रह समाए। राम नाम तन संचया साबत पूंजी रास, नानक दरगह मन्या गुरपूरे साबास। राग सूही अष्टपदियां महला पंजवां, कर पहला एको अंकार सदगुर प्रसाद। उर्ज रहे हो बिखिया कै संगा, मने व्यापत अनक तिरंगा। मेरे मन अगम्य गोचर कत पाइए पूर्ण परमेश्वर रहाओ। मोह मगन में रहया व्यापे अतृष्णा कबहू नहीं त्रापे। बसै क्रोध शरीर चंडारा अज्ञान न सूजै महा गुबारा। प्रमत व्यापत जरे केवारा जान न पाइय प्रभ दरबारा। आसा अंदेसा बंद पराना महल न पावै फिरत बिगाना। सगल ब्याध कै वस कर दीना फिरत प्यास ज्यो जल बिन मीना। कछु सियान पयुगत ना मोरी एस एक आस ठाकर प्रभ तोरी। करो बेनती संतन पासे मेल लहो नानक अरदासे। भयो कृपाल साध संग पाया नानक तृप्ते पूरा पाया। रहाओ दूजा राग सूही महला पंजवा, कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मिथन मोह अग्न शोक सागर कर कृपा उदर हर नागर। चरण कमल सरनाय नारायण दीनानाथ भगत परायण। रहाओ अनाथा नाथ भगत भय मेटन साध संग जमदूत ना भेटन। जीवन रूप अनूप दयाला रमण गुणा कटिया जमजाला। अमृत नाम रसन नित जापै रोग रूप माया ना व्यापै। जप गोबिंद संगी सब तारे पोहत नाही पंच बटवारे। मन बच क्रम प्रभ एक ते आए सरफला सोई जन पाए। तार अनुग्रह अपना प्रभ की ना केवल नाम भगत रस दीना। आद मद अंत प्रभ सोई नानक तिस बिने अवर ना कोई। राग सूही महला पंजवा अष्टपदिया करनावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जिन डिठिया मन रहसी क्यों पाई है तन संग जियो। संत सज्जन मन मित्र से लायन प्रभ से रंग जियो। तिन स्यो प्रीत न टुटई कबो न हो वै भंग जियो। पार ब्रह्म प्रभ कर दया गुण गावा तेरे नित जियो। आए मिलो संत सज्जना नाम जपै मन मित जियो। रहाओ देखे सुने न जानई माया मोहया अंध जियो। काची देहा विनसनी कूड़ कमावै तंद जियो। नाम ते आवै सेजन चले गुरपूरे संबंध जियो। हुक्मे जुगमे आया चलन हुक्म संजोग जियो। हुक्मे परपंच पसरिया हुक्म करे रस भोग जियो। जिसनो करता विसरै तिसे विछोड़ा सोग जियो। अपने प्रभाणिया दरगह पैंदा जाए जियो। एथे सुख मुखी उजला इको नाम ते आए जियो। आदर दिता पार ब्रह्म गुर सेविया सत पाए जियो। थान थनंतर रव रहया सर्ब जिया प्रतपाल जियो। सच खजाना संचया एक नाम तन माल जियो। मन ते कहो न विसरै जा आपे हुए दयाल जियो। आवन जाना रह गए मन उठा निरंकार जियो। ता कायंत न पाईऐ ऊंचा अगमे अपार जियो। जिस प्रभ अपना विसरै सोमर जमै लखवार जियो।
ਸਾਚ ਨੇਹੋ ਤਿਨ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਿਨ ਮਨ ਬੁੱਠਾ ਆਪ ਜੀਓ ਗੁਣ ਸਾਂਝੀ ਤਿਨ ਸੰਗ ਬਸੇ ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪ ਜੀਓ ਰੰਗ ਰਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਿਨਸੇ ਸਗਲ ਸੰਤਾਪ ਜੀਓ ਤੂੰ ਕਰਤਾ

जियो, नानक नाम सदा जपी भगत जना की टेक जियो। राग सूही महला पंजवा, अष्टपदियां कर दसवां, काफी एको अंकार सतगुर प्रसाद। जे भुली जे चुकी साई पीत हिंजी काढ़िया, जिन्ना नेहो दू जाने लगा चूर मरो सेवा डिया। हाओ ना छोड़ा कंत पासरा, सदा रंगीला लाल प्यारा, एहो महिंजा आसरा रहा। सज्जन तू है सैन तू, मैं तुझ ऊपर बहु माणिया, जा तू अंदर ता सुखे तू निमाणी माणिया। जे तू तुठा कृपा निधान, ना दूजा वे खाल, एहा पाई मुदा तड़ी नित हिरदै रखा समाल। पाव जुलाई पंद तो नैनी दर्स दिखाल, श्रवणी सुनी कहानिया जे गुरथी वै कृपाल। किती लख करोड़ प्रिये रोम न पुजन तेरिया, तू साही हूं साहो हाँ कह ना सका गुण तेरिया। सहिया तऊ असंख मन्यो हब वदानिया, हिक पोरी नदर निहाल देहे दर्श रंग माणिया। जय डिठे मन तीरिय किल विख वंजन दूरे, सो क्यों विसरे माओ मैं जो रहा पर पूरे। होए निमाणी टह पई मिलिया सह सुभाए, पूर्व लिखिया पाया नानक संत सहाय। सूही महला पंजवा, सिमरत बेद पुराण पुकारन पोथिया, नाम बिना सब कूड़ गाली होछिया। नाम निदान अपार भगता मन वसै, जन मरण मोह दुख साधु संग न सह रहा। मोहे बाद अहंकार सर पर रुनिया, सुख ना पायन मूल नाम विशुनिया। मेरी मेरी तार बंधन बंधिया, नरक सुर्ग अवतार माया तंदिया। सोदत सोदत सोद, सोद सोदत सोदत सोद तत बिचारिया, नाम बिना सुख नाहे सर पर हारिया। आवे जाय अनेक मर मर जन्म ते, बिन बूझे सब वाद जोनी परम ते। जिन कौ पहे दयाल तिन साधु संग पया, अमृत हर का नाम तिन्नी जनी जप लया। खोजै कोट असंख बहुत अनंत के, जिस बुझाए आप नेड़ा तिस हे। विसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक चाओ एहो। राग सुही महला पहला, कुचजी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन कुचजी अमावन डोसड़े, हाँ क्यों सौ रावण जाओ जियो। एक दू एक चिड़ंदियां कौन जाने मेरा नाओ जियो। जिनी सखी सौरावया से अंबी शावड़ी यह जियो, से गुण मंजना यावनी हाँ कह जी दोस्त रेव जियो। क्या गुण तेरे विथरा हाँ क्या क्या किन्ना तेरा नाओ जियो। एक तटोल ना अंबड़ा हाँ सतगुर बाण तेरे जाओ जियो। सोइना रूपा रंगला मोती तै माणक जियो, से वस्तु सह दितियां मैं तिन स्यों लाया चित जियो। मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की तेरास जियो, हाँ एनी टोली पुली अस तिस्कंत ना बैठी पास जियो। अंबर कूजा कुरलिया बग बैठे आए जियो, सातन चली साहोर है क्या मोह देसी अगे जाए जियो। सुती सुती चाल थिया पुली वाटड़ यास जियो, तै सह नालो मुक्ति अस दुखा को तरियास जियो। तुद गुण मैं सब अवगणा एक नानक की अरदास जियो, सब राती सोहागणी मैं डोहागण काई रात जियो। सूही महला पहला सुचजी, जा तू ता मैं सब को तू साहिब मेरी राज जियो।
ਤੁਧ ਅੰਤਰ ਹਾਂ ਸੁਖ ਵਸਾਂ, ਤੂੰ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਆਸ ਜੀਓ। ਪਾਣੈ ਤਖਤ ਵਡਾਈਆ, ਪਾਣੈ ਪੀਖੋ ਦਾਸ ਜੀਓ। ਪਾਣੈ ਥਲ ਸਿਰ ਸਰਵ ਹੈ, ਕਮਲ ਫੁੱਲੈ ਆਕਾਸ ਜੀਓ। ਪਾਣੈ ਪਵਜਲ ਲੰਘੀਐ, ਪਾਣੈ ਮੰਝ ਪਰੀ ਆਸ ਜੀਓ। ਪਾਣੈ ਸੋ ਸਹੋ ਰੰਗਲਾ, ਸਿਫਤਰਤਾ ਗੁਣਦਾਸ ਜੀਓ। ਪਾਣੈ ਸਹੁ ਪੀਹਾਵਲਾ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਮੁਈ ਆਸ ਜੀਓ। ਤੂੰ ਸੋ ਅਗਮਾ ਤੋਲਵਾ, ਹਉ ਕਹਿ ਕਹਿ ਟਹਿ ਪਈ ਆਸ ਜੀਓ। ਕਿਆ ਮੰਗਾਂ ਕਿਆ ਕਹਿ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਜੀਓ। ਗੁਰਸਬਦੀ ਸਹੁ ਪਾਇਆ, ਸਚ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੁਣਵੰਤੀ ਜੋ ਦਿਸੈ ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ, ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਆਖਾ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਕੀ, ਗੁਰਸੱਜਣ ਦੇ ਮਿਲਾਏ ਜੀਓ। ਸੋਈ ਦਸ

ठाकुर पाणी सा गुणवंती तिन्ही सब रंग माणा, नानक की तर तू है ठाकुर तू नानक का माणा। हम वारी वन्या कोली वन्या तू पर्वत मेरा ओला राम। हम बल जाई लख लख लख बरिया जिन परंपर दा खोला राम। मिटे अंधारे तजे बेकारे ठाकर से मन माना, प्रभ जी पानी पई निकाणी सफल जन्म परवाना। पई अमोली पारा तोली मुक्त जुगत दर खोला, कहो नानक कहो निरपा होई सोप्रभ मेरा ओला। सोही महला पंजवा साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा, तिस बिन अवर न जाना राम। मात पिता भाई सुत बंदप जी प्राण मन भाणा राम। जियो पिंड सब तिसका दिया सर्व गुणा परपूरे, अंतर जामी सोप्रा मेरा सर्व रया परपूरे। ताकि सरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा, सदा सदा प्रभ को बलिहार।

भला संयोग मूर्त पल साचा अब चल निवर खाई जन नानक प्रभय दयाला सर्व कला बने आई। आनंदा वजह नितवाजे पार ब्रह्म मन वूठा राम गुरमुखे सच करनी सारी बिरसे परम पै झूठा राम। अनहद बाणी गुरमुख वखाणी जस सुन सुन मंतन हरिया सर्व सुखा तिस ही बन आए जो प्रभ अपना करया। घर मैं नवनिध भरे भंडारा राम नाम रंग लागा नानक जन प्रभ कदे न विसरै पूर्ण जाके पागा।

दीवान बुलाया हर फुरमान दरगह का आया रहाओ। करो अरदास गाव किश बाकी लेओ नबेर आज की राती किश भी खर्च तुम्हारा सारो सुबह निवास सराय गुजाराओ। साध संग जा को हर रंग लागा तन तन सो जन पुरख सुभागा ईत यूत जन सदा सुहेले जन पदार्थ जीत्या मोले जागत सोया जन्म गवाया माल तन जोरिया भया पराया कहो कबीर ते नर पूले खसम बिसार माटी संग रूले। सूही कबीर जियो ललत थाके नैन सरवण सुन थाके थाकी सुंदर काया जरा हाक दी सब मत थाकी एक ना थाक समाया। बावरे तै ज्ञान विचार ना पाया बिरथा जन्म गवाया रहाओ। तब लग प्राणी तसै सरेवो जब लग कट मैं सासा जे कट जाए ता पाओ ना जासी हर के चरण निवासा। जिसको शब्द बसावै अंतर चूकै तसै प्यासा हुक्मै बूझै चौपड़ खेलै मन जन टाले पासा। जो जन जान भजै अवगत कहो तिनका कछु ना नासा कहो कबीर तेजन कबो ना हारै टाल जो जानै पासा। सूही ललत कबीर जियो एक कोट पंच सिकदारा पंचे मांगै हाला जिमी नाही मैं किसी की बोई ऐसा देन दुखाला। हर के लोगा मोको नीत दसै पटवारी ऊपर पुजा कर मैं गुर पै पुकारिया तिन्हो लिया उबारी रहाओ। नौ डाडी दस मुंसफ धावै रैयत बसन ना देही डोरी पूरी मापै नाही बो बिस्टा ला लेही। बहत्तर घर एक पुरख समाया उन दिया नाम लिखाई धर्म राय का दफ्तर।

कहो कबीर मैं सो गुर पाया, जाका नाओ बबे को। राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सहकी सार सुहागन जान है, ताजा मान सुखरलिया मन है, तन मन दे न अंतर रख है, अवरा देखना सुने अपख है, सो कत जा

एको ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद। राग बिलावल महला।

जी जंत सब शरण तुम्हारी, सर्व चिंत तुद पासे, जो तुद भावै सोई चंगा। एक नानक की अरदासे, बिलावल महला पहला। आपे शब्द आपे निशान, आपे सुरता आपे जान। आपे कर कर वेखै तान, तू दाता नाम प्रमाण। ऐसा नाम

मुक्त बंद सब तुते होए ऐसा आख वखाणे गुरमुख होवै सो मुक्त कहिए मनमुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रह हर नाले तिनकी गहन गत कही ना जाई सच्चा आप सुवारे परम पुलाने से मनमुख कहिए नारोवार ना पारे जिसनो नजर करे सोई जन पाए गुर का शब्द समाले हर जन माया माहि निस्तारे नानक भाग होवे जिस मस्तक काले मार बिदारे बिलावल महला तीजा अतुल क्यों तो लिया जाए दूजा होए ता सोजी पाए तिसते दूजा नाही कोए तिसदी कीमत किकू होए गुर प्रसाद वसै मन आए ता को जाने दुबदा जाए रहाओ आप सराप कसवटी लाए आपे परखे आप चलाए आपे तोले।

से आए, सब सच दिखा ले ता सच समाए। आपे लिव तात है आपे, आप आप बुझाए आपे जापे, आपे सतगुरु शब्द है आपे, नानक आख सुनाए आपे। बिलावल महला तीजा, साहिब ते सेव को सेव साहिब ते, क्या को कह बहाना, ऐसा एक तेरा खेल बनया है, समय एक समाना। सतगुर परचय हर नाम समाना, जिस कर्म होवे सो सतगुर पाए, अंदन लागे सही ध्याना रहाओ। क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या को करे अवमाना, जब अपनी जोत खिंचे तू स्वामी, तब कोई करो दिखा वखियाना। आपे गुर चेला है आपे, आपे गुणी निधाना, जो आप चलाए तवे कोई चाले, जो हर पावे भगवाना। कहत नानक तू साचा साहेब, कौन जाने तेरे कामा, एक ना करमै दे वड़ियाई, एक परम पवै अभमाना। बिलावल महला तीजा, पूरा थाट बनाया पूरा, वेखो एक समाना, इस परपंच में साचे नाम की वड़ियाई, मत को तरो गुमाना। सतगुर की जिसनो मत आवै, सो सतगुर माए समाना, एह बाणी जो जियो जाने, तिस अंतर रवै हर नामा रहाओ। चहो जुगा का हुण नबेड़ा, नर मनुखा नो एक निधाना, जत संजम तीर्थ ओना जुगा का धर्म है, कल मैं कीर्त हरनामा। जुग जुग आपो अपना धर्म है, सोध देखो वेद पुराना, गुरमुख जिनी ध्याया हर हर जग ते पूरे परवाना। कहत नानक सच्चे स्यो प्रीत लाए, चूकै मन अभमाना। कहत सुनत सबे सुख पावै, मानत पाहे निधाना। बिलावल महला तीजा, गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए, तित घर बिलावल गुर शब्द सुहाए, मंगल नारी गावै आए, मिल प्रीतम सदा सुख पाए। हाँ तिन बलिहार है जिन हर मन वसाए, हर जन को मिलिया सुख पाई है, हर गुण गावे सह सुभाए रहाओ। सदा रंग राते तेरे चाए, हर जो आ वसे मन आए, आपे सोभा सद ही पाए, गुरमुख मेले मेल मिलाए। गुरमुख राते शब्द रंगाए, निकर वासा हर गुण गाए, रंग चलू लै हर रस पाए, एह रंग कदे न उतरै साज समाए। अंतर शब्द मिटिया ज्ञान अंधेरा, सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा, जो सच राते तन बौन ना फेरा, नानक नाम दरड़ाए पूरा गुर मेरा। बिलावल महला तीजा, पूरे गुर ते वड्याई पाई, अचिंत नाम वसिया मन आई। हाँ मैं माया शब्द जलाई, दर साचै गुरते सोभा पाई, जगदीश सेवो मैं अवर ना काजा, अन दिन अंध होवे मन मेरा, गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाओ। मन की प्रतीत मन ते पाई, पूरे गुरते शब्द बुझाई, जीवन मरण को संसर्वे

राग बिलावल महला चौथा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। उद्दम मत प्रभ अंतर जामी ज्यो प्रेरे त्यो करना, ज्यो नठुआ तंत वजाए तंती त्यो वाजै जंत जना। जप मन राम नाम रसना, मस्तक लिखत लिखे गुर पाया, हर हृदय हर बसना रहाओ। माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी, रख ले वो जन अपना, ज्यो प्रहलाद हर नाक्ष ग्रस्यो, हर राख्यो हर सरना। कवन कवन की गत मित कही है, हर किए पतत पवन्ना, ओ ढोवे ढोर हाथ चम चमरे, हर उदर्यो पर्यो सरना। प्रभ दीन दयाल भगत पवतारनो, हम पापी राख पपना। हर दासन दास दास हम करियो, जन नानक दास दसन्ना। बिलावल महला चौथा, हम मूर्ख मुग्ध अज्ञान मती, शरणागत पुरखिया जन्मा, कर कृपा रख ले वो मेरे ठाकरो, हम पाथरहीन अकर्मा। मेरे मन भज राम नामे रामा, गुरमत हर रस पाईए, होर त्यागो निफल कामा रहाओ। हर जन सेवक से हर तारे, हम निर्गुण राख उपमा, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे ठाकुर, हर जपिए वड्डे करमा। नामहीन त्रिग जीवते तिन वर दुख सहमा, ओए फिर जोन पवाई है, मंद भागी मूड़िया करमा। हर जन नाम आधार है, तुर पूर्व लिखे वडकर्मा, गुर सतगुर नाम दृढ़ाया, जन नानक सफल जनमा। बिलावल महला चौथा, हमरा चित लुभत मोहे बिखिया, बहु दुर्बत मैल परा, तुमरी सेवा करना सकै प्रभ, हम क्यों कर मुग्द तारा। मेरे मन जप नरहर नाम नरहरा, जानी ऊपर कृपा प्रभ तारी, मेरा सतगुर पार परा रहाओ। हमरे पिता ठाकर प्रभ स्वामी, हर देहो मती जस करा, तुमरा संग लगे से उधरे, ज्यो संग काष्ट लोह तरा। सागत नर होची मत मध्यम, जिन हर हर सेवना करा, ते नर भागहीन दोचारी, ओए जन्म ओए फिर मरा। जिन कहो तुम हर मेलो स्वामी, ते नाय संतोख गुरसरा, दुर्मत मैल गई हर भजया, जन नानक पार परा। बिलावल महला चौथा, आवो संत मिलो मेरे भाई, मिल हर हर कथा करो, हर हर नाम बोए थे कल जुग, खेवट गुर सब तरो। मेरे मन हर गुण हर उचरो, मस्तक लिखत लिखे गुण गाए, मिल संगत पार परो रहाओ। काया नगर में राम रसी उत्तम, त्यों पाई अब दे जन करो। सतगुर सेव सफल हर दर्शन, मिल अमृत हर रस पियो। हर हर नाम अमृत हर मीठा, हर संतो चाख दिखाओ। गुरमत हर रस मीठा लागा, तिन बिसरे सब बिखरसो। राम नाम रस राम रसायण, हर सेवो संत जनो, चार पदार्थ चारे पाए। गुरमत नानक हर भजो, बिलावल महला चौथा। खत्री ब्राह्मण सूद वैस, को जापै हर मंत्र जपैनी, गुर सतगुर पार ब्रह्म कर पूजो, नित सेवो दिन सो सब रैनी। हर जन देखो सतगुर नैनी, जो इच्छो सोई फल पावो, हर बोलो गुरमत बैनी रहाओ। अन क्यों पाव चितविय बहु तेरे, सा होवै जे बात होवै नी, अपना पला सब कोई बंछै, सो करे जे मेरा चितना चितैनी, मन की मत आगो हर जन एह बात कठैनी। आन दिन हर हर नाम ते आवो, गुर सतगुर की मत लैनी, मत समत तेरे वस स्वामी, हम जंत तू पुरख जनतैनी, जन नानके प्रभ करते स्वामी, ज्यो पावे तवे बुलैनी। बिलावल महला चौथा, अंध मूल त्यायो पुरखोत्म, अंध दिन अंध आनंदे, धर्मराय की कान चुकाई, सब चूके जमके छंदे। जप मानो हर हर नाम गोविंदे, वडभागी गुर सतगुर पाया, गुण गाए परमानंदे रहाओ। साकत मूड़ माया के बद्धक, विच माया फिर फिरंदे, तृष्णा जलत किरत के बांधे, ज्यो तेली बल्द पवंदे। गुरमुख सेव लगे से उधरे, वडभागी सेव करंदे।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद, बोलो भैया राम नाम पतत पावनो, हर संत भगतारनो हर पर पुरे रहा, जल थले राम नाम नित गाइये हर दुख बिसारनो रहाओ, हर किया है सफल जन्म हमारा, हर जपया हर दुख बिसार नहारा, गुर भेटिया है मुक्त दाता, हर की हमारी सफल जाता, मिल संगति गुण गावनो मन राम नाम कर आसा, पाओ दूजा बिनस बिनासा विच आसा होए निरासी, सो जन मिलिया हर पासी कोई राम नाम गुण गावनो, जन नानक तिस पग लावनो, राग बिलावल महला पंजवा, चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नदरी आवे तिस्यो मोह, क्यों मिलिया प्रभु नासी तोहे, कर कृपा मोय मार्ग पावो, सात संगत कै अंचल लावो, क्यों तरिय बिख्या संसार, सतगुरु बोहित

हम मैं पचे दीपक देख पतंगा, सगल सिंगार करे नहीं पावै, जा होए कृपाल ता गुरु मिलावै। हाँ फिरो उदासी मैं करतन दसाया, निर्मोल हीरा मिले ना उपाया। हर का मंदिर तिसमें लाल, गुर खोलिया पर्दा देख पही निहाल। जिन चाखिया तिसे आया साध, जो गुंगा मन में मिसमाद। आनंद रूप सब नजरी आया, जन नानक हर गुण अक्ष माया। बिलावल महला पंजवा, सर्व कल्याण किए गुरुदेव, सेव के अपनी लायो सेव। बिघन ना लागे जप अलाख्या पेव, तरत पुनीत पई गुण गाए, दुर्त गया हर नाम ते आए रहाओ। सबनी थाई रव्या आप, आद जुगाद जाकावड प्रताप। गुर प्रसाद ना होए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे। निर्विघ्न होए सब थाई बूठे, सब सुख पाए सदगुर तूठे। पार ब्रह्म प्रभै रखवाले, जिथे किथे दिसे नाले। नानक दास खसम प्रतपाले, बिलावल महला पंजवा। सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे, अगणत गुण ठाकर प्रभ तेरे। मोहे अनाथ तुमरी सरनाई, कर कृपा हर चरण ते आई। दया करो बसो मन आए, मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए रहाओ। प्रभ चित आवे ता कैसी भीड़, हर सेवक नाही जंपीड़। सर्व दुख हर सिमरत नसे, जाके संग सदा प्रभ बसै। प्रभ का नाम मंतन आधार, बिसरत नाम होवत तनसार। प्रभ चित आए पूर्ण सब काज, हर बिसरत सब का मोहताज। चरण कमल संग लागी प्रीत, बिसर गई सब दुर्मत रीत। मन तन अंतर हर हर मंत, नानक भगतन कै कर सदा आनंद। राग बिलावल महला।

कनेरे पशु प्रेत मुगत कवतारे पान पार उतारे नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहार है। बिलावल महला पंजवा बिखै वन फीका त्यागरी सखिए नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली सुखी ना होवत जियो। मान महात्मा सकत ही काई सादा दासी थियो नानक से दर सो बावंते जो प्रभ अपने कियो। हर चंगौरी चित प्रम सखिए मृग तृष्णा द्रुम छाया चंचल संगना चालती सखिए अंत तज जावत माया। रस भोगण अत रूप रस माते इन संग सुख नाम पाया धन धन हर सा जन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया। जाए बसो वट पागनी सखिए संता संग समाई है तह दुख ना भूख ना रोग व्यापै चरण कमल लिवलाई है। तह जन्म ना मरण ना आवन जाना निश्चर सरणी पाई है प्रेम बिछो न मोह व्यापै नानक हर एक त्याई है। दृष्ट तार मन बेदया प्यारे रतड़े सह सुभाए से सुहावी संग मिल प्रीतम अंध मंगल गुण गाए। सखी सहेली राम रंग राती मन तन इच पुजाए नानक अचरज अचरज से मिलिया कहना कछु ना जाए। राग बिलावल महला पंजवा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक रूप सगलो पासारा आपे बणजे आप ब्योहारा ऐसो ज्ञान बिरलोई पाए। जत जत जाइए तत दृष्टाए रहाओ अनक रंग निर्गुण एक रंगा आपे जल पा आप ही तिरंगा आप ही मंदिर आपै सेवा आप ही पुजारी आप ही देवा आपै जोग आप ही जुगता नानक के प्रभ सद ही मुक्ता। बिलावल महला पंजवा आपो पावन आप सुधरना आप करावन दोष ना लेना आपन बचनो आप

आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही घट घट आप लिपना, आपे अवगत आप संगरचना, कहो नानक प्रभ के सब जचना। बिलावल महला पंजवा, पूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय गुरचरण प्यारे। रहाओ काम क्रोध लोभ मोहे मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुख सुख करत जन्म फुरमुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया, अग्न सागर बूढ़ संसारा, नानक बहा पकड़ सतगुर निस्तारा। बिलावल महला पंजवा, तन मन तन अर्पो सब अपना, कमन समत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रभ मंगन, तो पेखत सोभा मेरा अंगन। रहाओ अनक जुगत कर बहुत बिचारो, साध संग इस मन उधारो, मत बुद्ध सुरत नाही चितराई, ता मिलिया जा ले मिलाई, नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सफल सो आया। बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ ना माया, साध संग सब दुख मिटाया, रव रहया प्रभ सब मैं आपे, हर जप रसना दुख ना व्यापे। रहाओ तिखा भूख बहुत तप्त व्यापिया, शीतल पय हर हर जस जापिया, कोट जतन संतोख ना पाया, मंत्र बताना हर गुण गाया, देहो भगत प्रभ अंतर जामी, नानक की बेनंती स्वामी। बिलावल महला पंजवा, गुरपुरा वडपागी पाई है, मिल साधु हर नाम ते आई है, पार ब्रह्म प्रभ तेरी सरना, किलवे काटे पज गुर के चरना। रहाओ अवर कर्म सब लोकाचार, मिल साधु संग होए उधार, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, जपिए नाम जित पारे उतारे, जन नानक प्रभ कृपा करिए, साधु तूर मिलै निस्तरिए। बिलावल महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय मैं चीना, सगल मनोरथ पूर्ण आसीना, संत जना का मुख उज्जल कीना, कर कृपा अपना नाम दीना। रहाओ अंध कूपते कर गै लीना, जय जय कार जगत प्रगटीना, नीचा ते ऊंच ऊन पूरीना, अमृत नाम महारस लीना, मन तन निर्मल पाप जल खीना, कहो नानक प्रभ भय परसीना। बिलावल महला।

होवत वटभागी सा संग्राम लिव लागी मत पत तहन सुख सहज आनंदा एक निमख ना विसराओ परमानंदा हर दर्शन की मन प्यास कनेरी पंत नानक शरण प्रभ तेरी बिलावल महला पंजवा मोहे निर्गुण सब गुणे बेहूना दया तारे अपना कर लीना मेरा मन तन हर गोपाल सुहाया कर कृपा प्रभ घर में आया रहाओ भगत वछल पै कट नहारे संसार सागर अबुतरे पारे पतत पावन प्रभ बिरद वेद लेखिया पार ब्रह्म सो नैनो पेखिया सासंग प्रगटे नारायण नानक दास सब दुख पलायण बिलावल महला पंजवा कवन जाना प्रभ तुमरी सेवा प्रभ अविनाशी लाख्या पेवा गुण बेअंत प्रभ गैर गंभीरे ऊच महल स्वामी प्रभ मेरे तू अपरंपर ठाकुर मेरे रहाओ एक सबे नाही को दूजा तुम ही जानो अपनी पूजा आपो कछु न होवत पाई जिस प्रभ देवै सो नाम पाई कहो नानक जो जन प्रभ पाया गुण निदान प्रभ तिन्ही पाया बिलावल महला पंजवा मात गरमै हाथ दे राखिया हर छोड़ बिख्या फल चाखिया भज गोबिंद सब छोड़ जंजाल जब जम आए संगारे मूड़े तब तन बिन सजाए बेहाल रहाओ तन मन तन अपना कर थापिया करन हार एक निमख ना जापिया महा मोह अंध कूपरिया पार ब्रह्म आया पटल बिसरिया वड्डे भाग प्रभ कीर्तन गाया संत संग नानक प्रभ पाया बिलावल महला पंजवा मात पिता सुत बंधु भाई नानक होवा पार ब्रह्म सहाई सुख सहज आनंद कणे गुरपूरा पूरी जाकी बाणी अनक गुणा जाके जाहे ना गणे रहाओ सगल सरंजाम करे प्रभ आपे पय मनोरथ सो प्रभ जापे अर्थ धर्म काम मोह का दाता पूरी पई सिमर सिमर विधाता सासंग नानक रंग माणिया कर आया पूरे गुरियाणिया बिलावल महला पंजवां।

नीच खन में थाप है, कीमत कहीं ना जाई है, ठाकर परताप है। पेखत लीला रंग रूप, चलने दिन आया, सुपने का सुपना पया, संग चलिया कमाया। कारण कारण समर्थ प्रभु, तेरी सरनाई, हर दिन सरैण नानक जप है, साध साध बल जाई। बिलावल महला पंजवा, जल ढोवो एह सीस कर, कर पग पख लावो, बार जाओ लख बेरिया, दर्श पेख जीवावो। करो मनोरथ मने माहे, अपने प्रभ ते पावो। देव सुहनी साध कै, बीजन टोलावो, रहाओ। अमृत गुण संत बोलते, सुन मने पीलावो। ओवा रस में सांत तृप्त होए, बिखे जलन बुझावो। जब भगत करे संत मंडली, तिन मिल हर गावो। करो नमस्कार भगत जन, तूर मुख लावो। उठत बैठत जपो नाम, एहो कर्म कमावो। नानक की प्रभ बेनती, हर शरण समावो। बिलावल महला पंजवा, एहो सागर सोई तरै, जो हर गुण गाए, साध संगत कै संग वसै, वड पागी पाए। सुन सुन जीवै दास तुम, बाणी जन आखी, प्रगट पई सब लो मैं, सेव की राखी रहाओ। अग्न सागर ते काढ़िया, प्रभ जलन बुझाई, अमृत नाम जल संचिया, गुर पै सहाई। जन्म मरण दुख काटिया, सुख का थान पाया, काटी सिलक प्रमोह की अपने प्रभ पाया। मत कोई जानो अवर कश, सब प्रभ कै हाथ, सर्व सुख नानक पाए, संग

कमल मन तन बसे प्रवयक में अपार, बस्त कमावत सब सुखी किशु न दिसै, संत प्रसाद भेटे प्रभु पूर्ण जगदीसै। जय जयकार सबै करै सच थान सुहाया, जप नानक नाम निधान सुख पूरा गुर पाया। बिलावल महला पंजवा हर हर हर हरा दिया, होइए आरोग रामचंद की लष्ट का जिन मारिया रोग। रहाओ गुरपुरा हर जापिया नित कीचे भोग, साध संगत कह वारण मिलया संयोग। जिस सिमरत सुख पाई है बिन सह बेहोग, नानक प्रभ शरणागति करण कारण योग। राग बिलावल महला पंजवा दो पदे कर पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आवरियो पाप सब त्यागया, दारू नाम लया ताप पाप सब मिटे रोग। शीतल मन पया गुरपुरा आराध्या, सगला दुख गया राखन हारे राखिया अपनी करमया। रहाओ बहा पकड़ प्रभ काढ़िया, की ना अपनया सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निरपया। बिलावल महला पंजवा कर धर मस्तक थापिया, नाम दीनो दान सफल सेवा पार ब्रह्म की ताकी नहीं हान। आपे ही प्रभ राखता भगतन की आन, जो जो चित वह साध जान सो लेता मान। रहाओ शरण परे चरणार बिंद, जन प्रभ के प्राण सह सुभाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बिलावल महला पंजवा चरण कमल का आसरा, दीनो प्रभ आप प्रभ शरणांगत जन परे ताका सत प्रताप। राखन हारिया पार प्रभ ताकी निर्मल सेव, राम राज रामदास पुर कीने गुरुदेव। रहाओ सदा सदा हर त्याई है किश बिघन ना लागे, नानक नाम सलाही है पै दुश्मन भागे। बिलावल महला पंजवा मन तन प्रभ आराधी है, मिल साध समागे उचरद गुण गोपाल जस दूर ते जम भागे। राम नाम जो जन जपै आंदन सज जागे, तंत मंत न जो है तित ताख न लागे। रहाओ काम क्रोध मद मान मोह बिन से अनरागे, आनंद मगन रस राम रंग नानक शरणागे। बिलावल महला पंजवा जी जूत वस प्रभु कह, जो कह सो करना पय प्रसन्न गोपाल राय पौ किश नहीं करना।

होई हो मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अतुल अतुल अतुल नह तुलिए भगत वच्छल कृपाए जो जो शरण पर्यो गुरु नानक अपह दान सुख पाए। बिलावल महला पंजवा। प्रभ जी तू मेरे प्राण आधार है नमस्कार डंडौत बंदना अनक बार जाओ बार रहाओ उठत बैठत सोवत जागत एहो मन तुझे चितार है सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सार है तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही तुम है मेरा परिवार है जो तुम करहो सोई पल हमर है पेख नानक सुख चरनार है। बिलावल महला पंजवा। सुनियत प्रभ तो सगले उदाहरण मोह मगन पतत संग प्राणी ऐसे मने विसारन रहाओ संच बिख्याले ग्रह जकीनी अमृत मनते डारन काम क्रोध लोभ रत निंदा सत संतोख बेदारन इनते काढ लेहो मेरे स्वामी हार परे तुम सारन नानक की बेनंती प्रप है साध संक रंक तारन। बिलावल महला पंजवा। संतन कै सुनियत प्रभ की बात कथा कीर्तन आनंद मंगल तोन पूर रही दिन से रात रहाओ कर कृपा अपने प्रभ कीने नाम अपने की कीनी दात आठ पहर गुण गावत प्रभ के काम क्रोध इस तन ते जात तृप्त अगाए पेख प्रभ दर्शन अमृत हर रस भोजन खात चरण सरन नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत संग मिलात। बिलावल महला पंजवा। राख लिए अपने जन आप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिरस गए सब शोक संताप रहाओ गुण गोविंद गावो सब हर जन राग रतन रसना आलाप कोट जन्म की तृष्णा निवारी राम रसायण आत्म त्राप चरण गहे शरण सुखदाते गुर कै बचन जपे हर जाप सागर तरे परम पै बिनसे कहो नानक ठाकर प्रताप। बिलावल महला पंजवा। ताप लाया गुर सिरजनहार सतगुर अपने कौ बल जाई जिन पैज रखी सारे संसार रहाओ कर मस्तक तार बालक रख लीनो प्रभ अमृत नाम महारस दीनो दास की लाज रखे मेहरवान गुरु नानक बोले दरगह परवान। राग बिलावल महला पंजवा। चौपदे दोपदे कर सतवा एको ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर शब्द उजारो दीपा बिनस्यो अंधकार तह मंदर रतन कोठड़ी खुली अनूपा रहाओ बिस्मन बिस्म पय जो पेखियो कहन न जाए वड़ियाई मगन पय ऊहा संग माते ओत पोत लपटाई आल जाल नहीं कछु जंजारा अहम बुद्ध नहीं पोरा ऊचन ऊंचा बीचना खींचा हों तेरा तू मोरा एक अंकार एक पासारा एक है प्रयापारा एक विस्तीर्ण एक संपूर्ण एक है प्राण आधारा निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा सूचो सूचा अंत न अंता सदा बेअंता कहो नानकी ऊचो ऊचा। बिलावल महला पंजवा। बिन हर काम ना आवत है जा स्यो राच माय तुम लागे ओ मोनी मोहावत है रहाओ कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ खिन मैं जावत है उर्ज रहे हो इंद्री रस प्रेरे हो बिखै ठगौरी खावत है तृण को मंदिर साज सवार हो पावक तलै जरावत है ऐसे गढ़ में ऐठ हठीलो फूल फूल क्या पावत है पंच दूत मूंड पर ठंडे केस गहे फेर आवत है दृष्ट ना आवे अंध अज्ञानी सोए रहे हो मदमावत है जाल पसार चोग बिस्थारी पंखी जोफा हावत है कहो नानक बंधन काटन कहो मैं सतगुर पुरख ते आवत है। बिलावल महला।

चितवाओ जैसे पांत बोली रहाओ। सह समायो ग्रह बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली। प्रेम खला गो जौ वट पागो सुहाग हमारो कतो न डोली। रूप ना धूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली। कहो नानक प्रे रवि सुहागन अतनी की मेरी बनी खटोली। बिलावल महला पंजवा गोबिंद गोबिंद गोबिंद मई। जब ते पेटे साथ दयारा तब ते दुर्मत दूर पही रहाओ। पूर्ण पूर्ण रहे हो संपूर्ण शीतल सां दयाल दई। काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तंते होए सगल खई। सत संतोख दया धर्म सोच संतन ते हो मंत लई। कहो नानक जिन मनो पछानिया तिन कहो सगली सोज पई। बिलावल महला पंजवा क्या हम जी जंत बेचारे। वर्ण न साकै एक रोमाई ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदिरा। बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई क्या कथिया किश कथन न जाई। जह जह देखा तह रया समाई रहाओ। जय महाभयान दुख जम सुनिया तह मेरे प्रभ तू है सहाई। शरण पर्यो हर चरण गए प्रभ गुरु नानक बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा आगम रूप अविनाशी करता पतत पवित एक निमख जपाई है। अचरज सुनियो प्राप्त भेट ले संत चरण चरण मन लाई है। कित विधिया कित संयम पाई है कौ सुरजन के जुगति त्याई है रहाओ। जो मानुख मानुख की सेवा ओ तिसकी लई लई फुन जाई है। नानक शरण शरण सुख सागर मोहे टेक तेरो एक नाई है। बिलावल महला पंजवा संत शरण संत टहल करी तंद बंद अर सगल जंजारो। अवर काज ते छूट परी रहाओ। सुख सहज अर करो आनंदा गुरते पायो नाम हरी। ऐसो हरस बरना सा कहो गुरपुर है मेरी उल्ट तरी। पेख्यो मोहन सब कै संगे ऊन ना काहू सगल भरी। पूर्ण पूर रहो कृपा निध कहो नानक मेरी पूरी परी। बिलावल महला पंजवा मन क्या कहता हौ क्या कहता। जान प्रवीण ठाकुर प्रभ मेरे तिसे आज्ञा क्या कहता रहाओ। अन बोले कहो तुही पछाने जो जियन मैं होता। अरे मन काय कहां लो डहके जो पेहती संग सुनता। ऐसो जान पहे मन आनंद आन न बियो करता। कहो नानक गुर पहे दयारा हर रंग न कभू लहता। बिलावल महला पंजवा निंदक ऐसे ही चर परी है। एह निशानी सुनो तुम पाई जो कालर पीत गिरिए रहाओ। जो देखे शिदर तो निंदक उमा है पलो देख दुख परी है। आठ पहर चितवे नहीं पहुंचे बुरा चितवत चितवत मरी है। निंदक प्रभु पुलाया काल नेर आया हर जन स्यो बाद उठरी है। नानकारा खाया प्रभ स्वामी क्या मानस बपरे करी है। बिलावल महला पंजवा ऐसे काहे पूल परे। करे करावे मुकर पावे पेखत सुनत सदा संघरे रहाओ। काज बिहाजन कंचन छाडन बैरी संग हेत साजन त्याग खरे। होवन कौरा अनहोवन मीठा बिखिया मैं लपटाए जरे। अंधकू मैं परे उपरानी परम गुबार मोहे बंद परे। कहो नानक प्रभ हो दयारा गुर पेट काडे भा फरे। बिलावल महला पंजवा मंतन रसना हर चीना पय आनंदा मिट आंदे से सर्व सुख मोको गुरदीना रहाओ। एनप ते सब पई सियानप प्रभ मेरा दाना बीना। हाथ दे रख अपने कहो काहू ना करते कशकीना। बल जावो दर्शन साधु कै जे प्रसाद हर नाम लीना। कहो नानक ठाकुर पारो सह कहू ना मान्यो मन शीना।
ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਦੀਨੋ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਗਈ ਰਹਾਓ।

तन तन कलातो सब देख अभमाना, बिन नामै किछ संग ना जाना रहाओ। कीचै रस भोग खुशियां मन केरी, तन लोका तन पसमै टेरी। खाकू खाक रलै सब फैल, बिन शब्द नहीं उतरै मैल। गीत राग कंताल से कूरे, त्रिगुण उपजे बिन से दूरे। दूजी दुरमत दर्द ना जाए, छूटै गुरमुख दारू गुण गाए। तोती उजल तिलक गल वाला, अंतर क्रोध पड़े नाटशाला। नाम विसार माया मद पिया, बिन गुर भगत नाही सुख थिया। सूकर स्वान गर्दप मंजारा, पशु मलेश नीचंडाला। गुर ते मोह फेरे तन जोन पवाईऐ, बंधन बांध्याई जाइऐ। गुर सेवा ते लह पदार्थ, हृदय नाम सदा कृतार्थ। साची दरगह पूछना होए, माने हुक्म सीजै दर सोए। सतगुर मिलै तां तिसको जाणै, रहर जाई हुक्म पछाणै। हुक्म पछाण सच्चै दरवास, काल बिकाल शब्द पै नास। रह अतीत जाणै सब तिसका, तन मन अर्पै है ओ जिसका। ना ओ आवै ना ओ जाए, नानक साचे साच समाए। बिलावल महला तीजा, अष्टपदी कर दसवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद जग कौआ, मुख चुंच ज्ञान। अंतर लोभ झूठ अवमान, बिन नामै पाज रह निदान। सतगुर सेव नाम वसै मन चीत, गुर भेटे हर नाम चितावै। बिन नामै होर झूठ प्रीत रहाओ। गुर कहे आसा कार कमावो, शब्द चीन सहज कर आवो। साचै नाए वडाई पावो, आप न बूझै लोक बुझावै। मन का अंधा अंध कमावै, दर घर महल ठौर कैसे पावै। हर जियो सेवियै अंतर जामी, घट घट अंतर जिसकी जोत समानी। तिस नाल क्या चलै पहनामी, साचा नाम साचा शब्द जानै। आपै आप मिलै चुकै अभमानै, गुरमुख नाम सदा सदा वखानै। सतगुर सेवै दूजी दुरमत जाई, औगुण काट पापा मत खाई। कंचन काया ज्योति जो समाई, सतगुर मिलै वड्डी वड्याई। दो काटे हृदय नाम वसाई, नाम रते सदा सुख पाई। गुरमत मानिया करनी सार, गुरमत मान्या मोख द्वार। नानक गुरमत मान्या परवार है साधार। बिलावल महला चौथा, अष्टपदियां घर ग्यारवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद आपै आप खाए हो मेटै, आन दिन हर रस गीत गवैया। गुरमुख परचै कंचन काया, निरपव ज्योति ज्योत मिलैया। मैं हर हर नाम आधार रमैया, खिन पल रह न सको बिन नावै। गुरमुख हर हर पाठ पढ़ैया रहाओ। एक गिराओ दस द्वार है जाके, अहनिस तस्कर पंच चोर लगैया। धर्म अर्थ सब हिर ले जावै, मनमुख अंदले खबर ना पैया। कंचन कोट बहुमानक भरिया, जागे ज्ञान तत् लिव लैया। तस्कर हेरू आए लुकाने, गुर कै शब्द पकड़ बंद पैया। हर हर नाम पोत बोए था, खेवट शब्द गुरपार लंगैया। जम जागाती नेण ना आवै, ना को तस्कर चोर लगैया। हर गुण गावै सदा दिन राती, मैं हर जस कहते अंत न लहिया। गुरमुख मनुआ इकत घर आवै, मिलो गोपाल निशान बजैया। नैनी देख दर्स मंत्र बतै, श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया। सुन सुन आत्म देव है पीने, रस रस राम गोपाल रवैया। त्रै गुण माया मोहे वे आपे, तुरिया गुण है गुरमुख लैया। एक दृष्ट सब सम कर जाणै, नदरी आवै सब ब्रह्म पसरैया। राम नाम है जोत सबाई,
ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਅਲਖ ਲਖਈਆ, ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਏ ਹੈ, ਭਗਤ ਪਾਏ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਈਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੀਤਲ ਜਲ ਧਿਆਵੋ, ਹਰ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਸੁਗੰਧ ਗੰਦਈਆ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਹਿਰਡ ਪਲਾਸ ਸੰਗ ਹਰ ਬੁਹੀਆ। ਜਪ ਜਗਨਨਾਥ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਈਆ, ਸਰਨ ਪਰੇ ਸੇ ਜਨ ਉਬਰੇ, ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉਧਾਰ ਸਮਈਆ। ਰਹਾਉ ਪਾਰ ਅਠਾਰੈ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਉਤਮ, ਚੰਦਨ ਨਿਕਟ ਸਭ ਚੰਦਨ ਹੋਈਆ। ਸਾਕਤ ਕੂੜੇ ਊਬ ਸੁੱਕ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਅਵਮਾਨ ਵਿਛੜ ਦੂਰ ਗਈਆ। ਹਰ ਗਤਮਿਤ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ, ਸਪਿਦ ਹਰ ਹਰ ਆਪ ਬਨਈਆ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਕੰਚਨ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮਿਟੈ ਨਾ ਮਿਟਈਆ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰਮਤ ਪਾਏ, ਸਾਗਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਖੁੱਲਈਆ। ਗੁਰਚਰਨੀ ਇੱਕ ਸਰਦਾ ਉਪਜੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਪਹੀਆ। ਪਰਮ ਬੈਰਾਗ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹਰ ਧਿਆਏ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿਤੇ ਪਾਵਨੀ ਕਹੀਆ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਖਿਣ ਖਿਣ ਪਲ ਕਹੀਏ, ਹਰ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਵੈ ਪਰੈ ਪਰਈਆ। ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰੈ, ਧਰਮ ਕਰੋ ਖਟ ਕਰਮ ਦਰੜਈਆ। ਮਨਮੁਖ ਪਾਖੰਡ ਭਰਮ ਵਿਗੂਤੇ, ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਨਾਵ ਪਾਰ ਬੁਡਈਆ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮੇ ਗਤ ਪਾਵੋ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤਰ ਨਾਮ ਦਰੜਈਆ। ਹਉਮੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚੈ ਪਰਮ ਪਦ ਪਈਆ। ਇਹੋ ਜਗ ਵਰਨ ਰੂਪ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਜਿਤ ਲਾ ਵੈਸੇ ਕਰਮ ਕਮਈਆ। ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਜਾਏ ਵਾਜੈ, ਜਿਤ ਭਾਵੈ ਤਿਤ ਰਾਹੇ ਚਲਈਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਅਗਮਿਆ ਗੋਚਰ ਧਿਆਇਆ, ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਪੁਰਖਈਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਵਸਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਰ ਨਾਮ ਸਮਈਆ। ਜਨ ਕੀ ਟੇਕ ਹਰ ਨਾਮ ਟਕਈਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਤਰ ਲਾਗਾ ਜਾਵਾ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਦਰ ਲਈਆ। ਰਹਾਉ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਕਰਮ ਕੀ ਧਰਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੱਥ ਮੱਥ ਤਤ ਕਢਈਆ। ਲਾਲ ਜੇ ਵੇਹਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਭਾਂਡੈ ਭਾਉ ਪਵੈ ਤਿਤਈਆ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦਾਸ ਹੋਏ ਰਹੀਐ, ਜੋ ਜਨ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਿਜ ਪਈਆ। ਮਨ ਬੁੱਧ ਅਰਪ ਧਰੋ ਗੁਰ ਆਗੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮੈਂ ਕਥ ਕਥਈਆ। ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਵਿਆਪੇ, ਇਹੋ ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲਤ ਦਿਖਈਆ। ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਪਾਇਆ, ਅਗਨ ਬੁਝੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਈਆ। ਇਹੋ ਮਨ ਨਾਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਤੁਨ ਤੂਰ ਵਜਈਆ। ਹਰ ਹਰ ਉਸਤ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਰਖ ਰਖ ਚਰਨ ਹਰ ਤਾਲ ਪੂਰਈਆ। ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰਤਾ ਮਨ ਗਾਵੈ, ਰਸ ਰਸਾਲ ਰਸ ਸ਼ਬਦ ਰਵਈਆ। ਨਿਜ ਕਰ ਧਾਰ ਚੋਐ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ, ਜਿਨ ਪੀਆ ਤਿਨਹੀ ਸੁਖ ਲਈਆ। ਮਨ ਅਠ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਜਿਉਂ ਬਾਲਕ ਬਾਲੂ ਕਰ ਉਸਰਈਆ। ਆਵੈ ਲਹਿਰ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਕੀ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਟੈ ਪਈਆ। ਹਰ ਸਰ ਸਾਗਰ ਹਰ ਹੈ ਆਪੇ, ਇਹੋ ਜਗ ਹੈ ਸਭ ਖੇਲ ਖਿਲਈਆ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜਲ ਜਲੈ ਸਮਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਪ ਰਮਈਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚੈ ਮਨ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਤਨ ਪਸਮ ਦਰੜਈਆ। ਅਮਰ ਪਿੰਡ ਭਏ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਉ ਮਿਟ ਗਈਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਧਸੂਦਨ ਮਾਧੋ। ਮੈਂ ਖਿਣ ਖਿਣ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਪਖਈਆ। ਰਹਾਉ ਤਜੈ ਗ੍ਰਸਤ ਭਇਆ ਬਨਵਾਸੀ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਮਨੁਆ ਟਿਕੈ ਨਾ ਟਕਈਆ। ਧਾਵਤ ਤਾਏ ਤਦੇ ਕਰ ਆਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਸਾਧੂ ਸਰਨ ਪਵਈਆ। ਤੀਆਂ ਪੂਤ ਛੋੜ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਆਸਾ ਆਸ ਮਨ ਬਹੁਤ ਕਰਈਆ। ਆਸਾ ਆਸ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਬੂਜੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਾਸ ਸੁਖ ਲਈਆ। ਉਪਜੀ ਤਰਕ ਦਿਗੰਬਰ ਹੋਵਾ, ਮਨ ਦੈ ਦਿਸ ਚਲ ਚਲ ਗਮਨ ਕਰਈਆ।
पर पवन करै बुझै नहीं तृष्णा, मिल संग साध दया कर लहिया। आसन सिद्ध सिखै बहु तेरे, मन मांगै रिद सिद्ध चेटक चेटकैया। तृप्त संतोख मन शांत न आवै, मिल साधु तृप्त हर नाम सिद्ध पैया। अंडज जेरज सेतज उत्पुज, सब वर्ण रूप जी जंतो पैया। साधु शरण भरै सो उबरै, खत्री ब्राह्मण सूद वै सो चंडाल चंडैया। नामा जय देव कबीर त्रिलोचन, औ जात रविदास चमयार चमैया। जो जो मिलै साधु जन संगत, धन धन्ना जट सहन मिलया हरदैया। संत जना की हर पैज रखाई, भगत वछल अंगीकार करैया। नानक शरण परे जग जीवन, हर हर कृपा तार रखैया। बिलावल महला चौथा, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी। सुन गुरबचन मन तीर लगैया। मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। राम गुर मोहन मोहे मन लैया, हौ आकल बिकल पई गुर देखे। हौ लोट पोट होए पैया रहाओ, हौ निरखत फिराओ सब दे दिसंतर। मैं प्रभ देखन को बहुत मन चैया, मन तन काट देओ गुरे आगे। जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखैया, कोई आन संदेशा दे प्रभ केरा। हृदय अंतर मंत्र मीठ लगैया, मस्त काट देओ चरणा तल। जो हर प्रभ मेले मेल मिलैया, चल चल सखी हम प्रभ प्रबोधै। गुण कामन कर हर प्रभ लैया। भगत वछल उवा को नाम कहियत है, शरण प्रभु तिस पाछै पैया। खिमा सिंगार करे प्रभ खुशियां, मन दीपक गुर ज्ञान बलैया। रस रस भोग करे प्रभ मेरा, हम तिस आगे जियो कट कट पैया। हर हर हार कंठ है बनया, मन मोती चूर बड गहन गहनैया। हर हर सरदा सेज विशाई, प्रभ छोड़ ना सके बहुत मन पैया। कहे प्रभ अवर अवर किश की जय, सब बाद सिंगार फोगट फोगटैया। कियो सिंगार मिलन कह ताई, प्रभ लियो सुहागन थूक मुख पैया। हम चेरी तू अगम गुसाई, क्या हम करै तेरे वस पैया। दया दीन करो रख ले वो, नानक हर गुर शरण समैया। बिलावल महला चौथा, मैं मंतन प्रेम अगम ठाकर का। खिन खिन सरदा मन बहुत उठैया, गुर देखे सरदा मन पूरी। जो चात्रक प्रयो प्रयो बूंद मुख पैया। मिल मिल सखी हर कथा सुनैया, सतगुर दया करे प्रभ मेले। मैं तिस आगे सिर कट कट पैया रहाओ, रोम रोम मंतन एक बेदन। मैं प्रभ देखे बिन नींद ना पैया। वैदिक नाटक देख भुलाने, मैं हृदय मंतन प्रेम पीर लगैया। हौ खिन पल रह ना सको बिन प्रीतम, ज्यो बिन अमलै अमली मर गैया। जिन को प्यास होए प्रभ केरी, तिने अवर ना पावै। बिन हर को दुइया, कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावै। हौ तिस विटो बल बल घुम गैया, अनेक जन्म के विछड़े जन मेले। जा सत सत सतगुर शरण पवैया। सेज एक एको प्रभ ठाकर, महल ना पावै मन मुख भरमैया। गुर गुर कर तो शरण जे आवै, प्रभ आए मिलै खिन ढील ना पैया। कर कर क्रिया चार वधाए, मन पाखंड कर्म कपट लोबैया। बेसवै का बेसवा कै, कर बेटा जन्मया। पिता ताहे क्या नाम सदैया, पूर्व जन्म भगत कर आए। गुर हर हर हर हर भगत जमैया, भगत भगत करते हर पाया। जा हर हर हर हर नाम समैया, प्रभ आन आन मेहंदी पीसाई। आपे कोल कोल अंग लैया, जिन को ठागर कृपा तारी। बहां पकर नानक कढ लैया।
ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਘਰ ਬਾਰਵਾਂ, ਇੱਕ ਓਵੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਪਮਾ ਜਾਤ ਨਾ ਕਹੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ, ਉਪਮਾ ਜਾਤ ਨਾ ਕਹੀ ਤਜ ਆਨ ਸਰਨ ਗਹੀ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰ, ਹਉ ਜਾਉ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਗੀ ਤਾਹੇ ਤਜ ਆਨ ਕਤੈ ਨਾ ਜਾਹੇ। ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਕਹਿਣ ਮਲ ਪਾਪ ਕਲ ਮਲ ਦਹਿਨ, ਚੜ ਨਾਵ ਸੰਤ ਉਧਾਰ ਪੈ ਤਰੇ ਸਾਗਰ ਪਾਰ, ਮਨ ਡੋਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤ ਏ ਸੰਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਤਜ ਗਏ ਪਾਪ ਬਿਕਾਰ ਹਰ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਪ੍ਰਭ ਪੇਖੀਐ ਬਿਸਮਾਦ, ਚਖ ਅਨੰਦ ਪੂਰਨ ਸਾਧ, ਨਹਿ ਡੋਲੀਐ ਇਤਿ ਊਤ, ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਹਰ ਹਰ ਚੀਤ। ਤੇ ਨਾਹੇ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ, ਨਿਤ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਤਾਸ, ਤੇ ਜਮਨਾ ਪੇਖੈ ਨੈਣ, ਸੁਨ ਮੋਹੇ ਅਨਹਤ ਬੈਨ। ਹਰ ਸਰਨ ਸੂਰ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ।

एकम एक अंकार निराला, अमरा जोनी जात ना जाला, आगमा गोचर रूप ना रेखिया, खोइत खोइत कट कट देखिया, जो देख देखावे तिसको बल जाई, गुर प्रसाद परम पद पाई, क्या जब जापो बिन जगदीश है, गुर के शब्द महल कर दीस है रहाओ। दूजे पाए लगे पछताने, जमदर बांधे आवन जाने, क्या ले आवे क्या ले जाहे, सिर जमकाल से चोटा खाहे, बिन गुर शब्द ना छूट सकोए, पाखंड कीने मुक्त ना होए, आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़, धरत आकाश किए बैसन को थाओ, रात दिनंत किए पौ पहाओ, जिन किए कर वेखण हारा, अवरना दूजा सिरजण हारा, तृतीया ब्रह्मा विष्णु महेशा, देवी देवो पाए वेसा, ज्योति जाति गणत ना आवै, जिन साजी सो कीमत पावै, कीमत पाए रहा भरपूर, किस नेड़े किस आखां दूर, चौथे उपाय चारे बेदा, खानी चारे बाणी भेदा, अष्ट दशा खड़की ने उपाय, सो बुझे जसिया बुझाए, तीन समावे चौथे वासा, प्रणवत नानक हम ताके दासा, पंचमी पंच भूत बेताला, आपा गोचर पुरख निराला, एक ब्रह्म भूखे मोह प्यासे, एक रस चाख शब्द तृप्तासे, एक रंग राते एक मर तूर, एक दर कर साचे देख दूर, झूठे को नाही पत नाओ, कबो न सूचा काला काओ, पिंजर पंखी बंदिया कोए, शेरी परमै मुक्त ना होए, तव छूटे जा खसम छड़ाए, गुरमत मेले भगत रड़ाए, खस्ती खट दर्शन प्रभ साजे, अनहद शब्द निराला वाजे, जे प्रभ पावै ता महल बुलावै, शब्दे भेदे तव पद पावै, कर कर वेस खपै जल जावै, साचे साचे साज समावै, सप्तमी सत संतोख शरीर, सात समुंद भरे निर्मल नीर, मज्जन सील सचरदै विचार, गुर कै शब्द पावै सब पार, मन साचा मुख साचो पाए, सचनी साने ठाक न पाए, अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साधै, सच नेह केवल कर्म आराधै, पौन पानी अग्नि बिसराओ, तही निरंजन साचो नाओ, तिसमें मनुआ रह लिवलाए, प्रणवत नानक काल ना खाए, नाओ नौमी नवे नाथ नव खंडा, घट घट नाथ महाबलवंडा, आई पूता एहो जग सारा, प्रभ आदेश याद रखवारा, आज जुगादी है पी होग, ओह परंपर करण है जोग, दसवीं नामदान इशनान, अंदन बजन सच्चा गुण ज्ञान, सच मैल न लागे भ्रम पौ पागे, बिलम न टूट सका चैता गै, ज्यो तागा जग एवै जानो, अस्त्र चा अस्त्र जी साज रंग माणो, एकादशी करदै वसावै, हिंसा ममता मोह चुकावै, फल पावै ब्रत आत्म चीने, पाखंड राज तत् नहीं बीने, निर्मल निराहार नेह केवल, सूचे साचे ना लागे मल, जै देखो तहे को एका, होर जियो पाए वेको वेका, फलो हार किए फल जाए, रस कस खाए साध गवाए, कूड़े लालच लपटे लपटाए, छूटे गुरमुख साच कमाए, द्वादश मुंद्रा मन अवदूता, अहनस जागे कवे ना सूता, जागत जाग रह लिवलाए, गुर परचय तस खाल ना खाए, अतीत पहे मारे बैराई, प्रणवत नानक तै लिवलाई, द्वादशी दया दान कर जाने, बाहर जातो पीतर आने, बरती बरत रह नेकाम, अजपा जाप जपै मुख नाम,
तीन भवन मैं एको जाना सब सुत संयम साच पछाणा तेर सतर वर समुंद किनार है अमृत मूल शिखर लिवतार है डर डर मर ना बूढ़े कोए निडर बूढ़ मरे पत खोए डर मैं घर घर मैं डर जाना तख्त निवास सच मन पाण चौदस चौथे थावे लै पावे राजस तामस सत्काल समावे ससियर कै कर सूर समावे जो जूत की कीमत पावे चौदस पवन पताल समाए खंड ब्रह्मंड रहा लिवलाए अमावस्या चंद गुप्त गहनार बुझो ज्ञानी शब्द विचार ससियर गगन जोत त्यो लोई कर कर वेखै करता सोई गुरते दिसै सो तिस ही माहे मनमुख पूले आवे जाए घर दर थाप थिरथान सुहावे आप पछाणे जां सतगुर पावे जह आसा तह बिनस बिनासा फूटे खप्पर दुबदा मनसा ममता जाल ते रह उदासा प्रणवत नानक हमता के दासा बिलावल महला तीजा वार सत कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद आदित वार आद पुरख है सोई आपे वरत वरना कोई ओत पोत जग रहा परोई आपे करता करे सो होई नाम रते सदा सुख होई गुरमुख विरला बूझे कोई हृदय जपनी जपो गुणतासा हर अगम्या गोचर परंपर स्वामी जन पग लग त्यावो होए दासन दासा रहाओ सोमवार सच रहा समाए तिसकी कीमत कही ना जाए आख आख रहे सब लिवलाए जिस देवै तिस पल्लै पाए अगमा गोचर लखिया ना जाए गुर कै सबधार रहा समाए मंगल माया मोह उपाया आपे सिर सिर तंदे लाया आप बुझाए सोई बूझे गुर कै शब्द दर कर सूझे प्रेम भगत करे लिवलाए हम मैं ममता शब्द जलाए बुधवार आपे बुध सार गुरम करनी शब्द विचार नाम रते मन निर्मल होए हर गुण गावे हम मैं मल खोए दर सच्चे सद सोभा पाए नाम रते गुर शब्द सुहाए लाहा नाम पाए गुरुद्वार आपे देवै देवनहार जो देवै तिसको बल जाइए गुर प्रसादी आप गवाइए।

ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिया एक एक वखाणिया आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिया। आप करता आप पहुता आप कारण किया बिनवंत नानक से ही जाने जिन्नी हर रस पिया। बिलावल महला पंजवा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सखी आओ सखी वस आओ सखी असी फिरका मंगल गावै। तजमान सखी माते अपने प्रीतम पावै। तजमान मोह विकार दूजा सेव एक निरंजन हो। लग चरण सरण दयाल प्रीतम सगल दुर्त बिखंडनो। होए दास दासी ताजो दासी बहुड बिदी ना तावा। नानक पयम पै करो कृपा ताम मंगल गावा। अमृत प्रे का नाम मैं अंधले टोहनी ओह जो है बहु प्रकार सुंदर मोहनी। मोहनी महाबचित्र चंचल अनक भाव दिखावे। होए टीठ मीठी मन लागे नाम लैण ना आवे। ग्रेब बने तीरे बर्त पूजा बाट काटे जोहनी। नानक पयम पै दया तारो मैं नाम अंदरे टोहनी। मोह नाथ प्रे नाथ जो जानो त्यो रखो। चतराई मोह नाए रिझावो कै मुखो। नह चतर सुगर सुजान बेती मोह निर्गुण गुण नहीं।

तही जैसे पुरवन पात मिथ्या कर माया तजी सुख सहज विचार। कह कबीर सेवा करो मन मंज मुरार, बिलावल जन मरण का भ्रम गया गोविंद लिवलागी, जीवत सुन समानिया गुरसाखी जागी रहाओ। काशी ते तुनी उपजै तुन काशी जाई, काशी फूटी पंडता तुन कहां समाई। त्रिगुटी संद मैं पेखिया कट हूं कट जागी, ऐसी बुद्ध समाचरी कट माहे त्यागी। आप ते जानिया तेज तेज समाना, कहो कबीर अब जानिया गोविंद मनमाना। बिलावल चरण कमल जहां कर दे बस सो जन क्यों डोले देव, मानो सब सुख नव निद ताकै, सहज सहज जस बोले देव रहाओ। तब एह मत जो सब मैं पेखै कुटल गांठ।

कहे कबीर में ना मेरा मन मानिया राम प्रीत कियो लै देव। बिलावल बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सफल जन्म मोको गुर कीना दुख बिसार सुख अंतर लीना। ज्ञान अंजन मोको गुर दीना राम नाम बिन जीवन मन ही ना रहाओ। नाम दे सिवरन कर जाना जग जीवन से जियो समाना। बिलावल बाणी रविदास भगत की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दार्द देख सबको हसै ऐसी दशा हमारी। अष्ट दशा सिद्ध करतल सब कृपा तुम्हारी। तू जानत मैं किश नहीं।

ज्यों मैंगल इंद्री रस प्रेरियो तू लाग परयो कुटुंबा एले ज्यों पंखी एकत्र होए फिर बिशरै तिर संगत हर हर त्याएले जैसे मीन रसन सा

ओट, नाम जपत मिटै पाप कोट, रास दी हरे को नाम, मन का इष्ट गुर संग ध्यान रहाओ।

तेरी शरण प्रभ दीन दयाल, पार ब्रह्म जब सदा निहाल रहाओ। प्रभ दयाल दूसर कोई नाही, घट घट अंतर सर्व समाही। अपने दास का हलत पलत सवार है, पतत पावन प्रभ बिर तुमार है। आओ खत कोट सिमर गोविंद, तंत मंत पजी है भगवंत। रोग सोग मिटे प्रभ त्याए, मन बांशत पूर्ण फल पाए। करण कारण समरथ दयार, सर्व निदान महा विचार। नानक बख्श दिए प्रभ आप, सदा सदा एको हर जाप। गोंड महला पंजवा, हर हर नाम जपो मेरे मीत। निर्मल होए तुम्हारा चीत, मन तन की सब मिटे बलाए। दुखा देरा सगला जाए, हर गुण गावत तरिए संसार। वडभागी पाइए पुरख्या पार रहाओ। जो जन करे कीर्तन गोपाल, तिसको पोहे ना सके जमकाल। जग में आया सो प्रमाण, गुरमुख अपना खसम पछाण। हर गुण गावै संत प्रसाद, काम क्रोध मिटै उन्माद। सदा हजूर जान भगवंत, पूरे गुर का पूर्ण मंत। हर तन खाट किए पंडार, मिल सतगुर।

पर अपने कर्म की गत मैं क्या जानो बाबा रे रहाओ। हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे कास का पूला। कहो कबीर तभी नर जागे, जमका डंड मूड में लागे। गोंड आकाश गगन पाताल गगन है, चौ दिस गगन रहाए ले। आनंद मूल सदा पुरखोत्म, कट बिनसै गगन न जाए ले। मोहे बैराग पयो एहो जियो आए, कहां गयो रहाओ। पंच तत् मिल काया कीनी, तत् कहां ते कीन रे। कर्म बद तुम जियो कहता हो, कर मैं किन जियो दीन रे। हर मैं तन है, तन मैं हर है, सर्ब निरंतर सोए रे। कह कबीर राम नाम ना छोड़ो, सहजे होए सो होए रे। राग गोंड बाणी कबीर जियो की, कर दूजा एको अंकार। सतगुर प्रसाद पूजा बांध पिला कर डारियो, हस्ती क्रोप मूल में मारियो। हस्त पाक कैची।

देख। इस मरते कौ जे कौ रोवे, जो रोवे सोई पत खोवे। गुर प्रसाद मैं डगरो पाया, जीवन मरण दो मिटवाया। कहो कबीर एहो राम की अंश, जस कागत पर मिटे ना मंस गोंड। टूटे तागे निखुटी पान, द्वार ऊपर चिलकावे कान। कूच बिचारे फूए फाल, या मुंडिया सर चढ़ बोकाल। एहो मुंडिया सगलो दर्ब खोई, आवत जात नागसर होई रहाओ। तुरी नार की छोड़ी बाता, राम नाम वाका मन राता। लड़की लड़कन खैबो नाहे, मुंडिया अंदन तापे जाहे। एक दोए मंदर एक दोए बाट, हमको साक्षर उनको खाट। मूंड पलोस कमर बद पोथी, हमको चाबन उनको रोटी। मुंडिया मुंडिया हुए एक, ए मुंडिया बुढ़द की टेक। सुन अंदली लोई बेपीर, इन मुंडिया न पज सरन कबीर गोंड। खसम मरे तो नार ना रोवे, उस रखवारा और होवे। रखवारे का होए विनाश, आगे नरक इहां भोग बिलास। एक सुहागन जगत प्यारी, सगले जी जंत की नारी रहाओ। सोहागन गल सो है हार, संत कौ बेख बिकसै संसार। कर सिंगार बह पखियारी, संत की ठिठकी फिर बिचारी। संत भाग हो पाछै पर, गुर प्रसादी मारो डरै। सागत की हो पिंड परायण, हम कौ दृष्ट पर त्रखडायण। हम तिसका बहु जान्या पेओ, जब हुए कृपाल मिले गुरुदेओ। कहो कबीर अब बाहर परी, संसार है कै अंचल लरी। गोंड गृह सोभा जा कैरे नाहे, आवत पैया खुदे जाहे। वाकै अंतर नहीं संतोख, बिन सोहागन लागै दोख। तन सोहागन महापवीत, तपित पीसर डोलै चीत रहाओ। सोहागन कृपन की पूती, सेवक ताज जगत स्यों सूती। साधु कै ठांडी दरबार, शरण तेरी मोको निस्तार। सोहागन है अत सुंदरी, पग नेवर शनक शन हरी। जव लग प्राण तऊ लग संगे, नाहे ता चली बेग उठ नंगे। सोहागन पवन त्रै लिया, दस अठ पुराण तीर्थ रस किया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बेदे, बड़े भूपत राजे है शेदे। सोहागन उर्वार ना पार, पांच नारद कै संग बेदवार। पांच नारद के मिटवे फूटे, कहो कबीर गुर कृपा छूटे गोंड। जैसे मंदिर में बलहर ना ठहरै, नाम बिना कैसे पार उतरै। कुंभ बिना जल ना टीकावै, साधु बिन ऐसे अवगत जावै। रहा जारो तिसै जो राम ना चेतै, तन मन रमत रह मैं खेतै रहाओ। जैसे हलहर बिना जिमी नहीं बोईऐ, सूत बिना कैसे मणि परोईऐ। कुंडी बिन क्या गंठ चढ़ाई है, साधु बिन तैसे अवगत जाई है। जैसे मात पिता बिन बाल ना होई, बिंब बिना कैसे कपरे धोई। कोर बिना कैसे असवार, साधु बिन नाहीं दरबार। जैसे बाजे बिन नहीं लीजे फेरी, खसम दुहागन ताज ओहेरी। कह कबीर एक कह कर करना, गुरमुख होए बहुर नहीं मरना। गोंड कूटन सोए जो मन को कूटे, मन कूटे तो जमते छूटे। कुट कुट मन कसवट्टी लावे, सो कूटन मुक्त बहु पावे। कूटन किसे कहो संसार, सगल बोलन के माहे विचार रहाओ। नाचन सोए जो मन स्यो नाचै, झूठ ना पतिया पर चै साचै। इस मन आगे पूरे ताल, इस नाचन के मन रखवाल। बजारी सो जो बजारै सोदै, पांच पलीतै कौ प्रबोधै।
नव नायक की पंक्त पिशन शोभा जारी हम गुरमाने तस्कर सोए जे तात ना करे इंद्री के जतन नाम उचर कहो कबीर हम ऐसे लखनो धन गुरदेव अतरूप चखन गोंड धन गोपाल धन गुरदेव धन अनाद भूखे कवल टह केव धन वे संत जिन ऐसी जानी तिनको मिलबो सारंग पानी आद पुरख ते होए अनाद जपिए नाम अन्न कै साद रहाओ जपिए नाम जपिए अन्न अंबे का संग निका वन अन्न बाहर जो नर होवे तीन पवन में अपनी खोवे छोड़े अन्न करे पाखंड ना सोहागण ना ओहे रंड

अश्वमेध जग ने तुला पुरख दाने प्राग इशनाने तौ ना पुजे हर कीर्त नामा अपने रामै भज रे मन आलसिया रहाओ। गया पिंड भरता बनारस अस बसता मुख बेद चतर पड़ता सगल धर्म अशता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहित रहता सेवा सख्त संबादं मन छोड़ छोड़ सगल भेदं सिमर सिमर गोबिंदं भज नामा तरस पव सिंदं गोंड नाद प्रमे जैसे मिर गाए प्राण तजे वाको ध्यान न जाए ऐसे रामा ऐसे हेराओ राम छोड़ चित अंत ना फेराओ रहाओ। ज्यो मीना हेरै पशुआरा सोना गढ़ते हरै सोनारा ज्यों बिखई हेरै परनारी कौडा डार तेहरै जुआरी जै जै देखो तै तै रामा हर के चरण नित त्यावै नामा गोंड।

नर ते सुर होए जात निमुख मैं सतगुर बुद्ध सिखलाई नर ते उपज सुरग कौ जीते ओ सो अवखद मैं पाई जहां जहां तू नारद टेकै नैकट कावो मोहे तेरे नाम अवलंब बहुत जने उदरे नामे की निजमत एहे गोंड मोहे लागती ताला बेली बछरे बिन गाय अकेली पानिया बिन मीन तलफै ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा रहाओ जैसे गाय का बाछा शूठला तन थन चोखता माखन कूटला नाम देव नारायण पाया गुर भेड़ता लख लखाया जैसे बिखै हेत पर नारी ऐसे नामे प्रीत मुरारी जैसे ताप ते निर्मल कामा तैसे राम नामा बिन बापरो नामा राग गोंड बाणी नाम देव जियो की कर दूजा एको अंकार सदगुर प्रसाद हर हर करत मिटे सब परमा हर को नाम लै उत्तम धर्मा हर हर करत जात कुल हरी सो हर अंधले की लाकरी हर ए नमस्ते हर ए नमः हर हर करत नहीं दुख जमै रहाओ हर हर नाक्ष

सिमरन द्रौपद सुत उदरी गौतम सती सला निस्तरी केसी कंस मथन जिनकिया जी दान काली कौदिया प्रणवै नामा ऐसो हरी जास जबद पै अपदा तरी गोंड पैरो पूत सीतला तावै खर बाहन ओ शारो डावै हाँ तो

बर्द चढ़े डौरू टमकावे, महामाई की पूजा करै, नरसे नर होए अवतरै। तू कहत ही अद भवानी, मूत की बरिया कहां छपानी। गुरमत राम नाम गहो मीता, प्रणवै नामा यो कह गीता।

मारिया था। पांडे तुमरा रामचंद सो पी आवत देखा था। रावण सेती सरबर होई कर की जोए गवाई थी। हिंदू अन्ना तुरकू काना दोहां ते ज्ञानी सियाणा। हिंदू पूजे देहोरा मुसलमान मसीत नामे सोई सेव्या जय देहोरा नाम सीत। रागोंड बाणी रविदास जियो की कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मुकंद मुकंद जपो संसार बिन मुकंद तन होए अवहार। सोई मुकंद मुक्त का दाता सोई मुकंद हमरा पित माता।

जे हो अनक प्रसाद करावै भूमदान शोभा मंडप पावै अपना बिगार बिराना सांडै करै निंद बोजो नी हांडै निंदा कहाँ करो संसारा निंदक का प्रगट पहारा निंदक सोध साध बिचारिया कहो रविदास पापी नरक सिधारिया जोड़ राम कली।

अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद। कोई पढ़ता सहसा करता कोई कड़े पढ़े पुराना, कोई नाम जपे जप माली लागे तसै त्याना। अब ही कभी किशु ना जाना तेरा एको नाम पछाना। ना जाना हरे मेरी कवन गते, हम मूर्ख ज्ञान शरण प्रभ तेरी कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ। कब हूं जियाड़ा ऊब चढ़ता है कब हूं जाए प्याले, लोभी जियाड़ा थिर ना रहता है चारे कुंडा पाले। मरण लिखाए मंडल में आए जीवन सा जय माई, एक चले हम देखे स्वामी पाहे बलंती आई। ना किसी का मीत ना किसी का भाई, ना किसे बाप ना माई, प्रणवत नानक जे तू देवे अंते हुए सखाई। राम कली महला पहला, सर्ब जोत तेरी पसर रही जै जै देखा तै नर हरी। जीवन तलब निवार स्वामी अंध कुप माया मन गाड़िया, क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ। जह पीतर कट पीतर बसया बाहर काहे नाही, तिन की सार करे नित साहेब सदा चिंत मन माही। आपे नेड़ा आपे दूर आपे सरबरया भरपूर, सतगुर मिले अंधेरा जाए जै देखा तै रया सुमाए। अंतर से सा बाहर माया नैनी लग सबाणी, प्रणवत नानक दासन दासा परता पैगा प्राणी। राम कली महला पहला, जित दर वसे कमन दर कहिए, दरा पीतर दर कमन लह। जिस दर कारण फिरा उदासी सो दर कोई आए कह। किन बिद सागर तरिए जीव त्याने मरिए रहाओ। दुख दरवाजा रोह रखवाला आसा अंदेसा दोए पट जड़े। माया जल खाई पानी कर बांधया, सत कै आसन पुरख रहै।

गोरख सो जन गोए उठाली करते बार ना लागे रहाओ। पानी प्राण पवन बंद राखे चंद सूरज मुख दिए मरण जीवन कौ धरती दीनी एते गुण विसरे। सिद्ध साधक यार योगी जंगम पीर पुरुष बहु तेरे जेतन मिला ता कीर्त आखा ता मन सेव करे। कागद लून रह कृत संगे पानी कमल रह ऐसे भगत मिले जन नानक तिन जम क्या करे। राम कली महला पहला सुन माशिंद्रा नानक बोले वसगत पंच करे नहीं डोले। ऐसी जुगत जो कौ पाले आप तरह सगले कुल तारे। सो अवधूत ऐसी मत पावे अहनिस सुन समाज समावे रहाओ। भिखिया पाए भगत पै चले होवे सो तृप्त संतोख अमुले। ध्यान रूप होए आसन पावे सच नाम ताड़ी चित लावे। नानक बोले अमृत बाणी सुन माशिंद्रा औदू निशानी। आसा महे निरास वलाए निहचो नानक करते पाए। प्रणवत नानक अगमुख सुनाए गुर चेले की संद मिलाए। दीखिया दारू भोजन खाए छे दर्शन की सोजी पाए। राम कली महला पहला हम डोलत बेड़ी पाप भरी है पवन लगे मत जाई। सनमुख सिद्ध भेटन को आए निहचो दे वड़ियाई। गुर तार तारन हारिया देह भगत पूर्ण अविनाशी हाँ तुझको बलिहारिया रहाओ। सिद्ध साधक योगी अर जंगम एक सिद्ध जिनी त्याया। परसत पैर सिजते स्वामी अखर जिनको आया। जप तप संजम कर्म ना जाना नाम जपी प्रभ तेरा। गुर परमेसर नानक पेटे ओ साचे शब्द नवेरा। राम कली महला पहला सुरती सुरत्र लाइए एत तन कर तुल्हा लंगे जेत। अंतर पाहित सह तू रख एनस दीवा बल अथक। ऐसा दीवा नीर तराए जित दीवे सब सो जी पाए रहाओ।

रामकली महला पहला, सागर में बूंद, बूंद में सागर, कवन बुझे बिद जाने, उत्पो चलते आप कर चीने, आपे तत् पछाने, ऐसा ज्ञान विचारे कोई, तिस्ते मुक्त परमगत होई रहाओ। दिन में रहन रहन में दिनियर, उसन सीत बिद सोई, ताकि गत मित यवर ना जाने, गुरबिन समझ ना होई। पुरख में नार, नार में पुरखा, बुझो ब्रह्म ज्ञानी, तुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। मन में जोत, जोत में मनुआ, पंच मिले गुर पाई, नानक तिन कै सत बलिहारी, जिन एक शब्द लिवलाई। राम कली महला।

मेरे एक खैन प्राण ना रह बिन प्रीतम बिन देखे मरे मेरी माया। तन तन वड भाग गुरसरनी आए हर गुरमिल दर्शन पाया। मैं अवर न कोई सूझे बूझे मन हर जप जपो जपाया। नामहीन फिर से नकटे तन कस कस नक वड़ाया। मोको जग जीवन जीवा लै स्वामी हृदयंतर नाम वसाया। नानक गुरु गुरु है पूरा मिल सतगुर नाम ते आया। आराम कली महला चौथा सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है। जित मिले हर उर तारे जी दान गुर पूरे दिया। हर अमृत नाम समारे राम गुर हर हर नाम कंठ तारे। गुरमुख कथा सुनी मन पाई तन तन वड भाग हमारे रहाओ। कोट कोट ते तीस ते आवे ता का अंत न पावे पारे। हृदय काम काम नी मांगे रिद मांगे हाथ पसारे। हर जस जप जप वड्डा वडेरा गुरमुख रखो उर तारे। जे वड़ भाग होवे ता जपिए हर पौजल पार उतारे। हर जन निकट निकट हर जन है हर राख है कंठ जन तारे। नानक पिता माता है हर प्रभ हम बारक हर प्रत पारे। राग राम कली महला पंजवा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कृपा करहो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना बिचारो कोई। माटी का क्या तोपे स्वामी मानस की गते ही। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई। जो इच्छा हो सोई फल पावो फिर दुख ना व्यापे कोई रहाओ। काचे पांडे साज निवाजे अंतर ज्योत समाई। जैसा लिखत लिखिया तुर करता है हम तैसी कृत कमाई। मन तन थाप किया सब अपना ए हो आवन जाना। जिन दिया सोचित ना आवे मोहे अंध लपटाना। जिन किया सोई प्रभ जाने हर काम है लिया पारा। भगत करी हर के गुण गावा नानक दास तुम्हारा। राम कली महला पंजवा पवो चरना तल ऊपर आवो। ऐसी सेव कमावो आपस ते ऊपर सब जानो तौ दरगह सुख पावो। संतो ऐसी कथो कहानी सुर पवित्र नरदेव पवित्रा। खिन बोलो गुरमुख बाणी रहाओ। परपंच छोड़ सहज कर बैसो झूठा कहो ना कोई। सतगुर मिलो नवे निध पावो इन बे तत बिलोई। परम चुकावो गुरमुख लिव लावो आत्म चीनो पाई। निकट कर जानो सदा प्रभ हाजर किस्यों कहो बुराई। सतगुर मिले।

पंच बचित्र करे संतोखा सात सुरा लै चल बाजा मान तान ताई ताना पाओ न बिंगा कल फेरी फेर ना होवे कभी एक शब्द बंद पाल नारदी नरहर जान हदूरे कुंगर खड़ग त्याग विसूरे सहजानंद दिखावे पावे यो नृतकारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकर पावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत की जावो टेक कहो नानक तिस कीर्तन एक।

कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई बंश है पिस्त, कोई सुरग हिंदू, कहो नानक जन हुक्म पछाता, प्रभ साहेब का तन भेद जाता। राम कली महला पंजवा, पवन मैं पवन समाया, ज्योति मैं ज्योत रल जाया। माटी माटी होई एक, रोवन हारे की कवन टेक।

जप नाथ दिन रह नाई तेरी खिंथा दो दिहाई रहाओ। गहरी विभूत लाए बैठा ताड़ी मेरी तेरी मुंद्रा तारी। मांगे टूका तृप्त ना आवै नाथ छोड़ जाचै लाज ना आवै। चल चित जोगी आसन तेरा सिंगी वाजै नित उदासेरा। गुर गोरख की तै बूझ ना पाई फिर जोगी आवै जाई। जिसनो होवा नाथ कृपाला रह रास हमारी गुर गोपाला। ना मैं खिंथा ना मैं बस्तर जन नानक जोगी होवा अस्थिर। इउं जपया नाथ दिन रहन आई हुण पाया गुर गोसाई रहाओ। दूजा राम कली महला पंजवा करन करावन सोई आना दिसै कोई। ठाकुर मेरा सुड़ सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना। ऐसो रे हर रस मीठा गुरमुख किने विरलै डीठा रहाओ। निर्मल जोत अमृत हर नाम पीवत अमर पय नेकाम। तन मन शीतल अगन निवारी आनंद रूप प्रगटे संसारी। क्या देवो जा सब किश तेरा सत बलिहार जाऊं लख बेरा। तन मन जियो पिंड दे साजिया गुर कृपा ते नीच निवाजिया। खोल किवारा महल बुलाया जैसा सा तैसा दिखलाया। कहो नानक सब पर्दा टूटा

राज रंग रूप सब कूर नाम बिना होए जासी तूर भरम भूले बाद अहंकारी संग नाही रे सगल पसारी सोग हरख मैं देह बरदानी सागत इवही करत बयानी हर का नाम अमृत कल माहे एहो निदाना साधु पाए नानक गुर गोविंद जिस तूठा घट घट रमैया तिन ही डीठा राम कली महला पंजवा पंच शब्द तह पूर्ण नाद अनहद बाजे अचरज बिस्माद तेल करै संत हर लोग पार ब्रह्म पूर्ण रजोग सुख सहज आनंद पवन साध संग बैस गुण गावै तै रोग सोग नहीं जन्म मरण रहाओ ऊहा सिमरै केवल नाम बिरले पावै ओ विश्राम भोजन पाओ कीर्तन आधार निश्चल आसन बेसुमार दिग ना डोलै कतहू ना तावै गुर प्रसाद को एहो

जा कै अंतर हर हर स्वाद कहन न जाई नानक बिस्माद राम कली महला पंजवा भेटत संग पार ब्रह्म चित आया संगत करत संतोख मन पाया संतै चरण माथा मेरो पौत अनक बार संतै डंडौत एहो मन।

हमारी निर्मल रास, संत हमारा राखिया पड़दा, संत प्रसाद मोए कबू ना करदा, संत संग दिया कृपाल, संत सहाई पय दयाल, सुरत मत बुद्ध प्रगास, गहर गंभीर अपार गुणतास, जी जंत

गोपाल गोविंद गुरमुख जपिए उतरै चिंद नानक कहो गुरदिया नाम संत संतन की टहल संत का काम राम कली महला पंजवा बीज मंत्र।

रहाओ जब उसको कोई देवे मान, तब आपस ऊपर रखे गुमान। जब उसको कोई मन पर हरे, तब यो सेवक सेवा करे। मुख बेरावे अंत ठगावे, एक ठौर ओ कई ना समावे। उन मोहे बहुते ब्रह्मंड, राम जनी की नी खंड खंड। जो मांगे सो भूखा रह, इस संग राचे सो कछु ना लह। ऐसे त्याग सत्संगत करे, वडभागी नानक हो तरे। राम कली महला पंजवा, आत्म राम सर्व मैं पेख। पूर्ण पूर रया प्रभ एक, रत्न मोल हृदय मैं जान। अपनी वस्तु आप पछान, पी अमृत संतन प्रसाद। वड़े भाग होवे तो पाईए, बिन जेवा क्या जाने स्वाद। रहाओ अठ दस वेद सुने कह डोरा, कोट प्रकाश ना दिसे अंधेरा। पशु प्रीत का संग रचे, जिसनी बुझावे सो कित बिद बुझे। जानन हार रहया प्रभ जान, ओत पोत भगतन संगान। बिगस बिगस अपना प्रभ गावे, नानक तिन जम नेण न आवे। राम कली महला पंजवा, दीनो नाम कियो पवित। हर तन रास निरास ए बित, काटी बंध हर सेवा लाए। हर हर भगत राम गुण गाए। बाजे अनहद बाजा, रसक रसक गुण गावे। हर जनो अपने गुरुदेव निवाजा। रहाओ

तेरी शरण पूरे गुरुदेव, तुझ में दूजा नाही कोए। तू समर्थ पूर्ण पार ब्रह्म, सो त्याय पूरा जिस कर्म। तरण तारण प्रभ तेरो नाओ, एका शरण गही मन मेरा। तुझ में दूजा नाही ठाओ रहाओ, जप जप जीवा तेरा नाओ। आगे दरगह पावो ठाओ, दुख अंधेरा मन ते जाए। दुर्मत बिनसै

अमृत नाम रसना नित जपै, कोट जन्म के काटे फाहे, पाया लाभ सच्चा तन लाहे। तोट न आवे अखुट भंडार, नानक भगत सोहै हर द्वार। राम कली महला पंजवा, रतन जिवे हर नाम, सत संतोख ज्ञान, सुख सहज दया का पोता, हर भगता हवाले होता। मेरे राम को भंडार, खात खर्च कष्ट उठ न आवे, अंत नहीं हर पारावार रहाओ। कीर्तन निर्मोलक हीरा, आनंद गुणी गहीरा, अनहद बाणी पूंजी, संतन हथ राखी कुंजी। सुन समाध गुफा तय आसन, केवल ब्रह्म पूर्ण तय बासन। भगत भगत संग प्रभ गोष्ठ करत, तय हरख ना सोग ना जन्म ना मरत। कर कृपा जिस आप देवाया, साध संग तिन हर तन पाया। दयाल पुरख नानक अरदास, हर मेरी वर्तन हर मेरी रास। रामकली महला पंजवा, मेहमा ना जाने बेद, ब्रह्मे नहीं जाने भेद, अवतार ना जाने अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। अपनी गाते आप जाने, सुन सुन अवर वखाने रहाओ। संकरा नहीं जाने भेव, खोज तहारे देव, देविया नहीं जाने मर्म। सभी ऊपर अलख पार ब्रह्म, अपने रंग करता केल, आप बिछोरे आपे मेल। एक परमे एक भक्ति लाए, अपना किया आप जनाए। संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेख है आखी। नहीं लेप तिस पुन्ना पाप, नानक का प्रभ आपे आप। रामकली महला पंजवा, किशु काज न कियो जान, सुरत मत नाही किश ज्ञान। जाप ताप सील नहीं धर्म, किशु ना जानो कैसा कर्म। ठाकुर प्रीतम प्रभ मेरे, तुझ बिन दूजा अवर ना कोई। भूले चूके प्रभ तेरे रहाओ, रिद ना बुद्ध ना सिद्ध प्रगास। बिखे ब्याद के गाव में बास, करण हार मेरे प्रभ एक। नाम तेरे की मन में टेक, सुन सुन जीवो मन एहो विश्राम। पाप खंडन प्रभ तेरो नाम, तू अगंत जी का दाता। जिसे जनाम है तिन तू जाता, जो उपायो तिस तेरी आस। सगला राधा है प्रभ गुणपास, नानक दास तेरे कुर्बान। बेअंत साहिब मेरा मेहरबान। रामकली महला पंजवा, रखन हर दयाल, कोट पव खंडे निमख ख्याल। सगल अराधय जंत, मिलिए प्रभ गुर मिलमंत। जियन को दाता मेरा प्रभ, पूर्ण परमेश्वर स्वामी। घट घट राता मेरा प्रभ रहाओ, ताकि गही मन ओट। बंधन ते होई छोट, हृदय जप परमानंद। मन माहे पय आनंद, तारण तरण हर शरण। जीवन रूप हर चरण, संतन के प्राण आधार। ऊचे ते ऊचे पार सुमत सार।

आए बूढ़त लोहो साध संग तरै नानक छा प्राप्त करै। रामकली महला पंजवा मन माहे जा भगवंत गुरपुरै हो दीनो मंत मिटे सगल पैतरास पूर्ण होई आस सफल सेवा गुरदेवा कीमत किश कहण ना जाई साचे साचा लाखा पेवा रहाओ। कर्ण कराम ने आप तिसको सदा मन जाप तिसकी सेवा करनी तो सच सहि सुख पावे मीत। साहेब मेरा अत भारा खिन मैं था प्यो था पनहारा तिस बिन अवर ना कोई जन का राखा सोई। कर कृपा अरदास सुनी जय अपने सेवक को दर्शन दी जय नानक जापी जब जाप सब ते ऊजा का प्रताप। राम कली महला पंजवा बिरथा प्रवासा लोक ठाकर प्रभ तेरी टेक अवर छूटी सब आस अचिंत ठाकर भेटे गुणतास। एको नाम त्याय मन मेरे कार्ज तेरा होवे पूरा हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ। तुम ही कारण करण चरण कमल हर शरण मन तन हर ओही ते आया आनंद हर रूप दिखाया। तिस ही की ओर सदीव जाके कीने है जीव सिमरत हर करत निदान राखण हार निदान। सर्व की रेण हो बीजै आ मिटाए मलीजै अंतन त्याई नाम।

चक्र पेलो हर चरण कमलो सरनाए मना राम नाम जब संग सहाई गुरमुख पावे साई तना रहाओ उन्ने काजन होवत पूरे काम क्रोध मसद ही चूरे करे बेकार जिया रे कह ताई गाफल संग न तसुआ जाई तरत तोह अनक शर जान कौडी कौडी कौ खाक सिर शान जिन दिया तसेरा चेतै मूल मिथ्या लोभना उतरै सूल पार ब्रह्म जब पहे दयाल इहमन होवा सादरवाल हस्त कमल लड़ लीनो लाए नानक साचै साज समाए राम कली महला पंजवा राजा राम की सरनाए निरपो पय गोविंद गुण गावतो सा संग दुख जाए रहाओ जा कै राम बसे मन माही सो जन दुत्तर पेखत नाही सगले का सवारे अपने हर हर नाम रसन नित जपने जिसके मस्तक हाथ गुर धरै सो दासा देसा काहे करै जन्म मरण की चूकी कान पूरे गुरु उपर कुर्बान गुर परमेसर भेट निहाल सो दर्शन पाए जिस होए दयाल पार ब्रह्म जिस कृपा करै साध संग सो पवजल तरै अमृत पीवाओ साध प्यारे मुखी उजर साचै दरबारे अंध करो तज सगल बेकार नानक हर जप उतरो पार राम कली महला पंजवा ईंदन ते बै संतर भागै माटी कौ जल दै दिस त्यागै ऊपर चरण तलै आकाश कटमै सिंध की ओ परगास ऐसा समर्थ हर जियो आप निमखना बिसरै जी भगतन कै आठ

सगले साज करत जगदीश है, ठगन हार अनठगदा ठग है, बिन वखर फिर उठ लग है। संत सभा मिल करो बखियान, सिमरत शास्त्र वेद पुराण, ब्रह्म विचार विचारे कोए, नानक ताकी परम गत होए। राम कली महला पंजवा, जो तिस पावै सो थिया, सदा सदा हर की शरण आई, प्रभिन नाही आन बिया। रहाओ पुत्र कलत्र लखमी दिसै, इनमें किछु ना संग लिया, बिखै ठगौरी खाए भुलाना, माया मंदिर त्याग गया। निंदा कर कर बहुत विगुता, गर्भ जोन में किरत पया, पुरब कमाने छोड़ै नाही, जम दूत करा स्यो महा पया। बोले झूठ कमावे अवरा, त्रिसना बुझे बहुत हया, असाध रोग उपजया संत दुखन, देह बिनासी महा खया। जिन्हें निवाजे तिन्ही साजे, आपे कीने संत जया, नानक दास कंठ लाए राखे, कर कृपा पार ब्रह्मया। राम कली महला पंजवा, ऐसा पूरा गुरदेव सहाई, जाका सिमरन बिरथा ना जाई। रहाओ दर्शन पेख धोए निहाल, जाकी तूर काटे जमजाल, चरण कमल बसे मेरे मन के, कार्ज सवारे सगले तन के, जाके मस्तक रखे हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, पतो धारण कृपा निधान, सदा सदा जाइए कुर्बान। निर्मल मंत दे जिस दान, तजै विकार बिनसे अभमान, एक तिहाइए साध कै संग, पाप बिनासे नाम कै रंग। गुर परमेसर सगल निवास, घट घट रव रया गुणतास, दर्श देहे तारो प्रभ्यास, नित नानक चितवै सच अरदास। राग राम कली महला पंजवा, घर दूजा दुपदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। गावो राम के गुण गीत, नाम जपत परम सुख पाइए, आवा गौण मिटै मेरे मीत। रहाओ गुण गावत होवत प्रगास, चरण कमल में होए निवास, संत संगत मैं होए उधार, नानक पाव जल उतर सपार। राम कली महला पंजवा, गुरपूरा मेरा गुरपूरा, राम नाम जब सदा सुहेले, सगल बिना से रोग कूरा। रहाओ एक अरादो साचा सोए, जाकी शरण सदा सुख होए, नींद सुहेली नाम की लागी भूख, हर सिमरत बिन सह सब दुख। सहज आनंद करो मेरे भाई, गुरपूरै सब चिंत मिटाई, आठ पहर प्रभ का जप जाप, नानक राखा हो आयाप। राग राम कली महला पंजवा, पड़ताल करती जा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। नर नर है नमस्कारं, जलन थलन बस गगन, एक

क्यों लागी निवरै प्रताप, गुर कै शब्द रचै मन पाए, भिख्या सहज विचारी खाए, भस्म चढ़ाए करै पाखंड, माया मोहे सहजम दंड, फूटै खापर पीख ना पाए, बंधन बांध्या आवै जाए, बिंदना राखै जति कहावै, माई मांग तो त्रै लोभ आवै, निर्दया नहीं जो तो जाला, बूढ़त बूढ़े सर्व जंजाला, पेख करै खिंथा बहु थटुआ, झूठो खेल खेलै बहु नटुआ, अंतर अगन चिंता बहु जारे, विणकर्मा कैसे उतर सपारे, मुंद्रा फटक बनाई कान, मुक्त नहीं विद्या बिग्यान, जेहवा इंद्री साध लोबाना, पशु पय नहीं मिटै निशाना, तिरबद लोगा तिरबद जोगा, शब्द विचारै चूक सोगा, उज्जल साच सो शब्द होए, जोगी जुगत विचारे सोए।

माया मोह विवर्ज समाए सतगुर पेटा मिल मिलाए नाम रतन निर्मोल कहीरा तितराता मेरा मन तीरा हम मैं ममता रोग न लागे राम पग जम का पौ भागे जम जम दार न लागे मोहे निर्मल नाम हृदय हर सोहे शब्द विचार पय निरंकारी गुरमत जागे दुरमत परहारी अंदर जाग रहे लिव लाई जीवन मुक्त गति अंतर पाई अलिप्त गुफा में रहे निरारे तस्कर पंचो सब संगारे पर कर जाए न मन डोलाए सहज निरंतर रहो समाए गुरमुख जाग रहे ओ दूता सतवै रोगी तत्परोता जग सूता मरिया वह जाए बिन गुर शब्द ना सोजी पाए अनहद शब्द वजह दिन राती अवगत की गत गुरमुख जाती तौ जानी जा शब्द पछानी एको रव रहा निर्वानी सुन समाद सहज मन राता तजह लोभा एको जाता गुर चेले अपना मन मानिया नानक दूजा मेट समानिया राम कली महला पहला साहा गणे ना करे बिचार साहे उपर एक अंकार जिस गुर मिले सोई बिद जाने गुरमत होए ता हुक्म पछाणे झूठ ना बोल पांडे सच कहिए हम मैं जाए शब्द कर लिये रहाओ गण गण जोत कुकंडी कीनी पड़े सुना मैं तत न चीनी सब सही उपर गुर शब्द बिचार होर कथनी बदौ ना सगली शार ना वै तो वै पूजै सैला बिन हर रातो मैलो मैला गर्भ निवार मिले प्रभ सार्थ मुक्त प्राण जप हर किरतार्थ वाचै वादना बेद विचार है आप डुबै क्यों पितरा तारै घट घट ब्रह्म चीनै जन को ए सतगुर मिले ता सोजी होए गणत गणी है सहसा दुख जी है गुर की शरण पवै सुखती है कार्य अपराध शरण हम आया गुर हर बेटे पुरभ कमाया गुर शरण ना आई है ब्रह्म ना पाई है परम भुलाई है जन मरियाई है जम दरबा दो मरे बेकार नारद नाम ना शब्द आचार एक पांदे पंडित मिस्र कहावै दुबदारा ते महल ना पावै जिस गुर प्रसादी नाम आधार कोट मदे को जन अपार एक बुरा भला सच एक बूझ ज्ञानी सतगुर की टेक गुरमुख विरली एको जानिया आवन जाना मेट समाणिया जिनकै हृदय एक अंकार सर्वगुणी साचा विचार गुर कै पाणे कर्म कमावै नानक साचे साच समावै। आराम कली महला पहला हठ निग्रह कर काया छीजै वर्त तपन कर मन नहीं पीजै राम नाम सर अवरना पूजै गुर से मना हर जन संग कीजै जम जन दार जोहे नहीं साकै सरपन डस ना सकै हर का रस पीजै रहाओ वाद पड़े रागी जग पीजै त्रैगुण बिखिया जन मरीजै राम नाम बिन दुख सहीजै चार सो पवन सिंहासन पीजै न्योली कर्म खट कर्म करीजै राम नाम बिन बिरथा सास लीजै अंतर पंच अगन क्यों तीर जतीजै अंतर चोर क्यों साध रहीजै गुरमुख होए काया गड़ली जै अंतर मैल तीर्थ परमी जै मन नहीं सूचा क्या सोच करी जै किरत पया दोष का कौ दीजै आना खाहे देही दुख दीजै बिन गुर ज्ञान तृप्त नहीं थी जै मनमुख जन्म जन्म मरी जै सदगुर पूछ संगत जन की

मनसा मार मन सहि समाणा बिन रसना उस्तत कराई लोयन देख रहे बिस्मादी चेता दिष्ट लगाई अदिष्ट सदा रहे निरालम ज्योति ज्योत मिलाई हां गुरसा लाही सदा अपना जिन साची बूझ बुझाई नानक एक है बेनंती नाम गत पत पाई राम कली महला तीजा हर की पूजा दुलंब है संतो कहना कछु न जाई संतो गुरमुख पूरा पाई नामो पूज कराई रहाओ हर बिन सब किश मैला संतो क्या हो पूज चढ़ाई हर साचे पावे सा पूजा होवे पाणा मन वसाई पूजा करे सब लोग संतो मन मुक्ताए ना पाई शब्द मरे मन निर्मल संतो एह पूजा थाए पाई पवित्र पावन से जन साचे एक शब्द लिवलाई बिन नामे होर पूजना होवी भरम भुली लोकाई गुरमुख आप पिछाणे संतो राम नाम लिवलाई आपे निर्मल पूज कराए गुर शब्दी थाए पाई पूजा करे पर विद नहीं जाने दूजे पाए मल लाई गुरमुख होवे सो पूजा जाने पाणा मन वसाई पाणे ते सब सुख पावे संतो अंते नाम सखाई अपना आपना पछाणे संतो कूड़ करे वड्याई पाखंड कीने जम नहीं छोड़े लै जासी पत गवाई जिन अंतर शब्द आप पछाणे गत मित तिन ही पाई एहो मनुआ सुन समाद लगावे ज्योति ज्योत मिलाई सुन सुन गुरमुख नाम वखाणे सतसंगत मिलाई गुरमुख गावे आप गवावे दर साचै सोभा पाई साची बाणी सच वखाणे सच नाम लिवलाई पै भंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सिखाई सब किश आपे आप वरतै नानक नाम वड्याई राम कली महला तीजा हम कुचल कुचील अत अभिमानी मिल शब्दे मैल उतारी संतो गुरमुख नाम निस्तारी सच्चा नाम वस्या कटे अंतर करता आप सवारी रहाओ पारस परसे फिर पारस होए हर जीव अपनी कृपा तारी एक पेख करे फिर अभिमानी तिन जुए बाजी हारी एक आंदन भगत करे दिन राती राम नाम उर तारी आंदन राते सहजे माते सहजे हों मैं मारी पै बिन भगत ना होई कभी पै पाए भगत सवारी माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत् बिचारी आपे आप कराए करता आपे बख्श भंडारी तिस क्या गुणा का अंत ना पाया हों गावा शब्द विचारी हर जियो जपी हर जियो सालाही विचों आप निवारी नाम पदार्थ गुरते पाया खुट सचे पंडारी अपनिया भगता नो आपे तुठा अपनी कृपा कर कल तारी तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी जियो पिंड सब किश है तिसका आखण बिखम बिचारी शब्द लगे से जन निस्तरे पौजल पार उतारी बिन हर साचे को पार ना पावे बूजे को विचारी जो तुर लिखिया सोई पाया मिल हर शब्द सवारी काया कंचन शब्दे राती साचे नाए प्यारी काया अमृत रही पर पूरे पाये शब्द विचारी जो प्रभ खोजे से ही पावे होर फूट मोए हंकारी बादी बिन सह सेवक सेवै गुर कहित प्यारी सो जोगी तत् ज्ञान विचारे हम मैं तृष्णा मारी सतगुर दाता तने पछाता जिसनो कृपा तुम्हारी सतगुर ना सेवै माया लागे डूब मुए हंकारी जिचर अंदर सास तिचर सेवा कीचै जाय मिलिय राम मुरारी
ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗਤ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰੀ, ਤਨ ਮਨ ਵਾਰੀ ਵਾਰ ਕੁਮਾਈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਿੱਟੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏਗਾ, ਉਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ, ਆਪ ਜਗਾਏ ਸਹੀ ਜਾਗੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਮੂਏ ਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੈ, ਭਗਤ ਜੀਵੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਗਾਈ ਸੰਤੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤਗਤ ਪਾਈ, ਏਕ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਖੜ

अवर न कर न जाई, आपे साजे सृष्टि उपाए सिर सिर धंधा लाई, तिसे श्री बोता सुख पावो सतगुर मेल मिलाई। अपना आप यो पाए अलख न लखना जाई, आपे मार्जी वाले आपे तिसनो तिल ना तुमाई।

ज्यो पाव को संग सीत को नास, ऐसे प्राहित संत संग बिनास। ज्यो साबन कापर उज्जल होत, नाम जबतो सब ब्रह्म पौखोत। ज्यो चकवी सूरज की आस, ज्यो चात्रक बूंद की प्यास। ज्यो कुरंक नाद करन समाने, त्यों हर नाम हर जन मने सुखाने। तुमरी कृपा ते लागी प्रीत, दयाल पै ताय आए चीत।

लभ लोभ अहंकार ता तृष्णा बहुत नाही बोलना, खन्यो तिखी वालो निकी एत मार्ग जाना। गुरप्रसादी जिनी आप तजया हर वासना समाणी, कह नानक चाल भगता जुगो जुग निराली। ज्यो तू चलाए हे तिव चले स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे। जिव तू चलाए हे तिवै चल है, जिन्ना मार्ग पावहे। कर कृपा जिन नाम लाए हे, से हर हर सदा त्यावहे। जिसरों कथा सुनाहे अपनी, से गुरुद्वारे सुख पावहे। कहे नानक सच्चे साहेब, जो पावे तवै चलावहे। एहो सोहेला शब्द सुहावा, शब्दो सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया। एहो तिनकै मन वसिया, जिन तुरों लिखिया आया। एक फिरै कनेरे करै गल्ला, गली किनै ना पाया। कहे नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया। पवित होए सेजना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया। पवित माता पिता कुटुंब सहित स्यों, पवित संगत सवाइया। कहिंदे पवित सुनदे पवित, से पवित जिनी मन वसाया। कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया। करमी सहज ना उपजै, विण सहजै सहसा ना जाए। नह जाए सहसा कितै संजम, रहे कर्म कुमाए। सहसै जियो मलीन है, कित संजम तोता जाए। मन तोवो शब्द लागो, हर स्यो रहो चित लाए। कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै, एहो सहसा इव जाए।

राम कली सद एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वछल ते हलोए जियो गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोई जियो अवरो ना जाने शब्द गुर कै एक नाम ते आवे प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावे आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया जग अमरिया टालिया तोल ठाकर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रपाह जियो सतगुर करे हर पह बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज रखो हर जने केरी हर देहो नाम निरंजनो अंत चलदिया होए बेली जमदूत काल निखंजनो सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो हर तार कृपा सतगुर मिलाया तन तन कह साबाह जियो मेरे सिख सुनो पुत पाई हो मेरा हर पाणा आओ मैं पास जियो हर पाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा पावे आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल मेलावे तुसी पुत पाई परवार मेरा मन वेखो कर निर्जाह जियो तुर लिखिया प्रवाणा फिर नाही गुर जाए हर प्रपाह जियो सतगुर पाणे अपने बह परवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोग सी सो मैं मूल ना पाया मित पै जाए मित बिकसै जिस मित की पैज पावे तुसी विचार देखो पुत पाई हर सतगुरु पहनावे सतगुरु प्रतख होंद बहराज आप टिकाया सब सिख बंदप पुत पाई रामदास पैरी पाया अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करो निर्वाण जियो केसो गोपाल पंड सद्यो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबाण हर रंग गुर पावे पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर सर पावे हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो सतगुर पुरख जे बोलिया गुर सिखा मन लई रजाए जियो मोहरी पुत सनमुख होया रामदास पैरी पाए जियो सब पवै पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया कोई कर बखीली निवै नाही फिर सतगुरु आण निवाया हर गुरह पाणा दी वडियाई तुर लिखिया लेख रजाए जियो कह सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो रामकली महला पंजवां शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोए अड़ा मेरा साजनड़ा जानी अड़ा हर जानी अड़ा नैन अलोए अड़ा हर जानी अड़ा नैन अलोया कटकट सोया अत अमृत प्रे गूड़ा नाल होवंदा लहना सकंदा स्वाव न जाने मूड़ा माया मदमा

कहो नानक जो प्रभु को पाणा तिस ही को प्रभु प्यारा। मानो प्रभु मानो मेरे प्रभु का मानो, जानो प्रभु जानो स्वामी सूड़ सुजानो। सूड़ सुजाना सत परदाना अमृत हर का नामा, चाख्या गाने सारिंग पाने जिनके पाग मथाना। तिन ही पाया तिनै ते आया सगल तसै का मानो, कहो नानक थिर तख्त निवासी सच तसै दी बाणो। मंगला हर मंगला मेरे प्रभु कै सुनिए मंगला, सोहे लड़ा प्रभु सोहे लड़ा अनहद तुनिए सोहे लड़ा। अनहद वाजे सबद्या गाजे नित नित जिसै वधाई, सो प्रभु त्याई है सब किश पाई है मरै ना आवै जाई। चूकी प्यासा पूर्ण आसा गुरमुख मिल निर्गुनिया, कहो नानक घर प्रभु मेरे कै नित नित मंगल सुनिए। राम कली महला पंजवा हर हर त्याय मना, खिन्ना विसारी है राम रामा राम रामा कंठ उरतारी है। उरतार हर हर पुरख पूर्ण पार ब्रह्म निरंजनो, पै दूर करता पाप हरता दुसै दुख पव खंडनो। जगदीश ईस गोपाल माधो गुण गोविंद विचारी है, बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरैन चितारी है। चरण कमल आधार जन का आसरा, माल मिलख पंडार नाम अनंत तरा। नाम नर हर निधान जिनकै, रस भोग एक नारायणा, रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्यायणा। किल विखहरना नाम पुनः चरना, नाम जम की त्रास हरा। बिनवंत नानक रास जन की चरण कमल आसरा। गुण बेअंत स्वामी तेरे कोई ना जान नहीं, देख चलत दयाल सुन भगत वखान नहीं। जी जंत सब तो इतिहावै पुरख पत परमेसरा, सर्व जाचक एक दाता करना मैं जगदीसरा। साधु संत सुजान सोई जिसै प्रभ जी मान नहीं, बिनवंत नानक करो कृपा सोए तुझे पिछान नहीं। मोहे निर्गुण अनाथ सरनी आया, बल बल बल गुरदेव जिन नाम दृढ़ाया। गुर नाम दिया कुशल थिया सर्व इच्छा पुनिया, जलने बुझाई सांत आई मिले चिरी विशुन्या। आनंद हर सह साचे महामंगल गुण गाया, बिनवंत नानक नाम प्रभ का गुरपूरे ते पाया। राम कली महला पंजवा रुण चुनो सबदा लाहद नित उठ गाई है संतन कै। केलविक सब दुख बिनासनो हर नाम जपिए गुरमंतन कै। हर नाम लीजै अम्यो पीजै रहन दिन सहारा दिया, जोग दाना नेक किरिया लग चरण कमल ऐसा दिया। पाओ भगत दयाल मोहन दुख सगले पर हरै, बिनवंत नानक तरै सागर त्याए स्वामी नर हरै। सुख सागर गोबिंद सिमरन भगत गावै गुण तेरे राम, आनंद मंगल गुरचरणी लागे पाए सुख कनेरे राम। सुख निदान मिलिया दुख हरिया, कृपा कर प्रभ राखिया। हर चरण लागा प्रंपो पागा, हर नाम रसना पाखिया। हर एक चितवै प्रभ एक गावै, हर एक दृष्टि आया। बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा पूरा सतगुर पाया। मिल रही है प्रभ साध जना, मिल हर कीर्तन सुनिए राम। दयाल प्रभु दा मोदर माधो अंत न पाइए गुनिए राम। दयाल दुख हर शरण दाता सगल दुख निवारणो, मोह सोग विकार बिखड़े जपत नाम उदाहरणो। सब जी तेरे प्रभु मेरे कर कृपा सब रेण थीवा। बिनवंत नानक प्रभ मया कीजै नाम तेरा जप जीवा। राख लिए प्रभ भगत जना अपनी चरनी लाए राम। आठ पहरे अपना प्रभ सिमरै एको नाम ते आए राम। त्याए सो प्रभ तरे पव जलो रहे अवन जाना, सदा सुख कल्याण कीर्तन प्रभ लगा मीठा पाणा। सब इच्छ पुन्नी आस पूरी मिले सतगुर पूरिया, बिनवंत नानक प्रभ आप मेले फिर नाही दुख विसूरिया। राम कली महला पंजवा शंत सलोक, चरण कमल शरणागति आनंद मंगल गुणगाम। नानक प्रभ आराधी है विपत निवारण।

आए मंत आए से सुंदर सोहिया वन त्रैण त्र पवन पए हरिया देख दर्शन मोहिया मिले स्वामी इच पुन्नी मन जपया निर्मल मंत जियो बिनवंत नानक नित करो रलिया हर मिले श्री तरकंत जियो सलोक संत सहाई जी के पव जल तारनहार सब ते उचे जानिए नानक नाम प्यार जिन जानिया सही तरे से सूरे से बीर नानक तिन बलिहारने हर जप उतरे तीर संत चरण विराजत सब उपरे मिटिया सगल क्लेश जियो आवन जावन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो हर रंग राते सहज माते तिल ना मनते बिसरै तज आप सरनी परे चरनी सर्ब गुण जगदीश्वरै गोविंद गुण निध श्री रंग स्वामी आदि कौआ देह जियो बिनवंत नानक मया तारो जुग जुगो एक वेश जियो राम कली महला पहला दखनी ओवंकार एक ओवंकार सतगुर प्रसाद ओवंकार ब्रह्मा उत्पत ओवंकार किया जनचित ओवंकार सैल जुग पए ओवंकार वेद निर्मय ओवंकार शब्द उदरे ओवंकार गुरमुख तरे ओ नम अखर सुनो विचार ओ नम अखर त्रिपवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाओ सस्य सब जग सहज उपाया तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस प्राप्त होवे चुन लै मानक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै सा समाले बिन साचे जग काचा तदै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन तीरा तदै तूल पड़े मुख मस्तक कंचन पहे मनूरा तन तरनी तर आप आजोनी तोल बोल सच पूरा करते की मित करता जाने कह जाने गुरसूरा ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिख खाया गुरस गीत बाद नहीं पावे सुनिए गहर गंभीर गवाया गुर सच कहया अमृत लहया मंतन साज सुखाया आपे गुरमुख आपे देवै आपे अमृत पी आया एको एक कह सब कोई हम मैं गर्भ व्यापै अंतर बाहर एक पछाणै इउ कर महल सियापै प्रभ नेड़ै हर दूर न जान हो एको सृष्ट सवाई एक अंकार अवर नहीं दूजा नानक एक समाई इस करते कहो क्यों गह राखो अफरियो तुल्यो न जाई माया के देवाने प्राणी झूठ गौरी पाई लब लोभ मोहताज विगूते इब तब फिर पछताई एक सरे वै ता गत मित पावै आवन जान रहाई एक आचार रंग एक रूप पौन पानी अग्नि असरूप एको पवर पवै तिहो लोए एको बूझै सूझै पत होए ज्ञान ध्यान ले समसर रह गुरमुख एक विरला कोल है जिसनो दे कृपा ते सुख पाए गुरु द्वारे आग सुनाए ऊरम तूरम ज्योत उजाला तीन पवन मैं गुर गोपाला ऊग व्या असरूप दिखावै कर कृपा अपने कर आवै ऊन बरसै निजर तारा उत्तम शब्द सवारण हारा इस एके का जाने पे ओ आपे करता आपे दे उगवै सूर असर संघार है उचो देख शब्द विचार है ऊपर आद अंत तिहो लोए आपे करे कथै सुने सोए ओहो विधाता मन तन दे ओहो विधाता मन मुख सोए प्रभ जग जीवन अवर ना कोए नानक नाम रते पत होए राजन राम रवै हितकार रण में लूजै मनुआ मार राधनंत रह रंग राता तीन पवन जुग चारे जाता जिन जाता सो तिसी जेहा अत निरमायल सिंज सेहा रैसी राम हृदय पाए अंतर शब्द साच लिवलाए रोस ना कीजै अमृत पीजै रहन नहीं संसारे राजे राय रंक नहीं रहना।

चेतन नित नीत चिंतत ही दिशा सब कोए, चेता एक तही सुभोए चित वसै राचै हर नाए, मुक्त भया पत स्यों कर जाए। छीजै देह खुलै एक गंड, छे अन देखो जगहंड, तू पिशाब जे सम कर जाना, बंधन काट मुक्त कर आना। छाया छूछी जगत पुलाना, लिखिया किरत तुरे परवाना, छीजै जोबन जरुआ सिरकाल, काया छीजै पही सिवाल। जापै आप प्रभु तेहो लोए, जुग जुग दाता अवर ना कोए। ज्यो पावै त्यों राखै राख, जस जाचौ देवै पत साख। जागत जागरहा तुद पावां, जा तू मेलै तां तुजै समावां। जय जयकार जपो जगदीश, गुरमत मिलिए बीसा कीस। चख बोलन क्या जग स्यों वाद, चूर मरै देखै प्रमाद। जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले पहे आस निरासा।

फिर फाही फासे कौआ, फिर पछताना अब क्या हुआ। फाथा चो चुगे नहीं बुझे, सतगुर मिले ता आखी सूझे। जो मछली

साच वखर तन पल्लै होए आप तरह तारे पी सोए सहज रत्ता बूझे पत होए ताकी कीमत करे ना कोए जै देखा तै रया समाए नानक पार परे सच पाए सो शब्द का कहां वास कथियल जित तरियै भवजल संसारो त्रै सत अंगल वाई कहिया तिस कहो कमने आधारो बोले खेले असर होवे क्यों कर लख लखाए सुन स्वामी सच नानक प्रणवे अपने मन समझाए गुरमुख शब्दे सच लिव लागे कर नदरी मेल मिलाए आपे दाना आपे बीना पूरे पाग समाए सो शब्द कहो निरंतर वासा लखं जै देखा तै सोई

अभ्यागत है ना आखिया न जे पर कर भोजन करे न उधर कारण अपने बहले पे करे न अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौण करे न पाल लहन सौ अपना निज कर रहन करे न पौड़ी अंबर तरत विछोड़िया न विच सच्चा असराओ कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ सब सच्चा हुक्म वरतदा गुरमुख सच समाओ सच्चा आप तख्त सच्चा बह सच्चा करे न्याओ सब सचो सच वरतदा गुरमुख लख लखाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला।

रैन आयर मह सब किश है कर्मी पल्ले पाए नानक नौ निद पाई है जे चले तसैर जाए महला तीजा सहजे सदगुरना सेवयो विच होमै जन्म बिनास रसना हरसना चखियो कमला होयो परगास बिख खादी मन मुख मुआ माया मोहे विनास इक सहर के नाम विण त्रिग जीवन त्रिगवास जा आपे नदर करे प्रभ सच्चा ता होवै दसन दास ता अंदन सेवा करे सतगुरु की कबै न छोड़ै पास ज्यों जल मैं कमल अलिपतो वरतै त्यों विचे ग्रह उदास जन नानक करे कराया सबको ज्यों पावै तिव हर गुणतास पौड़ी छत्ती जोग वारसा आपे गणत कीनी आपे सिरट सब साजियां नू आप मत दीनी सिमरत सास्त साजियां पाप उन गणत गणीनी जिस बुझाए सो बुझसी सच्चे शब्द पतीनी सब आपे आप वरतदा आपे बख्श मिलाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई सलोक महला तीजा एहो तन सबो रत है रत बिन तन ना होए जो सहरत अपने तिन तन लोभ रत ना होए पै पै तन खीण होए लोभ रत विचों जाए जो बै संतर तात सुध होए त्यों हर का पौ दुरमत मैल गवाए नानक तेजन सोहने जो रते हर रंग लाए महला तीजा आराम कली राम मन वसिया ता बनिया सिंगार गुर कै शब्द कमल बिकसिया ता सौंपिया भगत भंडार परम गया ता जागया चूका अग्ञान आधार तिसनो रूपया त्यागला जिस हर नाल प्यार सदा रवै पिरे अपना सोभावंती नार मन मुख सिंगार न जाननी जसन जन्म सभार बिन हर भगती सिंगार करै नित जमै होए खुआर संसार विच सोभ ना पाए नी अगै जे करे सो जाने करतार नानक सच्चा एक है दोह विच है संसार चंगा मंदा आप लायान सो करन जे आप कराए करतार महला तीजा बिन सतगुर सेवे सांत ना आवई दूजी नाही जाए जे बहु तेरा लोची है विन कर्मा पाया ना जाए अंतर लोभ विकार है दूजे पाए खुवाए तन जमन मरण न चुकई हम मैं विच दुख पाए जिन्नी सतगुर स्यों चितलाया सो खाली कोई ना है तन जम की तलब ना हो वई ना होए दुख सहाए नानक गुरमुखी उबरे सच्चे शब्द समाहे पौड़ी आप अलिप्त सदा रह होर तंदै सब तावै आप नि चलिया चल है होर आवै जावै सदा सदा हर त्याई गुरमुख सुख पावै निज कर वासा पाई सच सिफत समावै सच्चा गहर गंभीर है गुर शब्द बुझाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई सलोक

नाम जपे नामो वारादे तिस जन कौ करो सब नमस्कार। मल कूड़ी नाम उतारियन जप नाम होआ सचियार। जन नानक जिस दे एह चलत है सो जीवो देवनहार। पौड़ी तुद जेवण दाता नाहें किस आख सुनाई है। गुर प्रसादी पाए जिथों हम मैं जाई है। रस कस साधा बाहरा सच्ची वड़ियाई है। जिसनों बख्शे तिस दे आप लै मिलाई है। घट अंतर अमृत रखियो न गुरमुख किसै प्याई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा बा बाणियां कहानियां पुत सपुत करेन। जे सतगुर भावै सो मन लैन सेई कर्म करेन। जाए पुछो सिमरत शास्त्र ब्यास सुख नारद। बचन सब सृष्ट करेन सच्चै लाए सच लगे सदा सच सामालेन। नानक आए से प्रवान पए जे सगले कुल तारेन। महला तीजा गुरु जिन्ना का अंदला सिख भी अंधे कर्म करेन। ओए भाणै चलन अपणै नित झूठो झूठ बोलेन। कूड़ कुसत कमावदे पर निंदा सदा करेन। ओए आप डुबे पर निंदका सगले कुल डोबेन। नानक जित ओए लाए तित लगे ओए बपड़े क्या करेन। पौड़ी सब नदरी अंदर रखदा जेती सिहट सब कीती। एक कूड़ को सत लायन मनमुख वे गुती। गुरमुख सदा तिहाई है अंदर हर प्रीति। जिनको पोतै पुन है तिन वात सपीती। नानक नाम तिहाई है सच सिफत सुनाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला सती पाप कर सत कमाहे। गुर दीख्या कर देवन जाहे। स्त्री पुरख है खटे पाओ पावे आवो पावे जाओ। शास्त वेदना माने कोए आपो आपे पूजा होए। काजी होए कै बह न्याए फेरे तस्बी करे खुदाए। वड्डी लैके हक गवाए जे को पुछै ता पढ़ सुनाए। तुरक मंत्र कन हृदय समाहे। लोक मुहावै चाड़ी खाहे चौका देके सुचा होए। ऐसा हिंदू वेखो कोए जोगी गिरही जटा बिभूत। आगे पाछै रोवै पूत। जोग न पाया जुगत गवाई कित कारण सरशाई पाई। नानक कल का एहो प्रवान आपे आखण आपे जान। महला पहला हिंदू कह कर हिंदू आवै। सूत जनेऊ पढ़ गल पावै। सूत पाए करे बुरियाई नाता तोता थाए न पाई। मुसलमान करे वड्याई विण गुर पीरै को थाए न पाई। राहो दसाए उथे को जाए करनी बाजाओ पिस ना पाए। जोगी कह कर जुगत दसाई तित कारण कर मुंद्रा पाई। मुंद्रा पाए फिर संसार जिथे किथे सृजनहार। जेते जीते ते वाटाऊ चीरी आई ढिल ना काऊ। एथे जाने सो जाए सजाण होर फकर होर फकड़ हिंदू मुसलमान है।

अहन से अंतर रहते आनो ते बैरागी सत समान। बोले परथर सत स्वरूप परम तंत में रेखना रूप। महला पहला। क्यों मरे मंदा क्यों जीवे जुगत। कन पड़ाए क्या खाजे भुगत। आस्त नास्त एको नाओ कौन सो अखर जित रह आओ। धूप छाव जे सम

निरंकार जो रह समाए, काहे पीखिया मंगण जाए। पौड़ी हर मंदिर सोई आखिया, जिथों हर जाता मानस देहे गुरबचनी पाया। सब आत्म राम पछाता, बाहर मूल ना खोजी है कर माहे विधाता। मन मुख हर मंदिर की सार ना जाननी, तिन्नी जन्म गवाता। सब मैं एक वर्तदा गुर शब्दी पाया जाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा, मूर्ख होवे सो सुने। मूर्ख का कहना, मूर्ख के क्या लखण है, क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओहो जे मुग्ध है अहंकारे मरना। एतक माणै सदा दुख, दुखी मैं रहना। अत प्यारा पवै खूहे क्यों संयम करना। गुरमुख होए सो करे विचार, ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपै आप उदरै, ओस पिछै डुबदे पी तरना। नानक जो तिस पावै सो करे, जो दे सो सहना। महला पहला नानकिया खैरे मना, सुनिए सिख सही। लेखा रब मंगेसिया, बैठा कड वही। तलबा पौसने आकिया, बाकी जना रही। अजराइल फरेस्ता होसी आए तई, आवन जान न सुजई। पीड़ी गली फही, कूड़ ने खुट्टे नानका, ओड़क सच रही। पौड़ी हर का सब शरीर है, हर रवर या सब आपै। हर की कीमत ना पवै, किश कहण ना जापै। गुर प्रसादी सालाही है, हर भगती रापै। सब मंतन हरिया होया, हंकार गवापै। सब किश हर का खेल है, गुरमुख किसे बुझाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला, सहंसर दान दे इंद्र रोवाया। परशुराम रोवे घर आया, अजय सो रोवे पीखिया खाए। ऐसी दरगह मिले सजाए, रोवे राम निकाला पया। सीता लखमण विछड़ गया, रोवे दैसर लंक गवाए। जिन सीता आंदी डौरू वाए, रोवे पांडव पय मजूर। जिनके स्वामी रहत हदूर, रोवे जन्मे जा खोए गया। एकी कारण पापी पया, रोवे शेख मसा एक पीर। अंतकाल मत लागे पीड़, रोवे राजे कन पढ़ाए। कर कर मांगे पीखिया जाए, रोवे किरपन संचय तन जाए। पंडित रोवे ज्ञान गवाए, बाली रोवे नाहे पतार। नानक दुखिया सब संसार, मन्ने नाओ सोई जन जाए। औरी कर्म ना लेखै लाए, महला दूजा। जप तप सब किश मन्ने है, अवरकारा सब बाद। नानक मन्या मन्नी बुझिए गुर प्रसाद। पौड़ी काया हंस तुर मेल, करते लिख पाया। सब मैं गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया। गुण गावे गुण उच्चरे, गुण महे समाया। सच्ची बाणी सच है, सच मेल मिलाया। सब किश आपे आप है, आपे दे वड्याई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला दूजा, नानक अंधा होए कै। रतना परखण जाए, रतना सार ना जाणई। आवै आप लखाए, महला दूजा। रतना केरी गुथली, रतनी खोली आए। वखर तैवन जा रिया, दुहा रही समाए। जिन गुण पल्लै नानका, माणक बन जैसे। रतना सार ना जाणई, अंधे वत्तै लोए। पौड़ी नौ दरवाजे काया कोट है, दसवै गुप्त रखी जय। बजरक पाट न खुलनी, गुर शब्द खुली जय। अनहद वाजे धुन वज दे,
ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀਜੈ, ਤਿਤ ਕਟ ਅੰਤਰ ਚਾਨਣਾ, ਕਰ ਭਗਤ ਮਲੀਜੈ, ਸਭ ਮੈਂ

हो चले नाही कड़ी मोहत किश हंड, सच पुराना होवे नाही सीता कदे ना पाट, नानक साहेब सचो सच्चा तिचर जापी जापै। महला पहला सच की काती सच सब सार, काट तो तिसकी अप्रयापार, सबदे सान रखाई लाए गुण की थे कै विच समाए, तिसदा कुठा होवे सेख लोहू लब निकथा वेख, होए हलाल लगे हक जाए नानक दर्दी दर समाए। महला पहला कमर कटारा बंकड़ा बंके का सवार, गर्भ ना की जय नानका मत सिर आवे पार, पौड़ी सो सत संगत शब्द मिले जो गुरमुख चले, सच ते आयन से सचे जिन हर खर्च तन पले, भगत सोहन गुण गावंदे गुरमतिया चले, रतन विचार मन वसिया गुर कै शब्द भले, आपे मिल विलाईंदा आपे दे वड़ियाई, वाह वाह सचे पातशाह तू सची नाई। सलोक महला तीजा आसा अंदर सब को, कोई निराशा होए नानक जो मर्जी विया सहला आया सोए। महला तीजा ना किश आसा हथ है क्यों निराशा होए, क्या करे ए बपड़ी जा पुलाए सोए। पौड़ी त्रिग जीवन संसार सच्चे नाम बिन प्रभ दाता दातार, नि चले हो तन साध सास आराधे निर्मल सोए जानो, अंतर जामी अगम रसना एक पान, रव रहया सरबत नानक बल जाई, वाह वाह सच्चे पातशाह तू सची नाई। सलोक महला पहला सरवर हंस तुरे ही मेला, खसम एवै पाणा सरवर अंदर हीरा मोती सो हंसा का खाना, बगला काग न रही सरवर जे होवै अत सियाणा, ओना रिजक न पयो उथै ओना होरो खाना, सच कमाणै सचो पाईऐ कूड़ै कूड़ा माणा, नानक तिनको सतगुर मिलिया जिन्ना तुरे पै परवाणा। महला पहला साहिब मेरा उजला जे को चित करे, नानक सोई सेवियै सदा सदा जो दे, नानक सोई सेवियै जित सेवै दुख जाए, अवगुण वंजन गुण रवै मन सुख वसै आए। पौड़ी आपे आप वरतदा आप ताड़ी लाइयन, आपे ही उपदेश दा गुरमुख पति आईयन, एक आपे उजड़ पायन एक भगती लायन, जिस आप बुझाए सो बुझ सी आपे नाए लाइयन, नानक नाम ती आई है सच्ची वड़े आई।

रामकली की वार महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला पंजवा जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। हर नामो मंत्र दरड़ाएंदा कट्टे हों मैं रोग नानक सतगुर तिना मिलाया जिन्ना तुरे पया संजोग। महला पंजवा एक सज्जन सब सज्जना एक वैरी सब वाद गुरपुर देखा लिया विणना मैं सब बाद। साकत दुर्जन परमया जो लगे दूजे साध जन नानक है प्रभु जिया गुर सतगुर कै प्रसाद। पौड़ी थटन हारे थाट आपे ही थटिया आपे पूरा साहो आपे ही खटिया आपे करपा सार आपे रंग रटिया कुदरत कीमना पाए अलख ब्रह्मटिया। अगम अथाह बेअंत परे प्रटिया आपे वड पात साहो आप वजी रटिया। कोई न जाने कीम केवड मटिया सच्चा साहब आप गुरमुख प्रगटिया। श्लोक महला पंजवा सुन सज्जन प्रीतम मेरे आ मैं सतगुर देहो देखाल हाँ तिस सेवी हाँ तिस देवा मन अपना नित हृदय रखा समाल। एकस सतगुर बाहरा त्रिक जीवन संसार जन नानक सतगुर तिना मिलायोन।

कोई ऐसा सज्जन लोड लाहो जो मिले प्रीतम मोहे, गुरपुरै में लाया जत देखा तत सोए, जन नानक सो प्रभ सेवया तिस जेवड़ियावर ना कोए पौड़ी। देवन हार दा तार कित मुख सालाही है, जिस रखे कृपा तार रिजक समाही है, कोई ना किसी वस सबना एक तार, पाले बालक वांग देके आप कर, करदा अनंत बिनोद किशु ना जानी है, सर्वतार समरथ हों तिस कुर्बानी है। गाइए रात दिनंत गावन जोगया, जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगया। सलोक महला पंजवा, भीड़ो मोकलाई की तियान, सब रखे कुटुंबे नाल, कार्ज आप सवारयान सो प्रभ सदा संभाल। प्रभ मात पिता कंठ लाएंदा, लहुड़े बालक पाल, दयाल होए सब जी जंतर, हर नानक नजर निहाल। महला पंजवा, विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखा कै दुख, देह नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। गुरवण तेण हरिया कीतिया, नानक क्या मनुख पौड़ी। सो ऐसा दातार मनो ना विसरै, कड़ी ना मोहत चसा तिस बिन ना सरै। अंतर बाहर संग क्या को लुक करै, जिस पत रखै आप सो पवजल तरै। भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै, सो पूरा प्रधान जिसनो बल तरै। जिसै जराए आप सोई अजर जरै, तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमंत्रै। सलोक महला पंजवा, तन सो राग सुरंगड़े आलापत सब तिख जाए, तन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे नाम। जिन्नी एक मन एक आराध्या, तिन सद बलिहारै जाओ, तिन की धूड़ हम बांश दे करमी पल्ले पाए। जो रत्ते रंग गोविंद कै, हाँ सद बलिहार।

व्यापिया दुर्मत कबुद कमूड़ा मन लागा तसमोहा ठगै सेती ठगरा ले आया साथ पे इको जेहा। सतगुर सराफ नदरी विच दो कड्डै ता उगड़े आया लोहा बहु तेरी थाई रलाए रलाए दिता उगड़िया पड़दा अगे आए खलोहा सतगुर की जे सरणी आवै फिर मनूरो कंचन होहा। सतगुर निर्वैर पुत्र सत्र समाने औगण कटे करे सुध देहा नानक जिस तुर मस्तक होवै लिखिया ते सतगुर नाल सुनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कृपाल होवै तिस हृदय वसेहा आवन जाना तिसका कटी है सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दर गै सिजई जिसनो तेरी नदर हम मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई जिसकै स्वामी वल निरपव सो पई जिसनो तू कृपाल सच्चा सो थई जिसनो तेरी माया ना पोहै अगनई तिसनो सदा दयाल जिन गुरते मत लई श्लोक महला पंजवा कर कृपा कृपाल आपे बख्श लै सदा सदा ज

पौड़ी वड़ियाई सच्चे नाम की हों जीवा सुन सुने पशु प्रेत अज्ञान उदारे एक घने दिन सरैन तेरा नाव सदा सद जापी है तृष्णा भुख विकराल नाए तेरे तरापी है रोग सोग दुख मन्या जिस नाव मन वसै तसै प्राप्त लाल जो गुरसबदी रसै खंड ब्रह्मांड बेअंत उधार नहारिया तेरी शोभा तुद सच्चे मेरे प्यारिया। श्लोक महला पंजवां मित्र प्यारा नानक जी मैं छड़ गवाया रंग कुसुम बै भुली तो सज्जन की मैं की मना पाउंदी हों तुद बिन अड ना लहिंदी। महला पंजवां सस विरायण नानक जी ओ ससरावादी जेठो पौ पौ लू है हब्बे पास पुणे दे वतन जा मैं सज्जन तू है पौड़ी जिस तू उठा चित तिस दर्द निवारण जिस तू उठा चित तिस कदे ना हारण जिस मिलिया पूरा गुरु सो सर प्रतारण जिसनो लाए सच ते सच संभालण जिस आया हथ निदान सो रहया पालण जिसनो इको रंग भगत सो जानो ओ सबना की रेण बिरही चारण सब तेरे चोज विडाण सब तेरा कारण। श्लोक महला पंजवां उस्तत निंदा नानक जी मैं हब मंजाई छोड़िया हब के जित्यागी हब्बे साख कूड़ावे डिठे तौ पल्ले तेंडे लागी। महला पंजवां फिरदी फिरदी नानक जी ओ हों फावी थी बौद्ध सावर पंदा ताहों सुख सुखाली सुती।

पौड़ी। मिल नारी सतसंग मंगल गाविया, कर का हवा बंधान बहुण ना ताविया। बिनठी दुरमत दुरत सोए कूड़ाविया, सीलवंत प्रधान हृदय सचाविया। अंतर बाहर एक एक रीताविया, मन दर्शन की प्यास चरण दासाविया। सोभा बनी सिंगार खसम जा राविया, मिलिया आए संजोग जात सपाविया। सलोक महला पंजवा, हब गुण तैंडे नानक जियो, मैं कूथिए मैं निर्गुण ते क्या होवै। तौ जेवड़दा तार ना कोई, जाचक सदा जाचोवै। महला पंजवा, देह छजंदड़ी ऊन मजूणा, गुर सज्जन जियो तराया। हबे सुख सुहेलड़ा सुत्ता, जिता जग सबाया। पौड़ी, वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तखत, सिर साहा पातशाह हो निहचर चौर छत। जो पावै पार ब्रह्म सोई सच न्याओ, जे पावै पार ब्रह्म निथावे मिलै थाओ। जो कीनी करतार साई भली गल, जिनी पछाता खसम से दरगाह मल। सही तेरा फरमान किने ना फेरी है, कारण करण करीम कुदरत तेरी है। सलोक महला पंजवा, सोए सुडंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली पंद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, गुर दर्शन देख निहाली। महला पंजवा, हठ मजाहू मैं माणक लद्दा, मोलना केदा मैं कु सतगुर दिता। ढूंढ मजाई थिया थिता, जन पदार्थ नानक जिता। पौड़ी, जिसके मस्तक कर्म होए सो सेवा लागा, जिस गुर मिल कमल प्रगासिया सो अंधन जागा। लगा रंग चरनार बिंद सब प्रंपो पागा, आयात्म जिता गुरमतिया गंजित पागा। जिसे ते आया पार ब्रह्म सो कल मैं तागा, साधु संगत निर्मला आठ साठ मजनागा। जिस प्रभ मिलिया अपना सो पुरख सुभागा, नानक तिस बलिहारण जिस ए वडभागा। सलोक महला पंजवा, जा पिर अंदर ता तन बाहर, जा पिर बाहर ता तन माहर। बिन नामे बो फिर फिराहर, सतगुर संग दिखाया जाहर। जन नानक सच्चे सच समाहर, महला पंजवा। आहर सब करदा फिरै, आहर एक ना होए। नानक जित आहर जग उदरै, विरला बुझै कोए। पौड़ी, वड्डी हूं वड्डा।

माधाना पर्वत कारो नेत्र बासर माधाना पर्वत कारो नेत्र बासक शब्द रिड़क्योन चौदह रतन निकाल्योन कर आवा गौण चिलक्योन कुदरत है वे खालियान जिन एवड पिंड ठिणक्योन लहने तरयोन छत्र सिर असमान के आड़ा शिक्योन ज्योत समाणी ज्योत माहे आप पैसे ती मिक्योन सिखा पुत्रा कोख कै सब उम्मत वेखो जेक्योन जांस दोस्तां लहना टिक्योन फेर वसाया फेर आन सतगुर खाडूर जप तप संजम नाल तुद होर मुच गुरूर लब विनाहे मानसा ज्यों पानी बूर वरे अदर गै गुरु की कुदरती नूर जित सुहाथ ना लबई तू ओ ठरूर नौ निध नाम निधान है तुद विच भरपूर निंदा तेरी जो करे सो मन्ये चूर नेड़े दिसै मात लोक तो सुजै दूर फेर वसाया फेर आन सतगुर खाडूर सो टिका सो बहना सोई दीवान पिऊ दादे जिवेहा पोता प्रमाण जिन बासक नेत्रै कतिया कर नेही तान जिन समुंद विरोलिया कर मेर मदान

जानी जानी रे राजा राम की कहानी, अंतर ज्योत राम परगासा, गुरमुख बिरलै जानी रहाओ। पावर एक पोह परस बीदा, बारह ले उर तरिया, सोरै मदे पवन चकोरिया, आकाशे फरफरिया। सहज सुन एक बिरवा उपजिया, धरती जल हर सोखिया, कह कबीर हौ ताका सेवक, जिने हो बिरवा देखिया। मुंद्रा मोहन दया कर चोली, पत्र का करो बिचार रे, ए खिंथा हो तन सियो अपना, नाम करो आधार रे। ऐसा योग कमावो जोगी, जप तप संजम गुरमुख भोगी रहाओ। बुद्ध विभूत चढ़ाओ अपनी, सिंगी सुरत मिलाई, कर बैराग फिरो तन नगरी, मन की किंगरी बजाई। पंच तत् लै हृदय रखो, रह निराल मताड़ी, कहत कबीर सनोरे संतो, धर्म दया कर बाड़ी। कमन काज सिरजे जग पीतर, जन्म कमन फल पाया, पावनिद तरन तारण चिंता मन, एक निमख नायो मन लाया। गोविंद हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभ जी ओ पिंड था दिया, जिसकी पाओ भगत ने साधी रहाओ। पारतान पारतान पारती निंदा, पर अपवाद ना छूटै, आवागमन होत है फुन फुन, एहो प्रसंग ना टूटै। जेह कर कथा होत हर संतन, एक निमख ना कीनो मैं फेरा, लंपट चोर दूत मतवारे, तिन संसदा बसेरा। काम क्रोध माया मद मत्सर, ए संपै मोह माही, दया धर्म यार गुर की सेवा, ए सुपनंतर नाही। दीन दयाल कृपाल दमोदर, भगत वछर पैहारी, कहत कबीर पीर जन राखो, हर सेवा करो तुम्हारी। जेह सिमरन होए मुक्त द्वार, जाहे बैकुंठ नहीं संसार, निरपौ कै कर बजावै तूर, अनहद बजै सदा भरपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे, बिन सिमरन मुक्त कत नाहे रहाओ। जे सिमरन नाही नरकार, मुक्त करै उतरै बो पार, नमस्कार कर हृदय माहे, फिर तेरा आवन नाहे। जे सिमरन करै तू केल, दीपक बांध धरियो बिन तेल, सो दीपक अमरक संसार, काम क्रोध बे काढ़ी ले मार। जे सिमरन तेरी गत होए, सो सिमरन रख कंठ पर होए, सो सिमरन कर नहीं राखो तार, गुर प्रसादी उतरै पार। जेह सिमरन नाही तोहे कान, मंदर सोवै पटंबर तान, से सुखाली बिकसै जियो, सो सिमरन तू आंदन पियो। जे सिमरन तेरी जाए बलाए, जे सिमरन तुझ पोहै नाम आए, सिमर सिमर हर हर मन गाइयै, एहो सिमरन सतगुर ते पाइयै। सदा सदा सिमर दिन रात, उठत बैठत सास ग्रास, जाग सोए सिमरन रस भोग, हर सिमरन पाइयै संजोग। जे सिमरन नाही तुझ पार, सो सिमरन राम नाम आधार, कहे कबीर जाका नहीं अंत, तिसके आगे तंत न मंत। राम करी कर दूजा, बाणी कबीर जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद बंद च बंधन पाया, मुक्ते गुर अनल बुझाया। जब नख सिख एहो मन चीना, तब अंतर मज्जन कीना, पवन पत ओन मानो रहन खरा, नहीं मृत ना जन्म जरा रहाओ। उल्टी ले सख्त सहारंग, पैसी ले गगन मझारंग, बेदी अले चक्र पयंगा, पेटी अले राय नसंगा, चूकी अले मोह मयासा, सस कीनो सूर गिरासा, जब कुंभक भरपुर लीणा, तह बाजे अनहद बीणा। बगतै बग शब्द सुनाया, सुनतै सुन मन बसाया, कर करता उतर सपारंग, कह कबीरा सारंग। चंद सूरज दोय जो स्वरूप, ज्योति अंतर ब्रह्म अनूप, कर रे ज्ञानी ब्रह्म विचार, ज्योति अंतर धरिया पसार रहाओ।
हीरा देख हीरे करो आदेश, कह कबीर निरंजना लेख। दुनिया होशियार बेदार जागत, मुसीयत हौरे भाई। निगम होशियार पहरुआ, देखत जम ले जाई रहाओ। नीम पयो आंब, आंब पयो नीम्बा, केला पाका चार। नालियेर फल से बरपाका, मूर्ख मुग्ध गवार। हर पयो खांड, रेत में बिखरियो, हस्ती चुन्यो ना जाई। कह कमीर कुल जात पाता, जो चीटी होए चुन खाई। बाणी नाम देव जियो की, राम कली कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद आनी ले कागद, काटी ले गुडी, आकाश मदे भरमी अले। पंच जना सो बात बतौआ, चीत सो डोरी राखी अले। मन राम नामा बेदी अले, जैसे कनक कला चित मांडी अले रहाओ। आनी ले कुंभ, भराई ले उदक, राजकुमार पुरंदरीये। हस्त बिनोद विचार करती है, चीत सो गागर राखी अले। मंदिर एक द्वार दस जाके, गऊ चरावन छाडी अले। पांच कोस पर गऊ चरावत, चीत सो बछरा राखी अले। कहत नाम देव सुनो तिलोचन, बालक पालन पौडी अले। अंतर बाहर काज विरोधी, चीत सो बारक राखी अले। वेद पुराण शास्त्र अनंता, गीत कवित ना गावो गो। अखंड मंडल निरंकार में, अनहद वेद मजाओ गो। बैरागी राम गावो गो, शब्दातीता नहद राता, या कुल कहकर जाओ गो रहाओ। एड़ा पिंगला और सुख मना, पौने बंद रहाओ गो। चांद सूरज दो समकर राखो, ब्रह्म ज्योत मिल जाओ गो। तीर्थ देखना जल में पैसो, जी जंत ना सतावो गो। आठ साठ तीर्थ गुरु दिखाए, कठी पीतर नाओ गो। पंच सहाई जन की शोभा, पलो पलो ना कहावो गो। नामा कह चित हर स्यों राता, सुन समाध समा।

पानी पवन मिलाया, शास्त्र ना होता वेद ना होता, कर्म कहां ते आया। खेचर पूचर तुलसी माला, गुर प्रसादी पाया, नामा प्रणवै परम तत् है, सतगुरु होए लिखाया। आराम कली कर दूजा, बनारसी तप करै, उल्ट तीर्थ मरै, अग्न दह काया कल्प की जय। असमेध जग की जय, सोना गर्भ दान दी जय। राम नाम सर तऊ न पूजै, छोड़ छोड़ रे पाखंडी, मन कपट ना की जय। हर का नाम नित नित ली जय रहाओ। गंगा जौ गोदावर जाइए, कुंभ जौ केदार नाइए, गोमती सहस गौ दान की जय। कोट जौ तीर्थ करै, तन जौ हिवाले गारै, राम नाम सर तऊ न पूजै। अस दान गज दान, सहजा नारी भूम दान, ऐसो दान नित नित की जय। आत्म जाओ निर्म

निर्मल निर्वाण पद चीन लीजै। जथ रथ राय नंद राजा मेरा रामचंद, प्रणव नामा तत रस अमृत पीजै। राम कली बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपौ पाओ न दर्श। लोहा कंचन हिरन होए कैसे, जौ पारस नाम परस। देव संसय गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर। इन पंचों मिल लूटे रहाओ, हम बड कब कुलीन हम पंडित। हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एह बुद्ध कबै ना नासी। कहो रविदास समय सबै नहीं समझस, भूल परे जैसे बौरे। मोहे आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे। राम कली बाणी बेणी जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एड़ा पिंगलाय और सुख मना, तीन बसाय कठाई। बेणी संगम तह पिराग, मन मज्जन करे तिथाई। संतो तहां निरंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोए। तहां निरंजन रमैया होए रहाओ, देव स्थान क्या निशानी। तह बाजे शब्दा नाहद बाणी, तह चंदना सूरज पौन ना पानी। साखी जागी गुरमुख जानी, उपजै ज्ञान दुरमत शीजै। अमृत रस गगन अंतर पीजै, एस कला जो जाने पे ओ। पेटे तास परम गुरदेओ, दसम द्वारा अगम अपारा। परम पुरख की घाटी, ऊपर हाट हाट पर आला। आले पीतर थाती, जागत रह सो कवो ना सोवै। तीन तलोक समाद पलोवै, बीज मंत्र लै हृदय रह। मनुआ उल्ट सुन महंग है, जागत रह ना अलिया पाख। पांचों इंद्री बस कर रख, गुर की साखी राख चीत। मन तन अर्पै कृष्ण प्रीत, कर पल्लव साखा बिचारे। अपना जन्म ना जुए हारे, असर नदी का बंद है मूल। पच्छम फेर चढ़ावे सूर, अजर जर है सो निजर चर। जगन्नाथ्यो गोष्ठ करे, चौमुख दीवा जो द्वार। पलुवंत मूल बिचकार, सर्व कलाले आपे रह। मन मान करत नाम है गुह, मस्तक पद्म द्वाले मणि। माहे निरंजन त्रिपवन धनी, पंचे शब्द निर्मायल बाजे। टुलके चवर शंख कान गाजे, दल मल दैतो गुरमुख ज्ञान। बेणी जाचे तेरा नाम, राग नट नारायण।

नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मुरारे संत जना की रेन मन पाई मिल हर जन हर निस्तारे ग्राम ग्राम नगर सब फिरया हृदय अंतर हर जन पारे सरदा सरदा उपाय मिलाए मोको हर गुर गुर निस्तारे पवन सूत सब नीका करया सतगुर शब्द विचारे निज कर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारे तौ गुण ईस वर्ण नहीं सको तुम मंदर हम निक कीरे नानक कृपा।

मेर सुमेर मोर बहु नाचे, जब उनवे कहनु कन्हारे। साकत कौ अमृत बहु सिंचौ, सब डाल फूल बिस्कारे। ज्यो ज्यो निवै साकत नर सेती, शेड़ शेड़ कड्डै बिख खारे। संतन संत साध मिल रही है, गुण बोलै पर उपकारे। संत संत मिलै मन बिकसै, जो जल मिल कमल सवारे। लोभ लहर सब स्वान हल्क है, हल्क्यो सब बिगारे। मेरे ठाकर कै दीबान खबर होई, गुर ज्ञान खड़गले मारे। राख राख राख प्रा मेरे, मैं राखो कृपा तारे। नानक मैं तारे अवर ना काई, मैं सतगुर गुर निस्तारे। शक्का एक

अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया हर अगम अगम अगाध बोध आदेश हर प्रबराया रहाओ काम क्रोध लो मोह निर्चगर ते चगराया हम राख राख दीन तेरे हर सरन हर प्रभ आया शरणागति प्रद प्रभ पालते हर भगत वच्छल नाया प्रहलाद जन हर नाख पकड़िया हर लाख ली उतराया हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन राया पौ जन मर निवार ठाकर हर गुरमति प्रभ पाया हर पतत पावन नाम स्वामी पौ भगत पंजन गाया हर हार हर उतारियो जन नानक नाम समाया माली गौड़ा महला चौथा जप मन राम नाम सुखदाता सतसंगत मिल हर साध आया गुरमुख ब्रह्म पिछाता रहाओ वडभागी गुर दर्शन पाया गुर मिले हर प्रभ जाता दुरमत मैल गई सब नीकर हर अमृत हर सरनाता तन तन साध जिनी हर प्रभ पाया तिन पूछो हर की बाता पाए लगो नित करो जुदरिया हर मेलो कर्म विधाता लिलाट लिखे पाया गुर साधु गुर बचनी मंतन राता हर प्रभ आए मिले सुख पाया सब किल विख पाप गवाता राम रसायन।

और कही हर अगम अगम अगाध तुही ऊच मूचो बहवा पार सिमरत नानक तरे सार माली गौड़ा महला पंजवा इही हमारे सफल काज अपने दास को लेहो निवाज रहाओ चरण संतै माथ मोर नैन दर्श पेखो निस्पोर हस्त हमरे संत टहल प्राण मन तन संत बहल संत संग मेरे मन की प्रीत संत गुण बसै मेरे चीत संत आग्या मन है मीठ मेरा कमल बिकसै संत डीठ संत संग मेरा होए निवास संतन की मोह बहुत प्यास संत बचन मेरे मन है मंत संत प्रसाद मेरे बिखै हंत मुकत जुगत एहा निधान प्रभ दयाल मोहे देवो दान नानक कहो प्रभ

तौ दीवाना जानिए जा एकाकार कमाए, हुक्म पछाणे खसम का दूजी अवर सियाण पकाए। तौ दीवाना जानिए जा साहिब तरे प्यार, मंदा जाने आप कहो अवर भला संसार। मारू महला पहला, एहो तन सरबरया भरपूर, मनुख फिर से जाने दूर। सो तन वखर नाम हृदय हमारा, जिस तू दे

आए इस तन की देखो वड्याई सहजे माते अन दिन जाई एक बात अनूप सुनो नर पाई इस तन बिन कहो किने परम गत पाई भणत नानक वा कथ की कथा सुनाए सतगुर मिले ता इहो तन पाए मारू महला पहला सूर सर सोस लै सोम सर पोख लै जुगत कर मरत सो संबंध की जय मीन की चपल स्यो जुगत मन राखी है उड़ै न हंस न कंध छीजै मूड़े काए च परम पुला नहीं चीनिया परमानंद बैरागी रहाओ अजर गहो जार लै अमर गहो मार लै परात तद छोड़ तो प्यो पीजै मीन की चपल स्यो जुगत मन राखी है उड़ै न हंस न कंध छीजै भणत नानक जनो रवै जे हर मनो मन पवन स्यो अमृत पीजै मीन की चपल स्यो जुगत मन राखी है उड़ै न हंस न कंध छीजै मारू महला पहला माया मुई ना मन मुआ सर लहरी मैं मत बोइथ जल सिर तर टिकै साचा वखर जित माणक मन मैं मन मारसी सच न लागै कत राजा तख्त टिकै गुणी पै पंचायन रत बाबा साचा साहिब दूर ना देख सर्ब जोत जग जीवना सिर सिर साचा लेख रहाओ ब्रह्मा विष्णु रिखि मुनि शंकर इंद तपै पेखारी मन हुक्म सोहै दर साचै आकी मरया फारी जंगम जोत जति सन्यासी गुरपुरै विचारी बिन सेवा फल कवो ना पावस सेवा करनी सारी ने तनिया तन निगुरिया गुर निमाणिया तू मान अंदलै माणक गुर पकड़िया नितानिया तू तान होम जपा नहीं जानिया गुरमत्ती साच पछाण ना बिना नाही दर टोई झूठा आवन जान साचा नाम सलाही है साचे ते तृप्त होए ज्ञान रतन मन मांझी है बौन न मैला होए जब लग साहेब मन वसै तब लग बिगना होए नानक सिर दे छुट्टी है मन तन साचा सोए मारू महला पहला जोगी जुगत नाम निरमायल ता कै मैल न राती प्रीतम नाथ सदा सच संगे जन्म मरण गत बीती गुसाई तेरा कहा नाम कैसे जाती जातो पीतर महल बुलावै पूछो बात निरंती रहाओ ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान इशनानी हर गुण पूजे पाती एको नाम एक नारायण त्रिपवन एका ज्योति जिहवा डंडी एहो कट शाबा तोलो नाम या जाची एको हाट साहो सबना सिर वन जारे एक पाती दो वै सिरे सतगुरु निबेड़े सो बूजै जिस एक लिव लागी जियो रहे निपराती शब्द वसाए परम चुकाए सदा सेवक दिन राती ऊपर गगन गगन पर गोरख ता का अगम गुरु पुनवासी गुरबचनी बाहर करे को नानक पया उदासी राग मारू महला पहला कर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अहन सजागै नींद ना सोवै सो जाने जिस वेदन होवै प्रेम के कान लगे तन पीतर वैद के जाने कारी जियो जिसनो साचा सिफती लाए गुरमुख विरले किसै बुझाए अमृत की सार सोई जाने जे अमृत का वापारी जियो रहाओ पिर सेती तन प्रेम रचाए गुर कै शब्द तथा चित लाए सहज सेती तन खरी सुखेली तृष्णा तिखा निवारी जियो सहसा तोड़े परम चुकाए सहजे सिफती तनख चढ़ाए
ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਾਰੈ ਮਨ ਮਾਰੇ, ਸੁੰਦਰ ਜੋਗਾ ਤਾਰੀ ਜੀਓ। ਹਉ ਮੈਂ ਜਲਿਆ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਜੰਪਰ ਵਜੈ ਖੜਗ ਕਰਾਰੇ, ਅਬ ਕਹਿ

जप हर हर नाम छड़ावै जियो रहाओ सुख सागर अमृत हर नाओ मंगत जन जाचै हर देहो पसाओ हर सत सत सदा हर सत मेरे मन भावै जियो नवें छिद्र स्रवै अपवित्रा बोल हर नाम पवित्र सब किता जे हर सो प्रसन्न होवै मेरा स्वामी हर सिमरत मन लै जावै जियो माया मोह।

तू सर्वत्र तेरा सब कोई, जो तू करे सोई प्रभ होई। जन नानक गुण गावे बेचारा, हर पावे हर थाए पावे जियो। मारू महला चौथा, हर हर नाम जपो मन मेरे, सब किलबिख काटे हर तेरे। हर तन राखो हर तन संचो, हर चलद्या नाल सिखाई जियो। जिसनों कृपा करे सो त्यावै, नित हर जप जापै जप हर सुख पावै। गुरप्रसादी हर रस आवै, जप हर हर पार लंघाई जियो। रहाओ निरपो निरंकार सतनाम, जग में सृष्टि उत्तम काम। दुश्मन दूत जमकाल ठेहे मारो, हर सेवक नेड़ न जाई जियो। जिस उपर हर का मन मानिया, सो सेवक चहो जोगो चहो कुंट जानिया।

गुरमंत्र अवखद नाम दीना, जन नानक संकट जोन ना पाए। हरे नर इन बिद पार पराए, त्याय हर जी होए मृतक, त्याग दूजा पाओ। रहाओ दूजा मारू महला पंजवा, बाहर टूंडन ते छूट परे, गुर घर ही माए दिखाया था। अनपव अचरज रूप प्रपेखिया, मेरा मन छोड़ न कथू जाया था। मानक पायो रे पायो, हर पूरा पाया था। मोलिया मोल न पाया जाई, कर कृपा गुरु देवाया था। रहाओ आदिष्टा गोचर पार ब्रह्म, मेरा साधु कथ कथाया था। अनहद शब्द दसम द्वार वजयो, तह अमृत नाम चुआया था। तोट नाही मंत्रशना बूजी, अखुट भंडार समाया था। चरण चरण चरण गुरसेवे, अगड़ घड़ियो रस पाया था। सहजे आवा सहजे जावा, सहजे मन खे लाया था। कहो नानक परम गुर खोया, ता हर महली महल पाया था। मारू महला पंजवा, जिसे साज निवाजिया, तिसे स्यो रुचना है। आन रुती आन बोई है, फल ना फूलैता है। हरे मन वत्र बीजन नाओ, बोए खेती लाए मनुआ, पलो समो सुवाओ। रहाओ खोए खेड़ा परम मन का, सदगुर सरनी जाए। कर्म जिसको तुरो लिखिया, सोई कार कमाए। पाओ लागा गोबिंद स्यों, काल पाई थाए। खेत मेरे जमया, निखुट न कबहू जाए। पाया अमोल पदार्थो, छोड़ न कतहू जाए। कहो नानक सुख पाया, तृप्त रहे आ गाए। मारू महला पंजवा, फूटो

राम नाम मंतन आधारा, जो सिमरत उसका निस्तारा रहाओ। मिथ्या वस्तु सत कर मानी, हित लायो सठ मूड अज्ञानी। काम क्रोध लोभ मदमाता, कौडी बदले जन्म गवाता। अपना छोड़ पर आया राता, माया मद मंतन संग जाता। त्रिशन ना बूझे करत कलोला, ऊनी आस मिथ्या सब बोला। आवत अकेला जात अकेला, हम तुम संग झूठे सब बोला। पाए ठगौरी आप लायो, नानक कीर्तना जाए मिटायो। पस पंखी पूत अर्प्रेता, बबे जोनी फिरत्या नेता। जै जानो तै रह न पावे, थान बिहून उठ उठ फिरतावे। मन तन बासना बहुत विस्तारा, अहमेव मूठो बेचारा। अनक दोख अर बहुत सजाई, ताकि कीमत कहन न जाई। प्रभ बिसरत नरक में पाया, तै मात ना बंद ना मीत ना जाया। जिसको होत कृपाल स्वामी, सोजन नानक पार ग्रामी। प्रहमत प्रहमत प्रभ सरणी आया, दीना नाथ जगत पित माया। प्रभ दयाल दुख दर्द विदारण, जिस पावे तिस ही निस्तारण। अंधकूप ते कड नहारा, प्रेम भगत होवत निस्तारा। साध रूप अपना तन तारिया, महा अगन ते आप उबारिया। जप तप संजम इस्ते किश नाही, आदि अंत प्रभ अगमा गाही। नाम देह मांगे दास तेरा, हर जीवन पद नानक प्रभ मेरा। मारू महला पंजवा, कत कौ डहकाव लोगा। मोहन दीन कृपाई, ऐसी जान पाई। सरण सूरो गुरदाता, राखे आप वडाई रहाओ। भगता का आज्ञाकारी, सदा सदा सुखदाई। अपने कौ कृपा करियो, एक नाम ते आई। नानक दीन नाम मांगे, द्वितीया परम चुकाई। मारू महला पंजवा, मेरा ठाकर अत पारा। मोहे सेवक बेचारा, मोहन लाल मेरा प्रीत मन प्राणा। मोको देहो दाना रहाओ। सगले मैं देखे जोई, बीजो अवर ना कोई। जियन प्रतपाल समाहे, है हुसी आहे। दया मोहे की जय देवा, नानक लागो सेवा। मारू महला पंजवा, पातत उदाहरण तारण। बल बल बले बल जाइए, ऐसा कोई पेटे संत। जित हर हरे हर त्याईए, मोको कोई ना जानत। कहियत दास तुम्हारा, एहा ओटा धारा रहाओ। सर्व तारण प्रतपारण, एक बिना दीना। तुमरी बिद तुम ही जानो, तुम जल हमीना। पूर्ण बिस्थिरन स्वामी, आहे आयो पाछ। सगलो पूमंडल खंडल, प्रभ तुम ही अच्छ। अटाला खयो देवा, मोहन अलख अपारा। दान पावो संता संग, नानक रेण दा सारा। मारू महला पंजवा, त्रिपत गाए संता। गुर जाने जनमंता, ताकि किश कहण ना जाई। जा को नाम बढ़ाई, लाल अमोला लालो। अगया तो लाना मो रहाओ। अवगत स्यों मान्या मानो।

पूर्ण अतृप त्याग आए, सहज समाद सुभाए, हर भंडार हाथ आया, नानक गुरते पाया। मारू महला पंजवा, कर छेवा दो पदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद छोड़ सगल सियाण पा, मिलसा त्याग गुमान, अवर सब किश मिथिया।

रहाओ। दुख दीना पौ व्यापै मिलै सुख विश्राम, गुर प्रसाद नानक बखानै हर भजन तत् ज्ञान। मारू महला पंजवा, जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे खे।

साध संगत गुण उचारण हर नाम अमृत पाथ करो कृपा मुरार माधव सुन नानक जी वै गाथ मारू अंजलि महला पंजवा कर सतवा एको अंकार सतगुर प्रसाद संजोग विजोग तुरों ही हुआ पंच तात कर पुतला किया साहे कै फुरमायड़ जी देही विच जियो आए पया जिथै अगन पखे पड़हारे ऊर्द मुख मह गोबारे सास सास माले सोई उथै खसम छडाए लया विचों गरबै निकल आया खसम सार दुनी चितलाया आवै जाए पवाई है जोनी रहना किथी थाए पया मेहरवान रख लयन आपे जी जंत सब तिसके थापे जन पदार्थ जिन चलिया नानक आया सो परवान थिया मारू महला पंजवा वैदो ना वाई पहनो ना पाई एको सहाई राम है कीता जिसो होवै पापा मलो धोवै सो सिमरो प्रधान है कटकटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जा का थान है आवै ना जावै संगे समावै पूर्ण जा का काम है भगत जना कौ राखण हारा संत जीवै जब प्राण आधारा करण कारण समर्थ स्वामी नानक तिस कुर्बान है एक ओवंकार सतगुर प्रसाद मारू महला नावा हर को नाम सदा सुखदाई जा कौ सिमर अजा मल उदरियो गन का हूं गत पाई रहाओ पंचाली कौ राज सभा में राम नाम सुदयाई ताको दुख हरियो करना मैं अपनी पैज बढ़ाई जेह नर जस कृपा निध गायो ताको पयो सहाई कहो नानक मैं ही परोसै गई आन सरनाई मारू महला नावा अब मैं कहां करो री माई सगल जन्म बिख्यान स्यों खोया सिमरियो नाहे कनाई रहाओ काल फास जब घर मैं मिली तेह सुध सब बिसराई राम नाम बिन या संकट में को अब होत सहाई जो संपत अपनी कर मानी छन में पई पराई कहो नानक यह सोच रही मन हर जस कब हूं ना गाई मारू महला नावा माई मैं मन को मान ना त्यागो माया के मद जन्म सिरायो राम भजन नहीं लागो रहाओ जम को डंड परयो सिर उपर तब सुब तै जागो कहा हो तो अब कै पछताए छूट तो नाहन पागो एह चिंता उपजी घट मैं जब गुर चरणन अनरागो सुफल जन्म नानक तब हुआ जाओ प्रभ जस

सोई सोहेला पालिया। ग्रह राज में नरको दास करोदा, बहुविध वेद पाठ सब सोदा। देही मैं जो रह अलिपता, तिस जन की पूर्ण कहली है। जागत सूता परम विगुता, बिन गुर मुक्त ना होई है मीता। साध संग तुटे हो बंधन, एको एक निहाली है। कर्म करे ता बंदा, नह करे ता निंदा। मोह मगन मन व्याप्या चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख समझाने। घट घट राम हाली है, संसार में सहसा व्यापै। अकथ कथा गोचर नहीं जापै, जिसे बुझाए सोई बूझै। ओह बालक वांगी पाली है, छोड़ बह तो छूटै नाही। जो सिंचै तो पौ मन माही। इस ही मह जिसकी पत राखै, तिस साधु चौर ढाली है। जो सूरा तिस ही होए मरना, जो भागै तिस जोनी फिरना। जो वरताए सोई पल मानै, बुझ हुक्मै दुरमत जाली है। जित जित लावै तित तित लगना, कर कर वेखै अपने जचना। नानके पूर्ण सुखदा ते, तू देहता नाम समाली है। मारू महला पंजवां, बिरखै हेठ सब जंत इकट्ठे। एक तत्ते एक बोलन मिठे। अस्त्या दोत भया उठ चले, ज्यों ज्यों औध विहानियां। पाप करेंदण सर पर मुठे, अजरा ईल फड़े फड़ कुठे। दोजग पाए सृजनहार, लेखा मंगै बाणियां। संग न कोई भैया बेबा, माल जोबन धन छोड़ वंजेसा। करण करीम न जातो करता, तिल पीड़े जो कहानियां। खुश खुश लैंदा वस्त पराई, वेखै सुने तेरे नाल खुदाई। दुनिया लभ पया खात अंदर, अगली गल न जानिया। जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देस लम्मे। जिन कीता तिसे न जानी, अंधा तां दुख सह प्राणिया। खालक थावो पुला मुठा, दुनिया खेल बुरा रुठ तुठा। सिदक सबूरी संतन मिलियो, वत्ते अपन पाणिया। मौला खेल करे सब आपे, एक अड्डे कलैर वे आपे। ज्यों नचाए त्यों त्यों नचन, सिर सिर किरत विहाणिया। मेहर करे ता खसम ते आई, संता संगत नरक ना पाई। अमृत नाम दान नानक कहो, गुण गीता नित वखाणिया। मारू सोल हे महला पहला, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। साचा सच सोई अवर ना कोई, जिन सिर जीत नहीं फुन गोई। जो पावे त्यो राखो रहना, तुम स्यों क्या मुकराई है। आप यो पाए

आपे पौन पानी बेसंतर आपे मेल मिलाई है, आपे सस सूरा पूरो पूरा आपे ज्ञान त्यान गुरसूरा, काल जाल जम जो है ना साकै साचे सुन लिवलाई है, आपे पुरख आपे ही नारी आपे पासा आपे सारी, आपे पिड़ बांधी जा खेल आपे कीमत पाई है, आपे पवर फुल फल तारवर आपे जल थल सागर सरवर, आपे मशकश करनी कर तेरा रूप ना लखना जाई है, आपे दिनस आपे ही रैनी आप तीजे गुर की बैनी, आद जुगाद अनाहद अंदनो कट कट शब्द रजाई है, आपे रतना नूपा मोलो आपे परखे पूरा तोलो, आपे किस ही कस बख्से आपे दे लै पाई है, आपे तनख आपे सरबाणा आपे सुगण स्वरूप सियाणा, कहता बगता सुनता सोई आपे बणत बनाई है, पौन गुरु पाणी पित जाता उधर संजोगी धरती माता, रैन दिन सदोए दाई दाया जाखे लैखे लाई है, आपे मछली आपे जाला आपे गऊ आपे रखवाला, सर्ब जिया जग जो तुम्हारी जैसी प्रभ फरमाई है, आपे जोगी आपे भोगी आपे रसिया परम संजोगी, आपे वे बाणी निरंकारी निरपव ताड़ी लाई है, खाणी बाणी तुझे समाणी जो दिस सब आवन जानी, सही साह सचे व्यापारी सदगुर बूझ बुझाई है, शब्द बुझाए सदगुर पूरा सर्व कला साचे परपूरा, अफरियो वे प्रवाहो सदा तू ना तिस दिल ना तुमाई है, काल बिकाल पए देवाने शब्द सहज रस अंतर माने, आपे मुक्त तृप्त वरदाता भगत पाए मन पाई है, आप निरालम गुरगम ज्ञाना जो दिसै तुझ माहे समाना,

जुग जुग संत भले प्रभ तेरे, हर गुण गावै रसन रसेरे। उस्तत कर है पर हर दुख दाल दो, जे नाही चिंत पराई है। ओए जागत रह न सुते दिसै, संगत कुल तारे सच परिसै। काल माल मैल नाही ते निर्मल, ओए रह भगत लिव लाई है। बूझो हर जन सतगुर बाणी, एहो जोबन सास है देह पुराणी। आज काल मर जाइए प्राणी, हर जप जप हृदय ते आई है। छोड़ो प्राणी कूड़ कबाड़ा, कूड़ मारे काल उशाहाड़ा। सागत कूड़ पचे मन हमे, दोह मार्ग पचे पचाई है। छोड़ो निंदा तात पराई, पड़ पड़ दजे सांत न आई। मिल सत संगत नाम सलाहो, आत्म राम सखाई है। छोड़ो काम क्रोध बुरियाई, हमे तंद छोड़ो लंपटाई। सतगुर सरण परो ता उबरो, यों तरिया पवजल पाई है। आगे बिमल नदी अगन बिख झेला, तिथे अवरना कोई जियो अकेला। पाड़ पाड़ अगन सागर दे लहरी, पड़दजे मनमुखताई है। गुर पै मुक्त दान दे भाणे, जिन पाया सोई बिद जाने। जिन पाया तिन पूछो पाई, सुख सतगुर सेव कमाई है। गुरबिन उर्ज मरे बेकारा, जम सिर मारे करे खुवारा। बांदे मुक्त नाही नर निंदक, डूबे निंद पराई है। बोलो साच पछाणो अंदर, दूर नाही देखो कर निंदर। बिगड़ नाही गुरमुख तरतारी, ओं भवजल पार लंघाई है। देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अबनासी। ना जियो मरे ना मारिया जाई, कर देखे शब्द रजाई है। ओ निर्मल है नाही अंधियारा, ओह आपे तख्त बह सचियारा। सागत कूड़े बंद पवाई है, मर जन्मे आई जाई है। गुर के सेवक सतगुर प्यारे, ओए बैसे तख्त सो शब्द विचारे। तत्ल है अंतर्गत जाने, सतसंगत साच वडाई है। आप तरह जन पितरा तारे, संगत मुखसो पारो तारे। नानक तिसका लाला गोला, जिन गुरमुख हर लिव लाई है। मारू महला पहला, केते जुगवर ते गोबार है। ताड़ी लाई अप्रयापार है, तुंदुकार निरालुम बैठा। ना तद तंद पसारा है, जुग शक्ति तिन्ने वरताए। जो तस्पाणा तवे चलाए, तिसै शरीक न दिसै कोई। आपे अप्रयापारा है, गुप्ते बुझो जुग चतवारे। घट घट वरतै उधर मझारे, जुग जुग एका एकी वरतै। कोई बुझे गुर विचारा है, बिंद रगत मिल पिंड सरिया। पौन पानी अग्नि मिल जिया, आपे चोज करे रंग महली। होर माया मोह पसारा है, गर्भ कुंडल में उर्द ध्यानी। आपे जाने अंतर जामी, सास सास सचनाम संभाले। अंतर उधर मझारा है, चार पदार्थ लै जग आया। शिव शक्ति कर वासा पाया, एक विसारे ता पिड़हारे। अंधले नाम विसारा है, बालक मरे बालक की लीला। कह कह रोवे बाल रंगीला, जिसका सा सो तिन ही लिया। पूला रोवन हारा है, पर जोबन मर जाहे के की जय। मेरा मेरा कर रोवी जय, माया कारण रोए वे गुचै। त्रिग जीवन संसारा है, काली हूं फुन तो ले आए। विन्ना में गथ गया गवाए, दुर्मत अंधला बिनस बिनासै। मूठे रोए पुकारा है, आप विचार न रोवे कोई। सतगुर मिलैता सोजी होई, बिन गुर बजर कपाट ना खुले। शब्द मिलै निस्तारा है, बिरद भया तन शीजै देही। राम न जपई अंत स्नेही, नाम विसार चले मोहे कालै। दरगह झूठ खुवारा है, नाम विसार चले कूड़ियारो। आवत जात पड़े सिरशारो, साहुर डैकर वास ना पाए। पेयड़ सिर मारा है, खाजै पैजै रली करीजै। बिनया भगती बाद मरीजै, सर अवसर।

जो जन्मे ते सर पर मरना किरत पया सिर साहा है। संयोग वियोग मेरे प्रभ की है, सृष्टि उपाय दुखा सुख दिए। दुख सुख ही ते पय निराले, गुरमुख सिर सनाहा है। नीके साचे केवा पारी, ससौ दल गुर विचारी। सच्चा वखर जिस तन पलै, सब सच्चै ओ महा है। काची सौंदी तोटा आवै, गुरमुख वणज करे प्रभ भावै। पूंजी साबत रास सलामत, चूका जमका फाहा है। सबको बोलै अपन भाणै, मनमुख दूजे बोल न जाणै। अंदले कीमत अंदली बोली, आए गया दुखता है। दुख में जन्म

मनमुख निंदा कर कर विगुत्ता, अंतर लोभ पौकै जस कुत्ता, जम काल तिस कदे ना छोड़ै, अंत गया पछताई हे। सच्चै शब्द सच्ची पत होई, बिन नावै मुक्त ना पावै कोई, बिन सतगुर को नाव ना पाए, प्रभ ऐसी बणत बनाई है। एक सिद्ध साधक बहुत विचारी, एक अहनस नाम रते निरंकारी, जिसनो आप मिलाए सो बूझै, भगत पाए पहु जाई है। इस नाम दान करै नहीं बूझै, एक मनुआ मार मन ऐसो लूझै, साचै शब्द रते एक रंगी, साचै शब्द मिलाई है। आपे सिरजे दे वड़ियाई, आपे पाणे दे मिलाई, आपे नजर करे मन वसिया, मेरा प्रभ इउं फरमाई है। सतगुर सेवै ऐसे जन साचे, मनमुख सेवना जान नकाचे, आपे करता कर कर वेखै, ज्यो भावै त्यों लाई है। जुग जुग साचा एको दाता, पूरे भाग गुर शब्द पछाता, शब्द मिले से विछड़ै नाही, नदरी सहज मिलाई है। हम मैं माया मैल कमाया, मर मर जमै दूजा पाया, बिर सतगुर सेवे मुक्त ना होई, मन देखो लिवलाई है। जो तिस पावै सोई करसी, आपो होवा ना किश होसी, नानक नाम मिलै वड़ियाई, दरसा चै पत पाई है। मारू महला तीजा, जो आया सो सब को जासी, दूजे पाए बादा झमफासी, सतगुर राखे से जन उबरे, साचे साज समाई है। आपे करता कर कर वेखै, जिसनो नदर करे सोई जन लेखै, गुरमुख ज्ञान ते सबके सूजै, अज्ञानी अंध कमाई है। मनमुख सहसा बूझ ना पाई, मर मर जमै जन्म गवाई, गुरमुख नाम रते सुख पाया, सहजे साज समाई है। तंदै तावत मन भया मनूरा, फिर होवै कंचन पेटै गुरपूरा, आपे बख्श लए सुख पाए, पूरे शब्द मिलाई है। दुरमत झूठी बुरी बुरियार, औगणयारी औगणयार, कच्ची मत फीका मुख बोलै, दुरमत नाम ना पाई है। औगणयारी कंत ना पावै, मन की झूठी झूठ कमावै, पिरका सौ न जाणै मूर्ख, बिन गुर बूझ ना पाई है। दुरमत खोटी खोट कमावै, सिंगार करे फिर खसम ना पावै, गुणवंती सदा पिर रावै, सतगुर मेल मिलाई है। आपे हुक्म करे सब वेखै, इक ना बख्श लए तुर लेखै, आन दिन नाम रते सच पाया, आपे मेल मिलाई है। हम मैं तात मोह रस लाई, गुरमुख लिव साची सहज समाई, आपे मेले आपे कर वेखै, बिन सतगुर बूझ ना पाई है। एक शब्द विचार हो सदा जन जागे, एक माया मोहे सोए रहे अपागे, आपे करे कराए आपे, होर करना किछु ना जाई है। काल मार गुर शब्द निवारे, हर का नाम रखै उर तारे, सतगुर सेवा ते सुख पाया, हर कै नाम समाई है। दूजे पाए फिर देवानी, माया मोहे दुख माए समानी, बहुते पेख करे न पाए, बिन सतगुर सुख ना पाई है। किसनो कहिए जा आप कराए, जित पावै तित राहे चलाए, आपे मेहरवान सुखदाता, जो पावै तवै चलाई है। आपे करता आपे भुगता, आपे संजम आपे जुगता, आपे निर्मल मेहरवान मधसूदन, जिसदा हुक्म ना मेटिया जाई है। सेवड़ पागी जिनी एको जाता, घट घट वस रहा जग जीवन दाता, एक थै गुप्त प्रगट है आपे, गुरमुख परम पौ जाई है। गुरमुख हर जियो एको जाता, अंतर नाम शब्द पछाता, जिस तू देहे सोई जन पाए, नानक नाम वडाई है। मारू महला तीजा, सच सा लाही गैर गंभीर है, सब जग

बिन नावै डूब मोए बिन नीरा। साचा पूरे सतगुर बूझ बुझाई, नामे राता पवित शरीरा। बिन नावै डूब मोए बिन नीरा, आवै जावै नाम नहीं बूझै। एक ना गुरमुख शब्द पछाता है, पूरे सतगुर बूझ बुझाई। बिन नावै मुक्त के नै ना पाई, नामे नाम मिले वडियाई। सहज रह रंग राता है, काया नगर टह टह टेरी। बिन शब्द चूके नहीं फेरी, साच सलाहे साच समावै। जिन गुरमुख एको जाता है, जिसनो नजर करे सो पाए। साचा शब्द वसै मन आए, नानक नाम रते निरंकारी। दर साचे साच पछाता है, मारू सोल है तीजा। आपे करता सब जिस करना, जी जंत सब तेरी सरना। आपे गुप्त वरतै सब यंत्र, गुर कै शब्द पछाता है। हर के भगत भरे भंडारा, आपे बख्शे शब्द विचारा। जो तुद पावै सोई करसै, सच्चे सिओ मन राता है। आपे हीरा रतना, आपे हीरा रतना मोलो। आपे नदरी तोले तोलो, जी जंत सब सरन तुम्हारी। कर कृपा आप पछाता है, जिसनो नदर होवे तुर तेरी। मरे न जमे चूके फेरी, साचे गुण गावै दिन राती। जुजगु एको जाता है, माया मोहे सब जगतो पाया। ब्रह्मा विष्णु देव सवाया, जो तुद पाने से नाम लागे। ज्ञान मती पछाता है, पाप पुन वरतै संसारा। हरख सोग सब दुख है पारा, गुरमुख होवै सो सुख पाए। जिन गुरमुख नाम पछाता है, कीर्तना कोई मेटनहारा। गुर कै शब्दे मुख द्वारा, पूर्व लिखिया सो फल पाया। जिन आप मार पछाता है, माया मोहे हर स्यों चेतना लागे। दूजे पाए घणा दुखिया गै, मनमुख भरम भुले पेख तारी। अंतकाल पछताता है, हर कै पाणे हर गुण गाए। सब किलव काटे दुख सबाए, हर निर्मल निर्मल है बाणी। हर सेती मन राता है, जिसनो नजर करे सो गुण निध पाए। हम मैं मेरा ठाक रहाए, गुण अवगुण का एको दाता।

किस ही जोर दीवान माया का, मैं हर बिन टेक तारे अवर ना काई, तू करते राख मैं निमाणी है, निमाणे मान करे तुद पावे, होर केती चख चख आवे जावे, जिनका पख

गुरपुरा खिन खिन नमस्कारी, तन मन अर्प धरी सब आगै, जग मै नाम सुहावना, सो ठाकर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड दे साए सवारे, सास ग्रास माले करता कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पैर हर रख मन माही, साध संग पज अचुत स्वामी, दरगह सोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निध, सर्व कल्याण जे मन में चाहै, मिल साधु स्वामी रावणा, शास्त्र सिमरत वेद वखाणी, जन्म पदार्थ जीत पराणी, काम क्रोध निंदा पर हरिय, हर रसना नानक गावना, जिस रूप ना रेखिया कुल नहीं जाती, पूर्ण पूर्ण रहा दिन राती, जो जो जपै सोई वडभागी, बहुण जो नी पावना, जिसनो बिसरै पुरख विधाता, जलता फिरै रह नित ताता, अकिरत घणै कौ रखै ना कोई, नरक कोर मैं पावना, जियो प्राण तन तन जिन साजिया, मात गर्भ मैं राख निवाजिया, तिस स्यो प्रीत शाड अनराता, काहू सिरै ना लावना, तार अनुग्रह स्वामी मेरे, घट घट वसै सबन कै नेरे, हाथ मारै कछुए नाही, जिस जणाए तिसै जणावना, जा कै मस्तक तुर लिख पाया, तिसी पुरख ना व्यापै माया, नानक दास सदा सरनाई, दूसर लवै ना लावना, आग्या दुख सुख सब कीने, अमृत नाम बिरलहि कीने, ताकी कीमत कहन ना जाई, जत का तो ही समावना, सोई भगत सोई वरदाता, सोई पूर्ण पुरख विधाता, बाल सहाई सोई तेरा, जो तेरे मन पावना, मृत दुख सुख लिख पाए, तिल नहीं बधै कटै ना कटाए, सोई होए जे करते पावै, कह कह आप मजावना, अंधकूपते से ही काढ़े, जन्म जन्म के टूटे गांडे, कृपा तार रखे कर अपने, मिल साधु गोविंद त्यावना, तेरी कीमत कहन न जाई, अचर जरूब वड्डी वड्याई, भगत दान मंगै जन तेरा, नानक बल बल जावना, मारू वार महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

सुरत समाए, जीबर साए नी चुनड़ी रती लाल लवाए। अंदर मुस्क चकोलिया कीमत कही ना जाए पौड़ी। इस युग में नाम निदान है नामो नाल चले, एहो अखुट कदे नान खुटई खाए खर्चियो पल्ले। हर जन नेड़ ना आवई जम कंकर जम कल्ले, से सह सचेवन जा रहा जिन हर तन पल्ले। हर कृपा ते हर पाई है जा आप हर कल्ले, सलोक महला तीजा। मन मुख वापार सार ना जाननी, बिख विहाजै बिख संगरै बिख्यों तरह प्यार। बारों पंडित सदाए दे मनो मूर्ख का वार, हरसों चेतना लायनी वादी तरन प्यार। वादा किया करन कहानिया कूड़ बोल करै आहार। जग में राम नाम हर निर्मला होर मैला सब आकार। नानक नाम ना चेतनी हुए मैले मरै गवार, महला तीजा। दुख लगा बिन सेवे है हुक्म मने दुख जाए, आपे दाता सुखै दाय आपे देश जाए। नानक ए वै जानी है सब कित सैर जाए पौड़ी। हर नाम बिना जगत है निरतन, बिन नाम है तृप्त नाही। दूजे परम पुलाया हौ मैं दुख पाही, बिन कर्मा किशु ना पाई है। जे बहुत लो चाही आवे जाए जम्मे मरे, गुर शब्द छुटाही आप करे किस आखिए। दूजा को नाही सलोक महला तीजा। इस जग में संती तन खटिया, जिन्ना सतगुर मिलिया प्रभ आए। सतगुर सच दृढ़ाया इस धन की कीमत कही ना जाए। इत तन पाया भुख लथी सुख वसिया मन आए। जिन्ना कहो तुर लिखिया तिन्नी पाया आए। मन मुख जगत निरतन है माया नू बिल लाए। अंदन फिरदा सदा रह भुख न कदे जाए। सांत ना कदे आवई न सुख वसै मन आए। सदा चिंत चितवदा रह सहसा कदे ना जाए। नानक विण सतगुर मत पवी, सतगुर नो मिले ता शब्द कमाए। सदा सदा सुख में रह सच्चे महे समाए। महला तीजा जिन उपाई मेदनी सोई सार करे, एको सिमरो पाए रहो जिस बिन अवर ना कोए। खाना शब्द चंगियाईया जित खादे सदा तृप्त होए। पहनन सिफत सुनाए है सदा सदा ओ उजला, मैला कदे ना होए। सहजे सच तन खटिया थोड़ा कदे ना होए। देही नो शब्द सिंगार है जित सदा सदा सुख होए। नानक गुरमुख बुझी है जिसनो आप विखाले सोए पौड़ी। अंतर जप तप संजमो गुर शब्दी जापै, हर हर नाम ते आई है हमें अज्ञान गवापै। अंदर अमृत भरपूर है चाखिया साध जापै, जिन चाखिया से निरपौ पए से हर अस्त्रापै। हर कृपा धार पी आया फिर काल ना व्यापै, सलोक महला तीजा। लोक अवगणा की बन्ने गंठड़ी, गुण ना विहाजै कोए। गुण का गाहक नानका विरला कोई होए। गुर प्रसादी गुण पाईयान जिसनो नजर करे, महला तीजा। गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार। नानक हुक्म मन्या सुख पाई है गुर शब्दी विचार पौड़ी। अंदर राजा तख्त है आपे करे न्याओ, गुर शब्दी दर जानी है अंदर महल असराओ। खरे परख खजाने पाईयान खोटिया नाही थाओ। सब सचो सच वर्तदा सदा सच ने आओ। अमृत का रस आया मन वसिया नाओ, सलोक महला पहला। हौ मैं करी ता तू नाही, तू होवे हो नाहे। बुझो ज्ञानी बुझना एह अकथ कथा मन माहे। बिन गुर तत ना पाई है अलख वसै सब माहे। सतगुर मिले ता जानी है
ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ ਆਪ ਗਿਆ ਭ੍ਰਮ ਪਹੁ ਗਿਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਹੇ ਗੁਰਮਤ ਅਲਖ ਲਖਾਈਐ ਉਤੋਂ ਮਤ ਤਰਾਹੇ ਨਾਨਕ ਸੋਹੰ ਹੰਸਾ ਜਪ ਜਾਪੋ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਤਸੈ ਸਮਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਮਨ ਮਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਖਿਆ ਗੁਰਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉਸੇ ਜਨ ਵਿਰਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਆਪੇ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲ ਰਹਿਆ ਹਉਮੈ ਦੁਬਧਾ ਮਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਦੁੱਤਰ ਤਰੇ ਭਉ ਜਲ ਵਿਖਮ ਸੰਸਾਰ ਪੌੜੀ ਮਨਮੁਖ ਅੰਦਰ ਨਾ ਭਲ ਨੀ ਮੁੱਠੇ ਅਮਤੇ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਵ ਥੱਕੇ ਅੰਦਰ ਤਿਖ ਤੱਤੇ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਨਾ ਸੋਧਨੀ ਮਨਮੁਖ ਵਿਗੁੱਤੇ ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਸੱਤੇ ਤਤ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹਰ ਜਪ ਹਰ ਗਤੇ

पौड़ी। पाणै हुक्म नायोन पाणै सुख पाया, पाणै सतगुर मेलेओन पाणै सच ते आया। पाणै जेवड होर दात नाही, सच आख सुनाया। जिनको पूर्व लिखिया तिन सच कमाया, नानक ते शरणागति जिन जग त्यो पाया। श्लोक महला तीजा। जिनको अंदर ज्ञान नहीं, पैकी नाही बिंद, नानक मोया का क्या मारना, जे आप मारे गोविंद। महला तीजा। मन की पत्री वचनी, सुखी हूं सुखसार, सो ब्राह्मण पलाया खीय, जे बुझे ब्रह्म विचार। हर साल आहे हर पड़े, गुर कै शब्द विचार, आया ओ प्रवान है, जे कुल का करे उधार। अगै जात न पुछिए, करनी शब्द है सार। होर कूड़ पढ़ना कूड़ कमावना, बिखिया नाल प्यार। अंदर सुख ना हो वही, मनमुख जन्म खुवार। नानक नाम रते से उबरे, गुर कै हित अपार। पौड़ी। आपे कर कर वेखदा आपे सब सच्चा, जो हुक्म न बूझे खसम का, सोई नर कच्चा। जित भावै तित लाएंदा, गुरमुख हर सच्चा। सबना का साहिब एक है, गुर शब्दी रचा। गुरमुख सदा सलाही है।

कहत कबीर सुनौरे संत हो साध संगत तर जाहेगा। राग मारू बाणी रविदास जीओ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे सिदर तरह रहाओ। जा की शोत जगत को लागे ता पर तू ही टरे नीचे उच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे। नाम देव कबीर तलोचन सदना सहन तरे कह रविदास सुनो रे संतो हर जियो ते सबै सरे। मारू सुख सागर सुर तर चिंता मानो काम तेन बस जा के रे। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध नवनिद कर तलता कै हर हर हरना जब सरसना अवर सब छाड़ बचन रचना रहाओ। नाना ख्यान पुराण बेद बिद चौतीस अक्षर माही ब्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सरनाही। सहज समाद उपाद रहत होए बड़े भाग लिव लागी कह रविदास उदास दास मत जन मरण पै भागी। तुखारी संत महला पहला बारह माह।

समाणिया हरियंक समाणी जा प्रभाणी सा सुहागण नारे नावकर थाप महल कर ऊंचो निज कर वास मोरारे सब तेरी तू मेरा प्रीतम निस्बासर रंग रावै नानक प्रयो प्रयो चवै बबीहा कोकल शब्द सुहावै तू सुन हर रस भिन्ने प्रीतम अपने मंत्र रवत रवन्ने कड़ी ना बिसरै क्यों कड़ी बिसारी हों बलिहारी हों जीवा गुण गाए ना कोई मेरा हों किसके राह हर बिन रहन ना जाए ओट गही हर चरण निवासे पए पवित्र शरीरा नानक दृष्ट दीर्घ सुख पावै गुर शब्दी मन तीरा बरसै अमृत तार बूंद सुहावनी साजन मिले सह सुभाए हर स्यों प्रीत बनी हर मंदिर आवै जा प्रभावै तानी उबी गुण सारी घर घर कंतरवै सुहागण हों क्यों कंत विसारी उन्म कन छाए बरस सुभाए मंतन प्रेम सुखावै नानक वरसै अमृत बाणी कर कृपा कर आवै चेत बसंत पला पवर सुहावड़े बन फूले मंज बार मैं फिर कर बाहुड़ै फिर कर नहीं आवै तन क्यों सुख पावै बिरह बिरो तन छीजै कोकले अंब सुहावी बोलै क्यों दुख अंक सहीजै पवर पवंता फूली डाली क्यों जीवा मर माए नानक चेत सहज सुख पावै जे हर वार घर तन पाए वैसाख पला साखा व्यस करे तन देखै हर द्वार आवो दया करे करे आओ प्यारे दुत्र तारे तुद बिन अड़ ना मोलो कीमत कौन करे दुद पावा देख दिखावै ढोलो दूर ना जाना अंतर माना हर का महल पछाना नानक वै साखी प्रपावै सुरत शब्द मन माना माहो जेठ पला प्रीतम क्यों बिसरै थल तापै सर पार सा तन बिनो करै तन बिनो करेंदी गुण सारेंदी गुण सारी प्रभावा साचै मिल रह बैरागी आवन दे तायावा निमाणी नितानी हर बिन क्यों पावै सुख महली नानक जेठ जाणै तिस जैसी कर मिलै गुण गहली आषाढ़ भला सूरज गगन तपै धरती दुख सहै सोखै अगन पखै अग्न रस सोखै मरिया तोखै पीसो कीर्तन हारे रथ फिरै छाया तन ताकै टींड लवै मंजबारे आवगण बांध चली दुख आगै सुख तिख सुख तिस साज संभाले नानक जिसनों यह मंदी आ मरण जीवन प्रभ नाले सावन सरस मना कण वरसै रुत आए मैं मंत्र सहु पावै पिर परदेस सिदाए फिर कर नहीं आवै मरिय हावै दमन चमक डराए सेजा केली खरी दुहेली मरण पया दुख माए हर बिन नींद पूख कौ कैसी कापड़ तन ना सुखावै नानक सासो हागण कंती पिरकै अंक समावै पादों परम पुली पर जोगन पछताणी जल थल नीर परे बरस रुते रंग माणी बरसै निसकाली क्यों सुखबाली दादर मोर लवंते प्रयो प्रयो चवै बबीहा बोले भयंगम फिर डसंते मच्छर डंग सायर पर सुबर बिन हर क्यों सुख पाई है नानक पूछ चलो गुरे अपने जय प्रभ तै ही जाई है असने आओ पिरा सा तन चूर मुई ता मिलिया प्र मेले दूजे पाए खुई झूठ विगुती ता प्रमुती कुकै कहा से फुले आगे काम पिछे रुत जाडा देख चलत मंडोले दै दे साखर यरियावल सहज पकै सो मीठा नानके असन मिलो प्यारे सतगुर पै बसीठा कत्तक किरत पया जो प्रपाया दीपक सहज बलै तत जलाया दीपक रस देलो तन पिर मेलो तन्यो माहै सरसी अवगुण मारी मरै न सीजै गुण मारी ता मरसी नाम भगत दे निज कर बैठे अजो तिनाड़ी आसा नानक मिलो कबड़ दर खोलो एकड़ी खटमासा मंगर महो पला हर गुण अंक समावै गुणवंती गुण रवै मैं पर नहीं चल पावै नेह चल चतर सुजान विधाता चंचल जगत सुभा।

मूर्त भगवाना, तेरा जानू एक याद कोई, काम क्रोध लोमो बिरबरजित, हर पद चीने सोई रहाओ। राजगुण तम गुण सतगुण कही है, एह तेरी समाया, चौथे पद को जो नर चीने, तिन ही परम पद पाया। तीर्थ वर्त नेम सो संजमो, सदा रह निकामा, तृष्णा अरमाया परम चूका, चितवत आत्म रामा। जेह मंदर दीपक परगासिया, अंधकार तह नासा, निरपौ पूर रहे परम पागा, कह कबीर जनदासा। किन्ही बनजिया कांसी तांबा, किन्ही लाऊं सुपारी, संतो बनजिया नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी। हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी रहाओ। साचे लाए तो सच लागे, साचे के ब्योहारी, साची बस्त के पार चलाए, पहुंचे जाए पंडारी। आपै रतन जवाहर मानक, आपै है पासारी, आपै दहद से आप चलावै, निचल है व्यापारी। मन कर बैल सुरत कर पेंडा, ज्ञान गुण पर डारी, कहत कबीर सुनो रे संतहो, निभी खेप हमारी। री कलवार गवार मूड मत, उल्टो पवन फेरावो, मन मत वार मेर सर पाठी, अमृत तार चुआवो। बोलो पहिया राम की दुहाई, पीवो संतो सदा मत दुर्लभ, सहजे प्यास बुझाई रहाओ। पै बिच पाओ पाए को बुझे, हर रस पावे पाई, जेते कट अमृत सब ही मैं, पावे से पियाई। नगरी एक नौ दरवाजे, तावत बरज रहाई, त्रिकुटी छूटे दसवां दर खुले, तमन खीवा पाई। अपै पद पूर ताप तह नासे, कह कबीर बिचारी, उबट चलनते एह मद पाया, जैसे खोंद खुमारी। काम क्रोध

नदर करे सतगुरु मिलाए, नानक हिरदय नाम वसाए, पहरो महला तीजा। नामे उदरे सब जितने लो, गुरमुख जिन्ना प्राप्त होए। हर जियो अपनी कृपा करे, गुरमुख नाम वड्याई दे रहाओ। राम नाम जिन प्रीत प्यार, आप उदरे सब को लो धारण हार। बिन नावे मनमुख

राम नाम है सार, गुरमुख साचा लगे प्यार। रहाओ तन मन खोज कर मैं पाया, गुरमुख राम नाम चित लाया। ज्ञान अंजन सतगुर ते होए, राम नाम रव रहया ते हो लोए। कलयुग में हर जियो एक होर रुत ना काई, नानक गुरमुख हिरदय राम नाम लिहो जमाई। पहरो महला तीजा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दुबदा मन मुख रोग व्यापे, तृष्णा जलै दकाई। मर मर जमै ठौर ना पावै, बिरथा जन्म गवाई। मेरे प्रीतम कर कृपा देहो बुझाई, हम मैं रोगी जगतो पाया, बिन शब्द रोग न जाई। रहाओ सिमरत शास्त्र पढ़े मुन केते, बिन शब्द सुरत ना पाई। त्रै गुण सबे रोग व्यापे, ममता सुरत गवाई। एक आपे काढ़ लए प्रभ आपे, गुरसेवा प्रभ लाए। हर का नाम निधानो पाया, सुख वस्या मन आए। चौथी पदवी गुरमुख वरतै, तिन्निज करवासा पाया। पूरे सतगुर कृपा किन्नी विचों आप गवाया। एक सकी सरकार एक, जिन ब्रह्मा बिसन और दुर्यो पाया। नानक निचल साचा एको, ना ओह मरै ना जाया। पहरो महला तीजा, मनमुख दुखदा सदा है रोगी। रोगी सगल संसारा, गुरमुख बुझै रोग गवावै, गुर शब्दी विचारा। हर जियो सतसंगत में लाए, नानक तिसनो देवड़ियाई। जो राम नाम चित लाए, रहाओ ममता काल सब रोग व्यापे, तिन जम की है सरकारा। गुरमुख प्राणी जम नेण ना आवै, जिन हर राख्या और तारा। जिन हर का नाम ना गुरमुख जाता, से जग में काहे आया। गुर की सेवा कदे न कीनी, बिरथा जन्म गवाया। नानक से पूरे वट भागी, सतगुर सेवा लाए। जो इच्छा सोई फल पावै, गुरबाणी सुख पाए। पहरो महला तीजा, दुख विच जमै दुख मरै, दुख विच कार कमाए। गर्भ जोनी विच कदे ना निकलै, बिष्टा माए समाए। त्रिग त्रिग मन मुख जन्म गवाया, पूरे गुर की सेव ना कीनी, हर का नाम ना पाया। रहाओ गुर का शब्द सब रोग गवाए, जिसनो हर जियो लाए। नामे नाम मिलै वड़ियाई, जिसनो मन वसाए। सतगुर भेटै तां फल पाए, सच करनी सुखसार। से जन निर्मल जो हर लागे, हर नामे तरह प्यार। तिन किरण मिलै ता मस्तक लाई, जिन सतगुर पूरा त्याया। नानक तिन किरण पूरे भाग पाईऐ, जिनी राम नाम चित लाया। पहरो महला तीजा, शब्द विचारे सो जन साचा। जिन कै हृदय साचा सोई, साची भगत करै दिन राती, तां तन दुख न होई। भगत भगत कह सब कोई, बिन सतगुर सेवे भगत न पाईऐ। पूरे भाग मिलै प्रभ सोई। रहाओ मनमुख मूल गवावै, लाभ मांगै। लाहा लाभ किदू होई, जमकाल सदा है सिरी उपर। दूजे पाए पत खोई, बहले पेख पवै दिन राती। हम मैं रोग न जाई, पढ़ पढ़ लूजै बाद वखाणै। मिल माया सुरत गवाई, सतगुर सेवै परम गत पावै। नाम मिलै वडियाई, नानक नाम जिन नाम वसिया। दर साचै पथ पाई, पहरो महला तीजा। मनमुख आसा नहीं उतरै, दूजे पाए खुवाए। उधर नहसान न भरियै कबहू, तृष्णागन पचाए। सदा आनंद राम रस राते, हृदय नाम दुबदा मन भागी। हर हर अमृत पीतर बताते, रहाओ आपे पार ब्रह्म। सृष्ट जिन साजी, सिर सिर तंदै लाए। माया मोह किया जिन आपे, आपे दूजे लाए। तिसनो केहो कहियै, जे दूजा होवै। सब तुद्दै महे समाए, गुरमुख ज्ञान तत् विचारा। ज्योति ज्योत मिलाए, सो प्रभ।

प्रसाद परम पद पाया सब इच पूजा मनहार रहाओ सब मैं एको रव रहया गुरबिन बूझना पाए गुरमुख प्रगट हुआ मेरा हर प्रभ अंदन हर गुण गाए सुखदाता हर एक है होर थे सुख ना पाहे सतगुरु जिनी ना सेवया दाता से अंत गए पछताहे सतगुर सेव सदा सुख पाया फिर दुख ना लागे ताए नानक हर भगत प्राप्त होई ज्योति जो समाए पैरव महला तीजा बाज गुरु जगत बौराना पूला चोटा खाई मर मर जम्मै सदा दुख पाए दर की खबर ना पाई मेरे मन सदा रहो सतगुर की सरना हृदय हर नाम मीठा सद लागा गुर शब्दे पवजल तरना रहाओ पेख करै बहुत चित डोलै अंतर काम क्रोध अहंकार अंतर तिसा भूखयत बहुती भौकत फिरै दरबार गुर कै शब्द मरै फिर जीवै तिनको मुख द्वार अंतर सांत सदा सुख होवै हर राख्या और तार ज्यो तिस पावै तिवै चलावै करना किशु ना जाई नानक गुरमुख शब्द समाल।

नाम बिना सब दुनिया शार, अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सलाहा, गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह, नी तरिया तरपन खुदाए, गरीब निवाज दिन रहन ते आए, नानक कहो खुद खसम मेहरवान, अलो न विसरै दिल जी प्राण, पहराओ महला पंजवा, साच पदार्थ गुरमुख लहो, प्रभ का पाना सतकर सहो, जीवत जीवत जीवत रहो, राम रसायन ने तुठ पीवाओ, हर हर हर हर रसना कहो रहाओ, कलयुग में एक नाम उदार, नानक बोले ब्रह्म विचार, पहरो महला पंजवा, सदगुर सेव सर्व फल पाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए, पदत पावन प्रभ तेरो नाओ, पूर्व कर्म लिखे गुण गाओ, रहाओ साधु संग होवे उदार, सोभा पावे प्रभ कै द्वार, सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, तूर बंश है सब सुर नर देवा, नानक पाया नाम निधान, हर जप जप उदरिया सगल जहान, पैरो महला पंजवा, अपने दास कौ कंठ लगावे, निंद कौ अगन में पावे, पापी ते राखे नारायण, पापी पापी की गत कथू नाही, पापी पचया आप कमायण, रहाओ दास राम जीओ लागी प्रीत, निंद की होई विपरीत, पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया, दुखी अपना कीता पाया, आए न जाई रहया समाई, नानक दास हर की सरनाई, राग पैराओ महला पंजवा, चौप दे कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद श्री धर मोहन सगलियो पावन, निरंकार सुखदाता, ऐसा प्रभ छोड़ करे अन सेवा, कौन बिख्या रस माता, अरे मन मेरे तू गोविंद पाज, अवर्यो पाव सगल मैं देखे, जो चितवी है तित बिगरस काज, रहाओ ठाकर छोड़ दासी को सिमरै, मनमुख अंध अज्ञाना, हर की भगत करै तिन निंदै, निगुरे पशु समाना, जियो पिंड तन तन सब प्रभ का, स्वागत कहते मेरा, अहम बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर भव जल फेरा, होम जग जप तप सब संयम, तट तीर्थ नहीं पाया, मिटाया पै सरनाई, गुरमुख नानक जग तराया, पैरों महला पंजवा, बन मैं पेख्यो तरण मैं पेख्यो, गृह पेख्यो उदासाए, दंड तार जट तारै पेख्यो, वर्त नेम तीर्थाए, संत संग पेख्यो मन माए, ऊब पयाल सर मैं पूर्ण, रस मंगल गुण गाए, रहाओ जोग पेख सन्यासै पेख्यो, जत जंगम कपड़ाए, तपि तपि सरमन मैं पेख्यो, नट नाटक निरताए, चहो मैं पेख्यो खट मैं पेख्यो, दस अष्टी सिमरताए, सब मिले को एक बखाने, तव किस्ते कहो दुराए, अगह अगह बेअंत स्वामी, न कीम कीम कीम आए, जन नानक तन कै बल बल जाइए, जेह कट प्रगटी आए, पैरो महला पंजवा, निकट बुझे सो बुरा क्यों करे, बिक संचय नित डरता फिरे, है निकट यार भेद न पाया, बिन सतगुर सा मोही माया, नेड़े नेड़े सब को कह, गुरमुख भेद बिरला को लहै, रहाओ निकट ना देखे पर ग्रह जाए, दर भिरे मिथ्या कर खाए, पैठ गौरी हर संग ना जाने आ, बाज गुरु है परम पुलानिया, निकट ना जाने बोले कूड़, माया मोहे मूठा है मूड़, अंतर वस्त दिसंतर जाए, बाज गुरु है परम पुलाए, जिस मस्त कर्म लिखिया ललाट, सदगुर सेवे खुले कपाट,
ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਟੇ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਵੈ ਕੋਏ, ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਕੌਣ ਮਾਰੈ, ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਅੰਤਰ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਾਵ ਚਿਤਵਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸੋ ਹੋਵੈ ਜੇ ਕਰੈ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣੀ, ਰਾਖੋ ਰਾਖੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ, ਰਹਾਓ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਨਿਰਭਉ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਤਿਨ ਭਉ ਦੂਰ ਕੀਆ ਏਕ ਪ੍ਰਾਤਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੈ ਸੋਈ ਫਨ ਹੋਏ, ਮਾਰੈ ਨਾ ਰਾਖੈ ਦੂਜਾ ਕੋਏ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਚੈ।

कर्तार, जैसी ऊपर नजर करे करतार, तेह जन के सब का इसवार, तिसका रखा एक को सोए, जन नानक पढ़ना सा कह कोए। पैरव महला पंज

तौ कड़िया जे दूजा करता, तौ कड़िया जे अन्याय को मरता, तौ कड़िया जे कह जाने नाही, क्या कड़िया जा भरपूर समाही, तौ कड़िया जे किश होए तिंगाने, तौ कड़िया जे भूल रजाने, गुर कहया जो होए सब प्रभ ते, तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते, प्रभ तू है ठाकर सब को तेरा, जो पावे त्यों करे निबेरा, दुतिया नास तो एक रया समाए, राखो पैज नानक सरनाए, पैरो महला पंजवा, बिन बाजे कैसो निर्तकारी, बिन कंठ कैसे गवनहारी, जील बिना कैसे बजर बाप, नाम बिना बिरथे सब काज, नाम बिना कहो को तरिया, बिन सतगुर कैसे पार परिया रहाओ, बिन जेहवा कहाँ को बगता, बिन श्रवना कहाँ को सुनता, बिन नेत्रा कहाँ को पेख है, नाम बिना नर कहीं ना लिख है, बिन विद्या कहाँ कोई पंडित, बिन अमरा कैसे राजमंडित, बिन बुझे कहाँ मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना, बिन बैराग कहाँ बैरागी, बिन हो त्याग कहाँ को त्यागी, बिन बस पंच कहाँ मन चूरे, नाम बिना ससद ही चूरे, बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान, बिन पै कथनी सर्व बेकार, कहो नानक दर का विचार, पैरो महला पंजवा, हों मैं रोग मानख कौ दीना, काम रोग मैंगल बस लीना, दृष्ट रोग पचमोए पतंगा, नाद रोग खप गए कोरंगा, जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी रहाओ, जेहवा रोग मीन ग्रस आनो, बासन रोग पवर बिनसानो, हेत रोग का सगल संसारा, त्रिबद रोग में बदे बिकारा, रोगे मरता रोगे जन्मे, रोगे फिर जोनी परमे, रोग बंद रहन रति ना पावे, बिन सतगुर रोग कते ना जावे, पार ब्रह्म जिसकीनी दया, बहां पकड़ रोगों कड लया, टूटे बंधन साध संग पाया, कहो नानक गुर रोग मिटाया, पैरो महला पंजवा, चीत आवै ता महा आनंद, चीत आवै ता सब दुख पंज, चीत आवै ता सरदा पूरी, चीत आवै ता कबे ना चूरी, अंतर राम राय प्रगटे आए, गुरपुरे दियो रंग लाए रहाओ, चीत आवै ता सर्ब को राजा, चीत आवै ता पूरे काजा, चीत आवै ता रंग गुलाल, चीत आवै ता सदा निहाल, चीत आवै ता सद धनवंता, चीत आवै ता सद निपरंता, चीत आवै ता सब रंग माणे, चीत आवै ता चुकी काणे, चीत आवै ता सहज कर पाया, चीत आवै ता सुन समाया, चीत आवै सद कीर्तन करता, मन मान्या नानक भगवंता, पैरो महला पंजवा, बाप हमारा सद चिरंजीवी, भाई हमारे सद ही जीवी, मीत हमारे सदा बनासी, कुटुंब हमारा नी करवासी, हम सुख पाया ता सवै सुहेले, गुरपुरे पिता संग मेले रहाओ, मंदिर मेरे सब ते उच्चे, देश मेरे बेअंता पूछे, राज हमारा सदी निचल, माल हमारा खूटा बेचल, सोबा मेरी सब जुग अंतर, बाज हमारी थान थनंतर, कीर्त हमरी कर कर होई, भगत हमारी सबनी लोई, पिता हमारे प्रगटे मांझ, पिता पुत्रल किन्नी सांझ, कहो नानक जो पिता पतीने, पिता पूते कै रंग लीने, पैरो महला पंजवा, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभ दाते, हम अपराधी तुम बख्साते, जिस पापी को मिले ना टोई, शरण आवै ता निर्मल होई, सुख पाया सतगुरु मनाए, सब फल पाए गुरु ते आए रहाओ,
पार ब्रह्म सतगुरु आदेश, मन तन तेरा सब तेरा देश। चूका पड़दा ता नदरी आया, खसम तू है सबना के राया। तिस पाणा सूके काष्ट हरिया, तिस पाणा ता थल सिर सरिया। तिस पाणा ता सब फल पाए, चिंत गई लग सतगुर पाए। हराम खोर निर्गुण कौ तूठा, मन तन शीतल मन अमृत बूठा। पार ब्रह्म गुर पए दयाला, नानक दास देख पए निहाला।